0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 5:54 और ठीक 10 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं, हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन सेवा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। FM रेनबो दिल्ली पर प्रातः 6 बजे समाचारों के उपरांत आप सुनेंगे सुप्रभात कार्यक्रम, जिसे लेकर आज आपके लिए भावना जी नायर प्रस्तुति देंगी।

प्रातः 7 बजे हिंदी समाचारों के बाद आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रविंद्र सिंह के साथ।

प्रातः 9 बजे हिंदी समाचार के बाद आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। आपके साथ रहेंगे रविंद्र सिंह।

यह है आकाशवाणी का 102.6 FM रेनबो स्टेशन। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की है। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमरीकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मई में यह अनुमान 6.7% था। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% से बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। ईरान ने दोहराया, अमरीका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडबरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमेनायंगम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित

करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गोल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए, भारत जीत से 6 विकेट दूर। नीदरलैंड्स में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और फुटबॉल के 135वें डूरन कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल FC का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। इसी के साथ ये थे मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर मौजूद है अब आपके साथ भावना। कार्यक्रम है सुप्रभात। सुबह 6:03 हो गए और बेहतरीन शुरुआत 19 अगस्त की हो चुकी है। बुधवार का दिन है और ये खूबसूरत शुरुआत करेंगे हम अपने इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि अगर सबसे अच्छी शुरुआत कहीं होती है, दिल से दिल तक बातें होती हैं, तो कहाँ होती हैं? होती हैं 102.6 FM पर, जहाँ मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और सुबह के इस शांत समय में एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, और ये पूछ रही हूँ मैं कि क्या आप ज़िंदगी वैसी ही बिता रहे हैं जैसे आपने सोची थी? अगर जवाब नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि शायद ना यही ज़िंदगी है। हमने ज़िंदगी का नक्शा बचपन में ही बना लिया था। अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, पैसा आएगा, घर होगा, परिवार होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच जिंदगी इतनी सीधी रेखा है? है ना बड़ा सवाल कि क्या सब कुछ वैसा ही सीधा सीधा चलता है जैसा कि हम सब सोचते हैं? तो अधूरे नक्शे से पूरा नहीं होता सफर। नक्शे को कैसे करें पूरा, बताएंगे हम आपको 102.6 FM में। कैसे मंजिल को देखने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। हो सकता है कभी सफलता मिले, कभी ना मिले। ये असफल कोशिशें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें अगर कभी कभी असफल होंगी तो तभी तो सफलता का जो मज़ा है, जो स्वाद है, वही तो उसका असली एसेंस है। और इसी एसेंस को ये जो खूबसूरत सी सुबह होती है, इसमें जो महकी महकी सी हवा होती है, बहकी बहकी सी फिजाएं होती हैं, तो उसमें ज़िंदगी का नक्शा कैसा होना चाहिए? चलिए शुरुआत करते हैं 102.6 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुप्रभात में एक प्यारे से गाने के साथ।

इस खूबसूरत सुबह में जहाँ आज कैनवस बिल्कुल खाली है, उसमें आप रंग तो भर ही चुके हैं और ये खूबसूरत रंग भर चुके हैं क्योंकि आप उन रंगों को भरना चाहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नक्शों की और नक्शे यानी कि मैप। और कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सब वैसा ही हो जैसा कि हमने सोचा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये जो ज़िंदगी के अधूरे नक्शे होते हैं ना, उसी से ही पूरा सफ़र तय होता है। पता है कैसे? क्या होता है कि हम बचपन में ना बड़े सारे वाक्य सुनते आए हैं, मैंने भी सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे। बताइएगा कि आपने सुने कि नहीं, अपने मन में बताइएगा मुझे, है ना, कि अपने मन में हाँ या ना कहिएगा। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी होगी तो ज़िंदगी भाई साहब सेट हो जाएगी, शादी होगी तो ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी सीधी रेखा है? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि कभी रास्ता बदलता है, कभी मंजिल बदलती है, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। तो आज सुबह बात कर रहे हैं हम इसी ज़िंदगी की, जो परफेक्ट नहीं है लेकिन पूरी तरह हमारी है। और साथ साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपने कभी गौर किया है, आप जब भी कहीं जा रहे होते हैं और आपको वो रास्ता नहीं पता होता है तो आप मैप्स का सहारा लेते हैं, आप मैप से पूछते हैं कि मैप देवता ज़रा आप बताएंगे, या मैप देवी क्या आप हमें बताएंगे कि यहाँ जाने के लिए किस रास्ते को अपनाना होगा। तो मैप कहते हैं कि यहाँ से जाइए, फिर दाएं मुड़िए, फिर 500 मीटर बाद बाएं, और ऐसे ही आपकी जो डेस्टिनेशन है यानी कि गंतव्य है वो आप उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी का क्या कोई मैप होता है मेरे दोस्त? ज़िंदगी का कोई मैप नहीं होता। आपने सोचा था कि 25 की उम्र में ये होगा, 30 की में ये होगा, और 40 में ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी, और फिर आपको ज़िंदगी नॉक नॉक करके, ठक ठक करके कहती है, एक मिनट, हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। तो दोस्त यही है ज़िंदगी, कि जब आप सोचते हैं और वो सब नहीं होता तो ज़िंदगी के मायने ही कुछ ऐसे होते हैं। और यही से तो असली सफ़र की शुरुआत होती है, क्योंकि ज़िंदगी में हर मोड़ का पहले से पता होना क्या ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं। कभी कभी रास्ते पर चलते हुए ना अपने रास्ते खुद ही बनते जाते हैं। सुनते रहिए 102.6 FM। अगला गाना आ रहा है रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, बॉर्डर मूवी से तो चलूं। बहुत ही खूबसूरत, इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करिए। बुधवार का दिन है और दिन बहुत ही अच्छा है, इसी सोच के साथ चलिए एक और गाने को सुन लेते हैं।

तो चल रहे हैं आप हमारे साथ और हम आपके साथ, और यूं ही हमारा सफर बेहद ही खूबसूरत हो रहा है। कार्यक्रम है सुप्रभात और हम बात कर रहे हैं अधूरे नक्शों की, और अधूरे नक्शे कभी कभी हमारे सफर को और रोमांचक बना देते हैं, है ना। क्योंकि हमने तो अक्सर यही सुना है कि मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी है। मान लीजिए दो लोग एक ही परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दोनों खूब लगे रहते हैं, एक साथ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि एक का सिलेक्शन होता है और एक का सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या दूसरा इंसान मेहनती नहीं था? नहीं, कई बार परिणाम में टाइमिंग होती है, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, रिसोर्सेज भी लगे होते हैं, और सेहत भी बड़ा काम आती है इसमें कि सेहतमंद है आप, स्वास्थ्य आपका अच्छा है उस समय कि नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेहनत छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है कि परिणाम को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। आउटकम्स आपकी पूरी पहचान नहीं है, फेलियर आया है, आप फेलियर नहीं बन गए, लेकिन एक इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप इनकेपेबल नहीं हो गए, एक बिजनेस नहीं चला आप अनसक्सेसफुल इंसान नहीं हो गए, एक इवेंट, एक घटना या एक सिचुएशन आपकी पूरी कहानी तो हो ही नहीं सकती। आपकी कहानी तो वो होती है जो आप धीरे धीरे करके और असफलताओं के बाद, फेलियर्स के बाद खुद उस कहानी को लिखते हैं। और कहानी तो जिंदगी की कभी एक जैसी रहती नहीं, कहानियां तो बदलती रहती हैं। और पता है क्या, मैं आपको एक कहानी इस पर सुनाती हूँ कि एक ना व्यक्ति गांव में अपना घर बना रहा था, सालों से अपना घर बना रहा था, लेकिन घर आज भी पूरा नहीं हुआ। पता है पहली नजर में हम कहेंगे कि असफलता, शायद उसी में ही कोई गलती थी, घर पूरा नहीं हुआ, काम अधूरा रह गया, जो सोचा था सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। लेकिन क्या सचमुच यही फेलियर है? क्योंकि जिंदगी बीच में आ गई थी, प्रायोरिटीज बदल गई थी, प्राथमिकताएं बदल गई थी, जरूरतें बदली, परिस्थितियां बदली, सिचुएशंस वो नहीं थी जब घर शुरू किया था बनाना, वो सिचुएशन सब बदल गई और योजनाएं भी बदल गई। अब जरा इस कहानी को अपने जीवन पर रखकर देखिए, कितने लोगों की कोई डिग्री अधूरी रह गई, किसी का करियर प्लान बदल गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी ने अपना शहर ही बदल दिया, किसी ने नौकरी छोड़कर परिवार को चुना, और किसी ने परिवार के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो क्या हर अधूरा काम असफलता है मेरे दोस्त? कभी कभी इन्हीं अधूरे कामों में हमारी प्रायोरिटीज छुपी होती हैं, और कभी कभी जिंदगी हमें कोई और ज़रूरी काम दे देती है, जिसकी वजह से जो काम पूरा करना होता है वो कहीं रह जाता है, और कभी कभी यही जिंदगी के नक्शे अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इनको पूरा किया जा सकता है, शायद उस समय ना हो पाए पर आगे उन्हीं को पूरा किया जाएगा। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। दिल से दिल तक बातें हो रही हैं खूब सारी हमारे बीच में, और जो अधूरे नक्शे कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं, क्या उन्हें पूरा किया जा सकता है? नैना ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। बचपन से ही नैना ने अपनी जिंदगी का एक मैप बना लिया था। मैप, ये मैप समझे ना आप, कि बस जो डेस्टिनेशन है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आपने खूब सारी पजल्स भी खेली होंगी, है ना, अपने बचपन में, या अभी भी खेलते होंगे, जहाँ आपको रास्ता चुनना होता है, फिर आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। कुछ ज़िंदगी भी वैसी ही मेज़ है, वैसी ही पज़ल है। हम सोच के रखते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमने मैप बनाया है अपनी ज़िंदगी का, वही कुछ होगा। ऐसा ही कुछ नैना ने भी सोचा था, और उसने पहले ही अपनी ज़िंदगी का नक्शा बना लिया था। पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, कुछ साल में अपना घर लेना, और फिर आराम के ज़िंदगी जीनी है। पर क्या ऐसा हो पाया? उसने उसके लिए बहुत मेहनत की। नैना को नौकरी भी मिली, तरक्की खूब हुई नैना की। लेकिन फिर जिंदगी ने उसके नक्शे पर कुछ ऐसे मोड़ बना दिए ना, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। ऐसा ही कुछ होता है। माँ की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। कुछ समय के लिए नैना को अपनी उसी ड्रीम जॉब से ब्रेक लेना पड़ गया। और फिर जब वो काम पर वापस लौटी ना, तो उसका पुराना पद उससे छूट चुका था, वो किसी और को मिल चुका था। उसने सोचा, नैना ने सोचा, मेरा तो नक्शा ही बिगड़ गया। कुछ समय बाद एक रिश्ता भी टूट गया, जिसे वे अपनी जिंदगी का सबसे परमानेंट हिस्सा बना चुकी थी। अब तो उसको लगने लगा कि जिंदगी में जो कुछ भी प्लान किया था, वो उस हिसाब से तो चला ही नहीं। और फिर क्या हुआ, एक जैसी जिंदगी थोड़ी ना रहती है, जिंदगी तो बदलती रहती है और अपने मोड़ लेती रहती है। क्या कुछ हुआ उसके बाद बताऊंगी आपको, क्योंकि नैना हार मानने वालों में से नहीं थी। नैना ने ठान लिया था।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: तो नैना की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, नैना की कहानी चल रही है। नैना ने जो सोचा वो हो नहीं पाया, नैना ने अपना नक्शा बनाया लेकिन वो नक्शा कहीं पूरा हो नहीं पाया, अधूरा रह गया क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं और परिस्थितियों ने नैना को बहुत कुछ सिखाया। लेकिन इस बीच वो परेशान भी हो गई। वो अपनी माँ के पास गई जिनकी तबीयत खराब थी। माँ ने उसका चेहरा देख के पहचान लिया, माँ तो पहचान जाती है, कि बिटिया कुछ ठीक नहीं लग रही। नैना से पूछा, बेटा क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? नैना बोली, माँ मेरा सब कुछ अधूरा रह गया, जो सोचा था वो कुछ हो ही नहीं पाया। और माँ मुस्कुराई और बोली, तूने तो नक्शा बनाया था ना नैना, जिंदगी ने रास्ता बना लिया, दोनों एक जैसे भला कैसे हो सकते हैं? नैना थम सी गई, चुप रह गई। माँ ने आगे कहा, सुनिएगा, माँ ने कहा कि अधूरा घर देखकर कोई यह नहीं कहता कि उसमें रहने वाले की जिंदगी अधूरी है। कभी घर बनाते बनाते जरूरत बदल जाती है, कभी कमरा छोटा पड़ जाता है, कभी कोई दीवार गिरानी पड़ती है। फिर उन्होंने नैना का हाथ पकड़ लिया, नैना का हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी में ना नैना कुछ रास्ते पूरे नहीं होते, क्योंकि शायद वे तुम्हारी मंजिल के रास्ते थे ही नहीं कभी। और वो बात नैना के मन में समा गई। उस रात नैना ने पहली बार अपनी जिंदगी का नक्शा फाड़ा नहीं, बस उसमें कुछ जगह जोड़ दी। जगह कौन सी जोड़ी उसने? जोड़ी परिवार के लिए, अपने लिए, आराम के लिए, दोस्तों के लिए और उन सपनों के लिए जिन्हें उसने पूरे जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबा दिया था। कुछ महीने बाद उसने एक नई नौकरी शुरू भी कर ली। पहले जितना पैसा नहीं देती थी लेकिन नौकरी में नैना अब खुश थी। उसने अपने लिए समय निकाला, अपनी पुरानी पेंटिंग्स फिर शुरू कर दी और माँ के साथ सुबह की चाय उसकी रोज की आदत बन गई। एक दिन उसने ही अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा नैना ने अपनी डायरी में? नैना ने लिखा कि मेरी जिंदगी का नक्शा आज भी पूरा नहीं है, लेकिन अब ना मुझे उससे डर नहीं लगता, क्योंकि नैना को समझ आ गया था कि जिंदगी

सफर पूरा करने के लिए नक्शा पूरा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो रास्ता अपना हो। और शायद हम सबको कभी ना कभी अपने पुराने नक्शे को देख करना यही पूछना चाहिए दोस्त, कि क्या मैं उस मंजिल की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं जो सच में मेरी है, या सिर्फ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि किसी और ने मेरे लिए यह रास्ता बनाया था। क्योंकि अधूरे नक्शे जिंदगी की कमी नहीं होते, कई बार वही हमें अपना रास्ता खुद बनाने का मौका दे जाते हैं। सोचिएगा, सुनते रहिए 102.6 FM। समझा करो ना मेरे दोस्त।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: तो इसी के साथ सुप्रभात में हमने जिंदगी का एक नया नक्शा बनाने की कोशिश की, एक ऐसा नक्शा जिसमें सिर्फ मंजिल नहीं है, रास्ता भी है, जिसमें सिर्फ सफलता नहीं है, असफलता भी है, और जिसमें सिर्फ मेहनत नहीं परिस्थितियों के लिए जगह भी है, जिसमें सिर्फ अचीवमेंट नहीं आराम भी है। तो इसी रास्ते पर अगर आपको सही नहीं लग रहा तो हम रास्ता बदल भी सकते हैं, और हमें सरल नक्शा नहीं चाहिए, हमें सच्चे नक्शे चाहिए। रास्ता मुश्किल हो सकता है, कभी दिशा बदल सकती है, कभी आप रुक सकते हैं, लेकिन आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन अपने अधूरे सपने को पूरा ज़रूर करते रहिएगा। अगला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रविंद्र के साथ, और फिर होंगे आपसे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर 8 बजे आपके साथ। हैव अ वंडरफुल वेंसडे।
3: चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम।

और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह स्कीम पहले सितंबर से 6-6 महीने के लिए दो चरणों में लागू की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने वाले मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के तहत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंच रहे हैं। वे कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होर्मुज डल जमरो स्थल बंद रहेगा। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। और फुटबॉल में 135वें ड्यूरेंट कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल एफसी का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह। आज लेकर हाजिर हूं बहुत सारी जानकारियों के साथ, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को सुकून देंगी, कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जो हमें प्रेरणा दे जाएंगे, और कुछ ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि या पुण्यतिथि और जयंती है जिनके बारे में आपको जानकर एहसास होगा कि भारत ने किन किन सबूतों को जन्म दिया है, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों की बात होगी जो बहुत कुछ करके गए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से चलते चलते आज हम यहां आ पहुंचे हैं और आज का भारत सशक्त भारत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं देर किस बात की, एक प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ जो ये बता रहा है कि सामने कौन है और किसका स्वागत करना है आपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए। शुरू करें। और कहते हैं जिंदगी की शुरुआत या सुबह की शुरुआत अगर प्यारा से गीत से हो तो फिर कहना ही क्या, दिन तो बन ही जाता है ना।

तो भाई साहब सामने जवेरा बहुत कुछ कहता है कि आप बस बाहर तो निकलिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। लेकिन ये सीखना समझना सब कुछ तभी होता है जब या तो हम पढ़ें और या फिर हम अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखें, लोगों को बस ध्यान से देखें और समझें कि जिंदगी आखिर है क्या, है ना। तो चलिए तारीख है 19 अगस्त, क्या कहते हैं इतिहास के पन्ने में लिखी हुई बातें उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इतिहास की तारीखों में 19 अगस्त भी महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाह रही है। भाई साहब भारत से लेकर दुनिया तक इस दिन ने सत्ता परिवर्तन, स्वतंत्रता और विज्ञान की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारत की बात करें तो 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल हुए थे। वहीं 1757 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था, है ना। और विश्व इतिहास की बात करें तो 1814 में ब्रिटिश सैनिक मैरीलैंड पहुंचे, जहां से वॉशिंगटन पर ब्रिटिश अभियान आगे बढ़ाया गया था। 1919 की बात करें तो 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। और अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो 1960 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 5 का प्रक्षेपण किया था, जिसमें 2 कुत्तों सहित कई जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया और वे सुरक्षित वापस भी लौटे, है ना। यानी 19 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास में बदलाव कभी संघर्ष से आया, कभी स्वतंत्रता के संकल्प से और कभी विज्ञान की नई उड़ान से। इसलिए कोई ना कोई कहानी तो आपको भी लिखनी पड़ेगी, है ना। लिखिए कहानी, आप यूं ही थोड़ी ना आए हैं, आप आए हैं कुछ करने। खुद को पहचानो, कुछ लिख डालो किताबों के पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह, लेकर हाजिर हूं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी प्रोग्राम को। और अभी तक हमने इतिहास के पन्नों में लिखी कुछ बातों को बताया जो विज्ञान की उड़ान को बता रहा

जो बता रहा था कि संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, संघर्ष क्या है, इन सारी चीजों को बताया जिसने। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा बैक में और वहां समझते हैं कि कैसे शुरू हुआ कुछ ऐसा काल जहां पर इंसानों को भक्ति ने भर दिया है। दरअसल हम ऐसे एक नाम की बात करने वाले हैं जिसने अपनी कलम से भक्ति को शब्द दिए। एक ऐसे कवि की बात करने जा रहे हैं जिसने भगवान राम के आदर्शों और मर्यादा को जन जन तक पहुंचाया। एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी रचनाओं में भक्ति है, जीवन का दर्शन है और मानवता का संदेश भी। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। तुलसीदास जयंती है आज, नमन करते हैं और इस अवसर पर याद करते हैं उस महान संत और कवि को जिनकी अमर कृति रामचरितमानस आज भी भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। और उनकी लेखनी ने प्रेम, करुणा, भक्ति, मर्यादा और सदाचार का संदेश दिया। आज भी वो संदेश लोगों के जहन में है। तो तुलसीदास जयंती पर उनके साहित्य को नमन करते हैं, उनके विचारों से जीवन में प्रेम, सद्भाव और मानवता का उजाला फैलाने का संकल्प लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को शत शत नमन।

राजा राम की उपासना करने वाले भक्तिकाल में डूबे हुए तुलसीदास जी को हम नमन करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी और विज्ञान दोनों का एक दूसरे से जो नाता है, थोड़ा विज्ञान के दौर में आ जाते हैं और बात करते हैं अपनी आँखों की और अपनी आँखों से दिखने वाले नज़ारों की। भाई कहते हैं ना कि प्रकृति ने हर इंसान को

जन्म के साथ एक कैमरा दे दिया है, और ये कैमरा है हमारी आंखें। भाई साहब हर पल की तस्वीर जो है हमारे इन्हीं आंखों के जरिए हमारे मन के अंदर सहज के रख ली जाती है, लेकिन इंसान विज्ञान के साथ मिलकर चमत्कार करने के लिए जाना जाता है और उसने कर दिया एक कैमरे का इस्तेमाल। सोचिए क्या सोच रही होगी उस बंदे की जिसने कैमरे को ईजाद किया। इंसान भाई साहब रुका ही नहीं, उसने इन यादों को स्थायी रूप से सहजने के लिए कैमरे और फोटोग्राफी का आविष्कार किया। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और बहुत कुछ बताता है इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीख कि भाई साहब 19 अगस्त सिर्फ 19 अगस्त नहीं, ये दिन उस तकनीकी और कला को समर्पित है जिसने पलों को तस्वीरों में बदलकर उन्हें समय की सीमाओं से परे सुरक्षित रखने का रास्ता दिया। यानी पुराने बीते पलों में अगर हमें जाना हो तो बस पुरानी तस्वीर उठाकर देख लीजिए, लम्हे वापस नहीं आते हैं, लेकिन वो तस्वीर देखकर हम उन लम्हों में वापस जा सकते हैं। और फोटोग्राफी का जो इतिहास है ना, 1839 का वर्ष इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौर में फ्रांस में लुई डाग्यूरे की डॉक्यूरियो टाइप प्रक्रिया ने तस्वीर को स्थायी रूप से सहजने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। और इसी वर्ष 19 अगस्त को फ्रांस सरकार ने इस प्रक्रिया को सार्वजनिक भी कर दिया। यही तारीख आगे चलकर विश्व फोटोग्राफी दिवस से जुड़ गए। इसके बाद फोटोग्राफी ने लगातार तरक्की की। तस्वीरें केवल अब यादों को संजोने का माध्यम नहीं रही हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, कला और समाज को दर्ज करने का महत्वपूर्ण साधन बन गई। आज कैमरा हमारे मोबाइल फोन तक पहुंच चुका भाई, एक क्लिक में हम अपने जीवन के खास पलों को सहज कर रख सकते हैं, इवन हम उसके वीडियोस तक बना सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो फोटोग्राफी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है शायद यही है कि गुजरते हुए पल को ये थाम लेती है वहीं पर। एक तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो अपने समय की कहानी होती है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर उन सभी फोटोग्राफर्स और तस्वीरों को सलाम भाई, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया हमें देते हैं। और फिर उस कलाकार की बात करें जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, तो कहने ही क्या।

तो भाई साहब चित्रकारी की तो बात है, आप समझिए प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि मन करता है उसे देखते ही रहें। और कहते हैं कि भाई अगर साफ सफाई अपने आसपास रखते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाती है। अब देख लीजिए हम ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी लिए रहते हैं, वरना जो लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं साफ सफाई से। चलिए अब अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं तो चलिए खेल कूद से जुड़ी रिपोर्ट को भी सुन लेते हैं, क्योंकि आप जो है BWF चैंपियनशिप को लेकर एक रिपोर्ट है जिसे आप सुन सकते हैं बस अब से कुछ ही देर में।

0: राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम से भारतीय खिलाड़ी के हर शॉट और प्रत्येक पॉइंट पर उठता ये शोर बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। ये जोश और जुनून 17 साल के लंबे अंतराल के बाद BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खुली आंखों से देखने का अवसर तो है, साथ ही उस बीते दौर से अब नए दौर के खिलाड़ियों और नई शैली के बैडमिंटन को निहारने का एक अवसर भी है। इन 17 सालों में भारतीय बैडमिंटन ने एक पीढ़ी को आगे बढ़ते, तिरंगे को थामते और देश का मान बढ़ाते हुए देखा है। वही पीढ़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मंच पर भारत के लिए कामयाबी की नई कहानी लिख रही है। पहले दिन की कामयाबी के सिलसिले को दूसरे दिन भी कुछ खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया है। ये शोर साफ तौर पर यह बता रहा है कि 14वीं सीट लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 64 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन के खिलाफ पहला गेम 16-21 से गंवाने के बाद भारतीय खेल प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, एक आशंका मन में बटरा रही थी, लेकिन लक्ष्य ने विरोधी को बस यही एक मौका दिया। दूसरे और तीसरे गेम में तो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि फिलिमोन को पौं जमाने का मौका तक नहीं मिला। लक्ष्य 16-21, 21-8, 21-4 की जीत पर मुस्कुरा रहे थे तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। लक्ष्य ने अपने इस जीत को खास बताया।
1: थोड़ा विंड था स्टेडियम में एंड फर्स्ट मैच था, जो मेरा टैक्टिक्स था वो थोड़ा चल नहीं रहा था, एंड देन जो मेरे शॉट्स थे स्पेशली नेट से जो मैं खेल रहा था उसपे वो काफी शॉट जा रहे थे। आई वाज स्केर्ड कि वो बाहर चले जाएंगे, तो आई थिंक दैट वाज नॉट वर्किंग। एंड सेकंड सेट में आई ट्राइड टू ओपन अप द गेम, उसको रैलीज में मैं लेके आया, बट अगेन जब भी मैं ड्राइव खेल रहा था या फिर मैं शॉट उनको दे रहा था चांसेस एज ही स्टॉल एंड गॉट अ गुड रीच, तो वो अटैक करके पॉइंट ले ले रहे थे। बट आई थिंक सेकंड सेट में मैंने वही चीज चेंज करी, आई ट्राइड टू गेट हिम इनटू रैलीज एंड इतने चांसेस उनको नहीं दिए अटैक करने के, ड्राइव्स खेलने के। स्टार्टिंग से ही मैं काफी कॉन्फिडेंट था, बॉडी लैंग्वेज और जैसा मैं खेल रहा था आई थिंक दैट वाज आल्सो मच बेटर देन द फर्स्ट टू गेम।
0: महिला सिंगल्स में मात्र 18 साल की उन्नति हुड्डा ने म्यांमार की थेट हटर थुजार के खिलाफ राउंड ऑफ 64 के मैच में पूरी परिपक्वता का परिचय दिया। पहले गेम में उन्नति को मुश्किलें आ रही थी, उन्होंने माना कि शटल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जल्दी ही तालमेल बिठाया और फिर गेम को बेहद नजदीकी मुकाबले में 22-20 से जीत लिया।
2: In the first set, I was just trying to understand the drift and everything, but she was also playing, she was very good and all. It was going neck to neck. I think in the last 5 points of the first game, I controlled and stayed patient and then she did some mistakes.
0: पहले गेम में उन्नति ने आसानी से अंक दिए थे, लेकिन दूसरे गेम में अपनी गलतियों को सुधार कर कोर्ट पर उतरी। उन्नति ने बताया कि उन्होंने नेट गेम और रणनीति को बदला और फिर दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मैच जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई।
2: And then the second game, I was able to know ki that end of the court, the attack is going faster, so I just played my game attacking and it helped me and stick to the plan. Her attack also was going really fast, so there was some difficulty for me also. In the first game, मैंने थोड़े नेट से फ्रंट कोर्ट से थोड़े एरर्स किए थे, and then I was ready in the net front court. I gave so many points from the front court, so then I became ready on the front court and it helped me.
0: हरियाणा के रोहतक की ये खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचने में अपने पिता के योगदान को बहुत बड़ा मानती हैं।
2: There is a massive contribution of my family and my dad. So I cannot say in words that how much he has contributed to me. But yeah, I am really thankful that I have a great family who supports me a lot.
0: Women's doubles में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला ने बड़ा उलटफेर कर दिया। Unseeded भारतीय जोड़ी ने 16वीं सीड अमेरिका की एलिसन कुन ली और लॉरेन लैम को दिन में ही तारे दिखा दिए। पहला गेम 21-15 से जीतने वाली गायत्री और त्रिशा ने दूसरे गेम को अपने लिए और भी आसान बना लिया। दूसरा गेम दोनों ने 21-12 से जीता और प्री क्वार्टर फाइनल में जोरदार दस्तक दी। इस जीत पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और त्रिशा और गायत्री के चेहरे पर इसकी खुशी साफ दिख रही थी।
3: फील्स अमेजिंग, आई एम सुपर ग्रेटफुल, आई जस्ट फील वेरी प्राउड, बहुत खुश है। द कोर्ट्स वर लाइक वेरी मच लाइक यस्टरडे, अ बिट ट्रिकी, बट आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू अडैप्ट क्विकली एंड नॉट गेट टू फ्रस्ट्रेटेड, बट एज सून एज वी to know how the shuttle was moving, I think we could play our game better, and yeah, I think we were pretty aggressive today, which worked in our favor, so yeah, really happy.
0: विमेंस डबल्स में ही कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी को 9वीं सीड गैब्रिला स्टोवा और स्टेफानी स्टोवा ने आसानी से 7-21, 14-21 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने माना कि पहले गेम में हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और लंबी रैली में विरोधी भारी पड़ी। दोनों ने ये भी माना कि फिटनेस पर काम करना होगा।
4: फर्स्ट गेम हम खेल रहे थे एंड रैलीज हो रही थी बहुत ज्यादा, बट हम पॉइंट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे एंड हम लोग उनसे टफ फाइट भी दे रहे थे रैलीज में, बट वही हो रहा था कि एंड में पॉइंट उनको आ रहा था और फिर वो काफी लीड चली गई थी। हम लाइक इतना पेशेंट कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे थे, हम थोड़ा हड़बड़ी कर रहे थे पॉइंट लेने में, वेरिएशन करने चाहिए थे. लाइक वो हमसे थोड़े ओल्डर है, स्ट्रॉन्गर है, उनका स्मैश बहुत जोर से आ रहा था जितना हम कंपेरेटिवली मार रहे थे. वी आर गोइंग टू ट्रेन वेरी हार्ड, एकदम रिग्रेस ट्रेनिंग करना है, फिट होना है, कंसिस्टेंट होना है कि इतना तो रैलीज होगा, इतने स्ट्रांग रहेंगे कि इजी पॉइंट नहीं मिलने वाला है. तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अटैक और डिफेंस, दोनों में से एक चीज एकदम स्ट्रांग करना है.
0: उधर मिक्स डबल्स में अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी ने तुर्की के इमरे सोनमेज और यासिमेन बेगताज के खिलाफ मैराथन मुकाबला किया, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी राउंड ऑफ 64 में शिकस्त झेलनी पड़ी.
5: जस्ट फीलिंग सैड फॉर दैट, फॉर अस, फॉर द फैंस, फॉर द क्राउड, वी कुडंट कन्वर्ट द गेम, जस्ट फीलिंग बैड अबाउट इट.
0: पहले गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीता, लेकिन ये लय बरकरार नहीं रह सकी. दूसरे गेम में कांटे का मुकाबला हुआ, दोनों में से कोई भी जोड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी. एक एक अंक के लिए कांटे का संघर्ष दिखा. इस गेम के रोमांच का अंदाजा स्कोर से लगाया जा सकता है. इस मैराथन गेम को तुर्की की जोड़ी ने 30-29 के स्कोर पर जीता. मैच तीसरे गेम तक पहुंचा. इस गेम में शुरुआती बढ़त भारतीय जोड़ी ने बनाई, लेकिन एक बार फिर लय बिगड़ी और कड़े संघर्ष के बाद 24-22 से शिकस्त मिली. तीन गेम का ये मुकाबला रोमांच की हदों को पार कर गया. परिणाम को लेकर सूर्या और प्रमुथेश ने कहा,
5: पहला सेट में तो अच्छा खेल रहे थे, जीत भी गए पहला सेट. सेकंड सेट वही कॉन्फिडेंस में गए और मैच पॉइंट भी थे, थोड़ा प्रेशर हो गया, कन्वर्ट नहीं कर पाया. वी वर प्लानिंग फॉर ईच पॉइंट दैट व्हाटएवर वी प्लान्ड डिडन्ट गो आवर वे, सो वी एंडेड अप डूइंग लिटिल एरर्स.
2: I mean, we are happy that we have played this well, but there are some takebacks we will focus on. Like when we have the match point, we had to play safe, just inside, just focus on few easy points, not anything extra or trying to take a quick point. Just those small takebacks.
0: इससे पहले मिक्स डबल्स में ही रोहन कपूर और रितिका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी कड़े संघर्ष के बाद कनाडा के जोनाथन बिंगसान लाई और क्रिस्टल लाई से 22-20, 19-21, 17-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इस हार की निराशा भारतीय जोड़ी की बातों से महसूस की जा सकती है.
6: फर्स्ट गेम ठीक था, कंफर्टेबली जीत रहे थे. सेकंड गेम भी ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी इधर उधर मिस हो गया, एंड देन वी लॉस्ट अ बिट ऑफ टच, ट्राई टू प्ले अ लॉट ऑफ क्लोज पॉइंट्स एंड वहां पे वी स्लिप्ड आउट, एंड एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट द सेकंड गेम. एंड देन ऑब्वियसली होम क्राउड है, हमारा स्टेडियम है, हमारा शहर है, थोड़ा प्रेशर आ गया.

0: स्टार्टिंग में दोनों को, एंड देन ऑब्वियसली डिडंट स्टार्ट वेल एज अ रिजल्ट।
1: ये तो रही भारतीय खिलाड़ियों की बात, लेकिन टूर्नामेंट में दूसरे दिन बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ। मेन सिंगल्स में दुनिया की तीसरी रैंकिंग वाले जोनाथन क्रिस्टी ने पहले दौर में जर्मनी के मैथियास किकलिड्स को 2 गेम में आसानी से शिकस्त दी। इसी वर्ग में 13वीं सीड सिंगापुर के लो किन येव ने पहले राउंड का मैच कनाडा के ब्रायन यंग से आसानी से जीता। महिला सिंगल्स में 11वीं सीड जापान की नोजुमी ओकुहारा को पहले दौर में ही कोर्ट पर खूब पसीना बहाना पड़ा। तुर्की की ओसगे बैराक ने उन्हें मैदान पर खूब भगाया। हालांकि ओकुहारा 3 गेम का ये मुकाबला जीतने में सफल रही। पसीना तो 4थी सीड चीन की चेन यू फेई को भी खूब बहाना पड़ा। जीत के लिए हांगकांग की लोसिनियान हैप्पी ने उन्हें 3 सेट तक इंतजार कराया। अब तीसरे दिन मेन सिंगल्स में पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 शी यू की को हराने वाले आयुष शेट्टी का सामना अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी श्रीलंका के दुमिंदु अभय विक्रमा से होगा। लक्सेन राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के गैरेट टैन से भिड़ेंगे। विमेन्स सिंगल्स में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीद और 9वीं सीड पीवी सिंधु कनाडा की वेन यू झेंग से खेलेंगी। 49वीं सीड कैनेडियन खिलाड़ी वेन यू झेंग के खिलाफ सिंधु का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है। उन्नति हुडा के लिए कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिचेल ली के साथ मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन उन्नति ने लय बरकरार रखी तो उलटफेर संभव है। मेंस डबल्स में 5वीं सीट सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भिड़ंत स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल से होगी। हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन का सामना 15वीं सीट कोरिया के कैंग मिन युक और की डांग जू से होगा। मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मकाओ की जोड़ी लियांग लॉक चोंग और वेंग ची एनजी से खेलेंगे। उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोड्यूसर शहनवाज खान और एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का वो मुकाबले की रिपोर्ट्स। अब एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: अरे कौन किसी के बिना रह पाता है और कौन किसी के बिना नहीं रह पाता, ये तो भैया बाद के किस्से हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कोई शख्स है और वो खूबसूरत है अपनी बातों में, अपने अपने जज्बातों में, तो फिर जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है ना। और खूबसूरती कैसे दरकती है? अपने काम से, अपने चरित्र से, अपने नाम से, अपने संस्कारों से, है ना। और ऐसी ही शख्सियत की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जो अपने नाम से, अपने काम से बहुत खूबसूरत हैं, उन्होंने जब भी याद करो भाई एक प्रेरणा देकर ही जानते हैं। कोई एक रास्ता मिलता है, जीवन जीने का एक तरीका मिलता है, और उन्हीं में से एक नाम है श्री शंकर दयाल शर्मा जी का। जी हाँ, भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक परंपरा में एक ऐसा नाम है जिसने राष्ट्रपति पद की गरिमा को अपने विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से एक नई पहचान दी। वे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और वर्ष 1992 से 1997 तक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहे। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। संविधान, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रति उनका गहरा जुड़ाव उनके सार्वजनिक जीवन की विशेष पहचान रहा, है ना। आज उनकी जयंती है, उनको नमन करते हैं। और कहते हैं ना कि विद्वता का परिचायक होते हैं वो लोग जो जीवन में कुछ सिखा जाते हैं। ऐसे ही तमाम लोग, तमाम शख्सियत हमारे देश की मिट्टी में जन्मी है, देश भारत।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

और भारत में जिस तरह से वीर सपूत हुए हैं वो बहुत कुछ देगा इस देश को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने किरदारों में कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। यानी फिल्मी जगत में भी कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने संगीत से देशभक्ति के कभी गीत जगाए हैं, जज्बा जगाया है, और कभी कुछ रोमांटिक सॉन्ग लिखे हैं। यानी भारत की मिट्टी में ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया पर अपना परचम लहराया है। चलिए थोड़ा फिल्मी जगत की तरफ बात करते हैं और अब बढ़ चलते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने अपने किरदार से जो भी उन्हें अभिनय करने के लिए किया गया उसको जीवंत करके रख दिया। और उनमें से दो नाम हैं फिल्म जगत से, एक हैं संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम साहब, इनका पूरा नाम है मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, और दूसरे हैं उत्पल दत्त साहब। दोनों की पुण्यतिथि है आज और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। दरअसल भारतीय सिनेमा और कला जगत, इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनका काम समय बीतने के साथ साथ याद किया जाता है, वो भी बहुत गहराई से। 19 अगस्त ऐसी दो महान प्रतिभाएं हैं जिनकी पुण्यतिथि का दिन है, अभिनेता उत्पल दत्त और संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी साहब। उत्पल दत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि रंगमंच के सशक्त अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। बंगाली रंगमंच से लेकर हिंदी सिनेमा तक उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। गोलमाल, गुड्डी और

वंशोम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है और 19 अगस्त 1993 को उन्होंने आखिरी सांस ली और हमारे बीच नहीं रहे। वहीं मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी साहब ने अपनी सुरमई धुनों से हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी। कभी कभी उमराव जान, नूरी जैसी फिल्मों का संगीत उनकी विशिष्ट शैली का परिचायक है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सहित

के लिए अमर हो जाए। तो एक ने अभिनय से किरदारों की जीवन किया तो दूसरे ने सुरों से भावनाओं का आवाज दे। उत्पलत साहब और खयाम साहब को उनकी पुण्यतिथि पर पूरी टीम की तरफ से नमन। और उनकी फिल्म कभी कभी से बहुत खूबसूरत संगीत।

और कुछ गीत होते हैं जो जहन में उतर जाते हैं, उन्हीं में से एक ख़याम साहब का संगीत जिसमें गीत में दिया हुआ है वो गीत हम सुन रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़कर चलते हैं, अब कुछ खेल जगत की भी बातें कर ली जाएँ, जिसमें दो ऐसी शख्सियत हैं, दो ऐसे नाम हैं, एक का आज जन्म दिवस है और एक की आज पुण्यतिथि है, दोनों के बारे में हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। दरअसल एक का नाम है जिनका जन्म दिवस है आज, विजय कुमार शर्मा जी हैं। कहा जाता है कि सटीक निशाना, अटूट अनुशासन और देश के लिए पदक जीतने का इनमें जुनून था, और ऐसे जज्बे का नाम ही है विजय कुमार शर्मा। दरअसल 19 अगस्त 1985 को जन्मे विजय कुमार भारतीय निशानेबाज हैं और भारतीय सेना के सैनिक रहे। 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता था। निशानेबाजी में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और अति विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी आपको जन्मदिन की। अब हम बात करते हैं कि सचिन नाग जी की। दरअसल उनके लिए कहा जाता कि वो एक तैराक जिसमें पानी की लहरों को चीरकर भारत के लिए इतिहास रच दिया, और एक खिलाड़ी जिसकी उपलब्धियों ने देश को एशियाई खेलों में गौरवान्वित किया, उनका नाम है सचिन नाग जी। भारतीय तैराकी के शुरुआती सितारों में उनको याद किया जाता है, और 1951 के पहले एशियाई खेलों नई दिल्ली में सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, और इसी प्रतियोगिता में उन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल रिले और 300 मीटर मेडले रिले में 2 कांस्य पदक भी जीते थे। उनका खेल सफर सिर्फ तैराकी तक ही सीमित नहीं था भाई साहब। सचिन नाग 1948 और 1952 के ओलंपिक में भारतीय वाटर पोलो टीम के सदस्य भी रहे थे। 1948 के लंदन ओलंपिक में चिली के खिलाफ भारत की 7-4 की जीत में उनके 4 गोल थे भाई साहब, है ना, और उनकी खेल उपलब्धियों को आगे चलकर सम्मान मिला। 2020 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 19 अगस्त 1987 को सचिन नाग जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय खेलों के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। और एक प्यारे से गीत के साथ आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अगले चरण में नायर जी आ रही हैं दोबारा से इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए, हमसे आगे ले जाएंगे, है ना। और ये गीत आपके जहन में बसेगा जरूर, क्योंकि इतनी जितनी भी हस्तियों की बात की, इतिहास की बात की, सबको संजे हुए है ये गीत अपने शब्दों में, अपने संगीत में।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 102.6 FM रेनबो। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह स्कीम पहले सितंबर से 6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 3% देने के मामले में बढ़ोतरी की है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के तहत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। झारखंड सरकार के अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंच रहे हैं। वे कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। नीदरलैंड्स ने पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। और फुटबॉल में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल FC का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गप

0: थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है एक और वर्जन गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ, नया फ्लेवर नया क्लेवर, और मैं हूँ आपके साथ भावना। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह 8:03 हो रहे हैं, और ये वो समय होता है जब बहुत सारी हसल बसल हो रही होती है और बहुत सारी बातें आपसे करनी होती है, क्योंकि टेंशन बढ़ रही होती है, ऑफिस के लिए आपको लेट हो रहा होता है, या फिर वो जो ट्रैफिक है वो मिलने वाला होता है। तो क्या करें यार, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। ना सोमवार वाली शुरुआत की हड़बड़ी है मेरे दोस्त, ना शुक्रवार वाली खुशी कि बस अब वीकेंड आने वाला है। हम खड़े हैं हफ्ते की ठीक मजेदार में, क्योंकि सोचिए जिंदगी भी इस वक्त कुछ ऐसे ही पेंडुलम जैसे लग रही है। एक तरफ काम का प्रेशर, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, एक तरफ ट्रैफिक का डर, दूसरी तरफ घड़ी लगातार टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक आगे बढ़े जा रही है। और सुबह के ना ये जो 8 से 9 का समय होता है ना, वो दिल्ली की रफ्तार में सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला होता है, क्योंकि पूरे मूड में उस होती है इस समय दिल्ली। किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को कॉलेज, किसी के बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो पहली बार जो दिन की चाय की जो चुस्की चैन भरी राह दे रही है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और किसी का वर्कआउट चल रहा है और कोई सोच रहा है बस आज ट्रैफिक ना मिले। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मेरे दोस्त के अगले 1 ना आपकी ये भागती दौड़ती जिंदगी को थोड़ा सा लिटिल आसान बना दिया जाए। हम बताएंगे आपको दिल्ली का ट्रैफिक, शहर की हवा कैसी है, इससे में आज के अखबारों में कौन कौन सी वो खबरें प्रकाशित हुई हैं जो आपको जाननी जरूरी है, और सेहत से जुड़ी वो हर बात जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको बनाएगी सेहतमंद, और ऐसी छोटी छोटी नन्नी नन्नी बातें जो आपके पूरे दिन को थोड़ा और बेहतर बना सकती हैं। तो चाय की पहली चुस्की हो या रास्ते की पहली मंजिल, आप जहां हैं वहां से जुड़े रहिए 102.6 FM के साथ, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, दिल से दिल तक मेरे दोस्त।

तो वेलकम हो जाए जी, सुस्वागतम है आपका और सुस्वागतम। आप ट्रैफिक को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि दिल्ली की सुबह का सबसे बड़ा हिस्सा ना ट्रैफिक होता है। और सुबह का 8 से जो टाइम शुरू होता है और उसके बाद जो पीक टाइम शुरू होता है, फिर तो दिल्ली में सिर्फ दूरी दूरी नहीं लगती, सिर्फ सब टाइमिंग का खेल हो जाता है मेरे दोस्त। आप घर से 10 मिनट देर निकले नहीं तो 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट नहीं देते, वो बन जाते हैं लाल बत्ती का इंतजार, सड़क पर बढ़ती गाड़ियां, मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ और फिर ऑफिस पहुंचते पहुंचते बहुत सारा स्ट्रेस। और स्ट्रेस आप लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस तो मैं खत्म करूंगी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया गाने चलेंगे, चाहे वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, लेकिन हमारे लिए हर दिन एक जैसा है, क्योंकि एक के बाद एक हम बॉलीवुड गाने चलाते हैं जिससे आपकी जो सुबह है ना वो बेहतरीन हो जाती है और एक रीबूट हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, रिज्यूविनेट हो जाती है। कल की जो थकान है वो आज आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह जब आपका मेरा साथ होता है तो फिर लगता है कि एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म आ ही गया है। तो दोस्तों क्या है ना कि ट्रैफिक के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हो सके तो वॉल्यूम भी थोड़ा अप कर लो। हाँ, दिल्ली की सड़कों पर हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कैमरे की नजर अब और सख्त होने जा रही है, यानी ऊपर वाला साथ देख रहा है मेरे दोस्त। रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली की सड़कों पर 125 जगहों पर AI या फिर ऑटोमेटेड कैमरों के जरिए अगर आपने रूल्स तोड़े तो फिर आपकी खैर नहीं है मेरे दोस्त। इनमें हेलमेट ना लगाने वाले, दोपहिया चालक यानी कि 2-व्हीलर और सीट बेल्ट ना लगाने वाले वाहन शामिल हैं। और पिछले 4 महीनों की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा चलान हेलमेट और ये सब सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ना लग चुके हैं। फिर देख लीजिए कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। तो इसलिए रूल्स का पालन कीजिए और साथ ही साथ ये आपकी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ रूल्स बनाना प्रशासन का काम नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन रूल्स को जिम्मेदारी से निभाना भी। एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं आपको, हेलमेट न सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है दोस्त, घर पर जो आपका इंतज़ार कर रहा है ना, सुरक्षित तौर पर आप वहाँ पहुँचे, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कार में सीट बेल्ट, चाहे सफ़र 5 मिनट का हो या फिर 50 मिनट का, सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और आगे तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं हम क्योंकि उसका चलान है, पीछे पीछे भी तो लगानी ज़रूरी है, वहाँ के भी तो सुरक्षा ज़रूरी होती है, क्योंकि सड़क पर आपकी सबसे ज़रूरी मंजिल ना आपकी सुरक्षित घर वापसी होती है। साथ ही साथ अब जब आप घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो ज़रा देख लीजिएगा रूट्स पर, फास्टेस्ट रूट कौन सा है, ट्रैफिक सिचुएशन कैसी है, ये फैक्ट चेक ज़रूर करके निकलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, सफ़र आसान हो जाता है, ये जो स्ट्रेस बहुत सारा आपको आता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सुनते रहिए 102.6 FM और कहाँ कहाँ इस समय ट्रैफिक लगा है आपको अगर जानकारी है तो हमें दे दीजिए 1868 9868 107070 पर। और साथ ही साथ हमारा और आपका साथ तो चल ही रहा है, सुनते रहिए 102.6 XFM Rainbow, Good Morning, Delhi NCR.

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
10: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
9: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
10: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: गुड मॉर्निंग दिल्ली, NCR चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ भावना। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ट्रैफिक के लिए सतर्क रहना है। खानपुर से साकेत जाने वालों के लिए एक बड़ा ट्रैफिक अलर्ट है। अब दिल्ली के खानपुर साकेत कॉरिडोर पर रहने और रोज सफर करने वालों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि खानपुर से साकेत मेट्रो तक जो कैरेज वे है 1 महीने के लिए बंद रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि सैनिक फार्म गेट नंबर 2 से एशियन मार्केट के सामने DMRSC पोर्टल बीम के निर्माण का काम चल रहा है और इसी वजह से खानपुर से साकेत मेट्रो के बीच जो कैरेज वे है उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने ऑल्टरनेटिव रूट्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आपको बता देते हैं कि अगर आप खानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप कौन कौन से रूट्स ले सकते हैं। खानपुर टी पॉइंट, BRT कॉरिडोर, शेखसराय टी पॉइंट, प्रेस इनक्लेव रोड, PTS टी पॉइंट और लाडोसराय टी पॉइंट जैसे रूट शामिल हैं। और लाडोसराय की तरफ से आने वालों के लिए भी ऑल्टरनेट रूट्स बताए गए हैं। लाडोसराय टी पॉइंट, अम्बेडकर मार्ग, TB हॉस्पिटल, PTS रोड, प्रेस इनक्लेव रोड, शेखसराय रेड लाइट और खानपुर लाइट की ओर जाने वाले रास्ते। तो अगर आप रोज इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और तो आप इन रूट्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, थोड़ी प्लानिंग करके निकलेगा क्योंकि काफी फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है ऐसे मामले में जब आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है। इसके साथ आपको बता दें कि उत्तर रेलवे की ओर से पुल बंकर्श और पुल डफरीन रेलवे ओवरब्रिज का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इनको पहले तोड़ा जाएगा और इसके बाद नया ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इन दोनों ही ब्रिज को यातायात के लिए खतरनाक घोषित किया गया है और इसके चलते 31 दिसंबर 2027 तक वाहनों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस क्या कह रही है कि पुल बंगश के शुरुआती चरण से में आजाद मार्केट से लाला हरदेव सहाय मार्ग, की ओर जाने वाला कैरेज वे बंद रहेगा और इसके बाद पुल 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं पुल डफरिन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 10 सितंबर से शुरू होगा और ये 31 दिसंबर 2027 तक ये वाहनों के लिए बंद रहेगा। तो आप ये ट्रैफिक जो आपने अभी जानकारी सुनी उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा और घर से निकलने से पहले अगर आप इन रूट्स पर आ जा रहे हैं तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हो सकती है। सुनते रहिए 102.6 एफएम रेनबो मेरे साथ यानी भावना के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, इट्स अ वेंसडे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आप सुन रहे 102.6 FM रेनबो, मेरे साथ यानी भावना के साथ। और अगर बारिश का मौसम हो, चारों तरफ हरियाली हो और रंग बिरंगे फूलों के बीच बस कुछ पल सुकून के मिल जाएं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और प्रकृति के करीब कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मौका है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुल चुका है मेरे दोस्त, और आपके पास समय है 15 सितंबर तक का। यहाँ समर एनुअल्स का आनंद लिया जा सकता है। तो इस बार अमृत उद्यान में क्या कुछ है खास, बारिश के अगर मौसम हो, और यहाँ कौन कौन से फूल और हरियाली आपको देखने को मिल सकती है, लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, श्री कुमार समरेश जी। PRO हैं आप, म्यूजियम प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट राष्ट्रपति भवन से। समरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 FM पर।
1: धन्यवाद।
0: गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल ये कि इस बार समर एनुअल्स एडिशन की सबसे बड़ी खासियत अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी है?
1: देखिए,

0: ये पिछले कुछ वर्षों से हमने समर एनुअल्स स्टार्ट किया है और ये 1 महीने तक चलेगा, जैसा कि आपने बताया 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक। और जो हमने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, जो लास्ट विंटर एनुअल्स में भी हुआ था, कि ऑन स्पॉट बुकिंग हम नहीं ले रहे हैं। सो आपको अगर अमृत उद्यान घूमना है तो 24 घंटे पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, आपको स्लॉट्स चूज करने पड़ेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आपको आना पड़ेगा। साथ ही साथ टाइमिंग्स मैं बता दूं, 10 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक होगा। जो लास्ट एंट्री होगी वो 5 o'clock तक होगी, 5 PM इन द इवनिंग होगी। और ट्रैफिक को नजर में रखते हुए हमने सेंट्रल सेक्रेटरिएट से फ्री शटल सर्विस भी चलाई हुई है, जो आप सेंट्रल सेक्रेटरिएट से गेट नंबर 35 तक यूज कर सकते हैं। तो कार लाने की या किसी और साधन से आने की जरूरत नहीं है, मेट्रो का यूज करें और फिर हमारे शटल सर्विस का यूज करें। बाकी साथ
1: जी बताइए बताइए।
0: साथ ही साथ जो आपने पूछा, तो समर एनुअल्स में हमारे जो मॉनसून बरसाती फ्लावर्स होते हैं उनको हमने इस बार हमारी कोशिश है कि इसको भी हम हाईलाइट करें। और हरियाली तो रहती है बरसात के कारण, और बैकड्रॉप ऑफ राष्ट्रपति भवन है, तो आप अपने परिवार के साथ जरूर आए, दोस्तों के साथ आए, क्योंकि मोबाइल्स अलाउड है तो आप पिक्चर्स ले, सेल्फीज ले और दूसरे को भी मोटिवेट करें। हमारी हेरिटेज है राष्ट्रपति भवन, यहाँ जरूर आए और देखें इसे।
1: जी बिल्कुल, अगर लोग यहाँ आ रहे हैं तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो यहाँ का रहता है ना, वो है तरह तरह के फूल। तो कौन कौन से फूल इस बार स्पेशल अट्रैक्शन रहने वाले हैं, पौधे हों या फिर गार्डन अट्रैक्शन में उन्हें क्या देखने को मिलेगा?
0: जी, गार्डन अट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, सर्कुलर गार्डन है और इसी के साथ बॉन्जाई गार्डन है, फिर बैबलिंग ब्रूक जो हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था वो काफी फेमस है, किड्स कॉर्नर है, बच्चों के लिए है, 225 साल पुराना वृक्ष भी आपको मिलेगा, साथ साथ इस समय के जितने भी फ्लावर्स हो सकते हैं वो सब लगभग 25 से ऊपर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आप देख सकते हैं।
1: आपने बैबलिंग ब्रूक की बात करी, मैं आपसे यहाँ बैबलिंग ब्रूक के बारे में पूछना चाहूंगी। ये खास आकर्षण बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा और लोगों को यहाँ कैसा अनुभव मिलने वाला है?
0: देखिए क्या था कि जब बैकड्रॉप ऑफ राष्ट्रपति भवन है और हरियाली है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ स्ट्रीम तरह की चीज को भी लाया जाए, तो इट्स लाइक फ्लोइंग ऑफ वाटर है, थोड़ी सी उस तरह से हमने उसमें म्यूजिक भी डाल दिया है, तो इट्स लाइक फ्लोइंग ऑफ वाटर विथ साउंड, सो यू फील दैट इट्स नेचुरल और आपको फीलिंग आती है कि वो सब पूरी एक तरह की फीलिंग रहती है कि हाँ भाई फ्लावर्स भी है, गार्डन भी है और फ्लोइंग स्ट्रीम भी है, वाटर बॉडी भी है, तो इस तरह का एक फीलिंग आपको ये देता है।
1: सुनकर इतना खूबसूरत लग रहा है। इस बार एक और बहुत ही खास पहल है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर खिलाड़ियों के लिए हो या फिर टीचर्स डे पर शिक्षकों के लिए, क्या विशेष प्रवेश रखा गया है सर इस बार?
0: जी 29th नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो इस दिन हम जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको खास इनविटेशन दे रहे हैं आने का। स्पोर्ट्स में इट कुडन्ट बी एनीबॉडी, जो स्कूल में बच्चे स्पोर्ट्स को करियर लिए हुए हैं या जो उनके कोचेज हैं या जिन्होंने यूनिवर्सिटीज में खेली हुई है या नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल्स खेले, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम टू कम ऑन दैट डे 29th को। बेसिकली वी विल बी कमेमोरेटिंग द नेशनल स्पोर्ट्स डे, एंड इस दिन नॉर्मल विजिटर्स नहीं आएंगे, ओनली पीपल हु हैव द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही साथ 5th सितंबर को जो टीचर्स डे है उस दिन टीचर्स स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जहां से भी आ सकते हैं वो आए, हम उनके लिए ये खास दिन हमने रखा है।
1: और आने से पहले अगर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी हो तो वो कौन सी चीजें होंगी और कौन से गेट से एंट्री होगी सर?
0: गेट नंबर 35 है अमृत उद्यान की, वहां से ही एंट्री होती है और कोशिश करें कि ज्यादा सामान लेकर नहीं आए, ऐसे क्लॉक रूम की व्यवस्था है बट मैं अनुरोध करूंगा कि लोग कम से कम सामान लेकर आए सुरक्षा कारण के कारण, और मोबाइल्स है या जो चीजें बेसिक चीजें होती हैं वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ड्रिंकिंग

0: वाटर फैसिलिटीज वगैरह अंदर प्रबंध है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है, तो कोशिश करें कि कम से कम सामान लाए और अमृत उद्यान का आनंद लें।
1: आपने अमृत उद्यान की खूबसूरती के साथ साथ वहां मौजूद जो नए आकर्षण होने वाले, विजिटर्स की सुविधाएं और विशेष दिनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें कि अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला है और फ्री एंट्री है बिल्कुल, लेकिन ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना इस बार जरूरी है। तो अगर इस मौसम में अगर आप फूलों और हरियाली के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं ना, तो अमृत उद्यान आपके लिए बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, ये थे हमारे साथ कुमार समरेश जी और वो हमारे साथ जुड़े, और आप सभी श्रोता सुनते रहिए 102.6 FM रेन, और यही एक खूबसूरत गाना आपके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2017

0: को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: तो दिल्ली वालों, एक और बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक अच्छी खबर है। आज दिल्ली की सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें उतर रही हैं। इनमें 56 यानी कि 56 लेडी स्पेशल बसें होंगी, खासतौर पर महिलाओं और छात्रों की सुविधा के लिए। नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े की बात करें तो बसों की संख्या बढ़कर 6,800 हो जाएगी, जिनमें से 4,938 इलेक्ट्रिक और 1,750 CNG बसें होंगी। इन बसों को दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट, शिवाजी स्टेडियम और साथ ही साथ कई प्रमुख इलाकों के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही महिलाओं और छात्रों के लिए चलने वाली लेडी स्पेशल बसें उनकी अधिक मांग वाले रूटों पर भी अब उपलब्ध होने वाली है। यानी दिल्ली की सड़कों पर अब सफर होगा थोड़ा ग्रीन, थोड़ा स्मार्ट और महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। और साथ ही एक और बात बताऊं आपको, खेलों में करियर के नए रास्तों को लेकर ना क्या होता है कि खेलों को सिर्फ मैदान और मेडल तक सीमित समझते हैं, तो दिल्ली में होने वाला एक आयोजन आपकी अब सोच बदल सकता है। 20 से 22 अगस्त यानी कल से 22 अगस्त तक भारत मंडपम में 13वां स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो और कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है। यहां 200 से ज्यादा ब्रांड्स, 1,000 से ज्यादा खेल उत्पाद यानी कि स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। स्पोर्ट्स वेयर और जूतों से लेकर जिम इक्विपमेंट, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और मॉडर्न स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी तक बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि इस एक्सपो में युवाओं के लिए स्पोर्ट्स साइंस, फिटनेस, डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और कोचिंग जैसे क्षेत्रों में बन रहे नए करियर अपॉर्चुनिटीज पर भी डिस्कशंस होंगे। और 21 अगस्त को स्पोर्ट्स इंडिया कांग्रेस में खेल नीति, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कोचिंग और यूनिवर्सिटीज की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष डिस्कशन होने वाला है। तो अगर आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, खिलाड़ी हैं, फिटनेस में रुचि रखते हैं, स्पोर्ट्स को करियर के रूप में देख रहे हैं, तो कल से शुरू होने वाला और 22 अगस्त तक चलने वाला भारत मंडपम का स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो आपके लिए काफी काम का हो सकता है। एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना जो आपका दिन बना देगा।

दिल्ली वालों, एक और बड़ी अच्छी खबर है, बताऊं आपको? बड़ी चिंता रहती है ना आपको कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और सांसें स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है। तो एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इस साल अब तक दिल्ली में करीब 150 दिन यानी कि 150 दिन की हवा जो है वो बड़ी साफ सुथरी रही है। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि साल के आधे हिस्से तक बीते कुल 229 दिनों में बड़ी संख्या में दिन ऐसे रहे हैं जब दिल्ली की हवा बहुत ही संतोषजनक और अच्छी श्रेणी में रही है। और इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है कि मानसूनी बारिश आई है और प्रदूषण कम करने के लिए हम पिछले कुछ सालों से बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना, कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और देखो, इसका असर दिखने लगा है, यानी दिल्ली की हवा में सुधार की तस्वीर अब बहुत अच्छी दिख रही है। आने वाले दिनों में यही कोशिश की जा रही है कि और अच्छी हो। और बारिश और हरियाली के मौसम में सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, सांसों के लिए भी थोड़ी राहत लेकर आया ये। और जब हम हरियाली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली वालों, आपको मुझे पता है घूमने का बड़ा शौक है और अभी अभी तीज गई है, लेकिन तीज के रंग नहीं उतरे हैं। तीज महोत्सव अभी भी चल रहा है, नई दिल्ली में बीकानेर हाउस है। और अगर आप राजस्थान का रंग देखना चाहते हैं और वो भी तीज मनाना चाहते हैं अभी भी, तो वक्त बीता नहीं है। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति, लोक कला, हस्तशिल्प और खान पान का आनंद लेना चाहते हैं तो आप बीकानेर हाउस आ जाइए। 23 अगस्त तक इस बीकानेर हाउस में ही तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आपको राजस्थान की पारंपरिक कला

और संस्कृति की झलक तो मिलेगी, साथ ही क्राफ्ट बाजार में आकर्षण बहुत सारे हैं, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ग्रामीण महिला उद्यमी हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो हस्तनिर्मित उत्पाद है ना, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, वो आपको खरीदने का मौका मिल सकता है। ये और कहीं नहीं मिलते, ये इन्हीं जगहों पे मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। यानी आपको अगर हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी पसंद है ना, ट्रेडिशनल डेकोर, टेक्सटाइल्स या राजस्थान की लोक कला पसंद है, तो

घूमते घूमते ना आपको अगर भूख लग जाए तो यहाँ राजस्थानी और रीजनल फूड के साथ कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं, यानी कला, संस्कृति और स्वाद तीनों का एक साथ अनुभव आपको देखने को मिल सकता है। बीकानेर हाउस आइए, दिल्ली में दिख रहा है आपको राजस्थान का रंग तेज के संग। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

इसी के साथ वक्त हो गया है अब आपसे अनुमति लेने का। अगला कार्यक्रम होगा दिल की तराने, गाने नए पुराने रविंद्र के साथ, जहां नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक होगा, साथ ही रेट्रो गीत होंगे। हैव अ वंडरफुल वेडनेसडे एंड कमिंग डेज अहेड। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।

0: अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह स्कीम पहले सितंबर से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में बढ़ोतरी की है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के तहत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंच रहे हैं। वे कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ हर तरह के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और अब खबरें खेल जगत से। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। और अंत में क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
0: हाँ जी, तो हमें पता है आप तैयार होंगे पूरी तरह से गानों का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नए और पुराने गीतों का संगम है भाई साहब, और संगम में डुबकी लगानी है आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 102.6 FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह, हाजिर हूँ लेकर दिल

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
9: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
10: तो भाई साहब, देर किस बात की, अब आ रहा है वो सॉन्ग जो आपके दिलों में उतरेगा, और आवाज है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और यशुदास की। तो रहिए तैयार। और इस प्रोग्राम की खासियत भी भाई साहब ये है कि नए पुराने गीतों का यह संगम है, तो नए गीतों के साथ साथ कि नए कौन से बेहतरीन गीत हैं और पुराने कौन से, तो सुनिए, मजा लीजिए।

तो ये खूबसूरत सी आवाज़ आपने सुनी विशाल मिश्रा की, और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। और आप को ये भी बताना चाहेंगे कि भैया गानों के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी, क्योंकि बहुत कुछ कह रहा है बाहर का ये मौसम। तो चलिए फटाफट मौसम का हाल भी बता देते हैं, फिर चलते हैं उस तरफ जहाँ थोड़ा सा इंतज़ार होगा कि अगला गीत जो है रेट्रो सॉन्ग कौन सा बजने वाला है। तो भैया नई दिल्ली की, अगर दिल्ली NCR की बात करें, तो आज के दिन 31 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है, और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बहुत छारे पड़ने की संभावना है। तो छाता भाई साहब अपने साथ रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि ये बदलता मौसम आपकी सेहत पर असर बिल्कुल भी ना

0: है। और अगर आपको लगता है कि और आगे का सामना है, तो समझ लीजिए कि भाई साहब जो नमी रहने वाली है वो लगभग 73% से 76% के बीच रहेगी। तो फिलहाल हल्की हल्की बारिश के मौसम में अगर प्यारे प्यारे गीतों का भी साथ हो तो फिर कहने क्या, और उसमें भी नए और पुराने गीतों का संगम हो तो बस दिन ही बन जाता है। वैसे उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और कार्यक्रम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह लेकर ये प्रोग्राम है ना। तो आपको करना क्या, बस थोड़ा सा आपको जुड़े रहना है हमारे साथ।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई लोग। प्रोग्राम तो आप सुन ही रहे हैं, अभी हमने बताया आपको कौन सा प्रोग्राम था, दिल के तराने गाने नए पुराने, नए और पुराने गीतों का संगम है। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह, और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और गीत हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल को छू लें। तो कोशिश यही है, आपको बस एक ही काम करना, जुड़े रहना हमारे साथ। कहाँ पर ये भी बताए कि नहीं,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: And it's almost 10:15 a.m. by the studio clock. Before we can move forward with some more music, let's give you this important traffic update for the moment as well. So in case you're around Bhikaji Kama Place metro station, you're likely to find a lot of traffic, especially around Hyatt Regency Hotel. You can expect a delay of about 15 to 20 minutes there. That was the status reported a few minutes back to the studio. And there's also some traffic expected around Ames campus. So that entire area seems to be going through a slight delay, a slight blockage there. So you might want to shift to an alternative route. In case you have one in mind, do not hesitate to write to us on 9868107070. We'd be waiting to hear from you. And the next track, the next lovely track happens to be in the voice of Kishore Kumar. Aa chal ke tujhe main leke chalun ek aise gagan ke tale. Stay tuned, you're with me Niharika on the Matchless Music Hour.

आंचल के तुझे इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार फ्रॉम द फिल्म दूर गगन की छाओ में रिलीज्ड इन 1964. दैट फिल्म वाज एक्चुअली एन अडेप्टेशन ऑफ द अमेरिकन फिल्म द प्राउड रिबेल एंड लेटर इट वाज आल्सो रीमेड इन तमिल इन 1966 एज द फिल्म रामू एंड ऑल्दो इट डिडंट एंड अप विनिंग एनी नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड इट डिडंट एंड अप गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर एनी ऑफ द कैटेगरीज इट डिड बिकम द 8th बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ 1964 at the 28th annual Bengal Film Journalist Association Awards. And this film didn't do very well critically. This film didn't do very well

0: Well, that was Billy Joel with You're My Home. Now, this song, interestingly, was written for his wife. And at the time that he wrote it, he admitted that I was broke and I couldn't afford a gift for my wife. This was way back in 72 or 73, perhaps. So he said that I wrote this song as a Valentine's Day gift for my wife. What a lovely and heartwarming gesture, right? And gifts really don't have to be about much at all. It's just the thought that counts, right? And it's just the way you present it. It's just the feeling that you give it with that makes all the difference. And speaking of home, I actually have a great book recommendation to make to you. So this one's called The Little Coffee Shop of Kabul by Deborah Rodriguez. It's not new. It came out quite a while back, perhaps 5 to 7 years ago, maybe a little more, maybe a little less here and there. But the book is lovely. Now, it's based in Kabul. It's about this coffee shop where these five lovely women from different walks of life meet. And contrary to all the matter that we may have read on the subject or on the country, this one is quite heartwarming. It doesn't make you feel sad or depressed. In fact, it gives you hope that there are chances of survival. Every story is so beautifully interwoven together. So it's really about surviving against all odds. And it's really about reminding us that as long as we're in it together, it's all good. And the best part about this book is that the poems and the lines by poet Rumi are so beautifully interwoven in the narrative. And every character finds home in Rumi's poems. Every character, relates to him in a different way and goes back to those poems to find emotional comfort, security and safety. So read it if you haven't, or maybe put it on your to-be-read list. The Little Coffee Shop of Kabul by Deborah Rodriguez. And it is sheer coincidence that I talk to you about this book today, which happens to be Afghanistan's Independence Day. And with that thought, now we've got to transition into a short break. And post that, the music will continue. That's a promise. You're on the Matchless Music Hour on FM Rainbow. Stay tuned.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, सुबह के 11 बजे हैं और पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम पहले सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं को की सूची जारी की है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन सहित चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में ऋण देने के मामले में बढ़ोतरी की है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के तहत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया। कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ हर तरह के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन को स्थगित किया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और खेलों में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। बहुत दिनों बाद आज आपके साथ आप भी के अपने शो बॉलीवुड ट्रेल्स में, जहां होती है कुछ चटपटी मसालेदार गपशप बॉलीवुड की, जहां हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में क्या कुछ खास चल रहा है, आपके चहीते फिल्मी सितारे, चाहे उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हों, यानी कि उनकी निजी जिंदगी हो, या फिर उनकी फिल्में हों, फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली हैं, किस फिल्म ने धमाल मचाया, या फिर कौन सी ऐसी फिल्म है जो बस धाराशाही हो गई, तमाम बातें होती हैं इस शो पर जिसे आप कहते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। में हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। बने रहिए, टिकी रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें हर दम हर पल, क्योंकि आप और हम हैं सच्चे सच्चे वाले दोस्त।

ये ना ना ना ना कहने की आदत ही तो है जनाब, जिसकी वजह से ना हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो उम्र कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें पता है कि उनमें उनमें अटूट इच्छा शक्ति है, और साथ ही साथ वो हैं खान, किस चीज़ की खान नहीं, आमिर खान नहीं, शाहरुख खान नहीं टैलेंट की खान, और इसी वजह से अभी तक अपना दमखम साबित कर रहे हैं। अब अपने सनी देओल साहब को ले लीजिए जनाब, बंटवारा 1947 में नजर आ रहे हैं हमारे सनी देओल साहब। बंटवारा की बात की जाए तो ये राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म है, और अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अब तक ये फिल्म भारत में कमा चुकी है 30.76 करोड़ रुपये, और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो 43 करोड़ से ऊपर ये फिल्म बना चुकी है, यानी कि कमा चुकी है। बना तो तब चुके थे जनाब जब आप इसे देखने के लिए एकदम आतुर हुए थे, तो 6 दिनों का ये आंकड़ा है जिससे हमने आपको रूबरू करवाया है। लेकिन कहते हैं कि हम जब भी ना रेस में दौड़ने के लिए तैयार होते हैं और पूरे जोश के साथ निकलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई हमारे साथ कोई और भी है जो हमें पछाड़ने के लिए एकदम तैयार है। एकदम तैयार हो गई है आवारा पंटू, और पछाड़ भी रही है आवारा पंटू इमरान हाशमी की ये फिल्म। इमरान हाशमी बहुत समय

बाद स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, इससे यही साबित हो रहा है कि इमरान हाशमी का जादू ना अब भी चलता है। क्या कुछ है खास इस फिल्म में जो आप सभी सिनेमा घरों की तरफ ऐसे दौड़े हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या है इस फिल्म में, क्या इमरान हाशमी खुद वजह है? ये तो आप बताएंगे और हम भी इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने 144 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसने, यानी कि हमारे देश में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। और ये इमरान हाशमी की पहली ऐसी सोलो लीड फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में एंटर हुई है। अब ऐसा क्या हो गया, मैं तो ये जानने के लिए एकदम बेहाल हो रही हूँ कि ये इमरान हाशमी का जादू इतने समय बाद भी बरकरार है। क्या इसकी स्टोरी लाइन आवारापन 2 की स्टोरी लाइन पिछली वाली से भी ज़्यादा खतरनाक है, या फिर आप जो है फैन सच्चर बड़े वाले हैं? ये तो आप ही बताएंगे और हम भी इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आपका और हमारा प्यार जो है ना यूं ही बरकरार रहे। और प्यार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर तोहफे दिए जाएँ। तो ये अगला नजराना हमारी ओर से आपके लिए।

समय होगा 11:15 में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता का होने वाला प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड ट्रेल्स में हम उन तमाम फिल्मों को बहुत ज्यादा याद करते हैं जिन्होंने अपने लिए ना एक मुकाम हासिल किया, क्योंकि उन फिल्मों को जितनी मर्तबा देखा जाता है सच मानिए वो जिंदगी का ना फलसफा बन जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जब भी फिल्म आई थी 2011 में, उसके बाद से हमारी टैगलाइन ही मिल गई, जी लो जिंदगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, और इसी को हमने अपनी टैगलाइन बनाकर अपने जीवन जीने के फलसफे को ही बदल दिया। अब कुछ फिल्में ऐसी ही होती हैं, उनकी स्टोरी लाइन तो होती ही होती है अच्छी है, साथ ही साथ जो फिल्म का टाइटल होता है वो हमारी जुबान पर चढ़ जाता है। जब जुबान पर चढ़ जाती है ना कोई बात, बाय गॉड कसम से फिर तो वो जबान से उतरने का नाम ही नहीं लेती, ऐसा लगता है बस इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए सोते हैं, इसी के लिए खाते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं ऐसा होता है फिर वो चाहे इंसान ही क्यों ना हो। और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके अगर कैरेक्टर्स को याद किया जाए, आए हाय हाय, इन तीनों की दोस्ती ना बा कमाल रही है ना, बा कमाल थी इन दोनों तीनों की दोस्ती, अर्जुन कबीर इमरान, अब आप समझ गए हैं कि मैं किनकी बात कर रही हूँ, फरहान अख्तर, अभय देओल और ऋतिक रोशन की जी। और इस फिल्म के गानों ने तो धमाल ही मचा दिया था, आज भी हम इस फिल्म के गानों को सुनते हैं, हमारे रेडियो स्टेशन पर प्ले करते हैं। अब मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कह रही हूँ और कहने के साथ साथ आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि अगर इस फिल्म का सीक्वल आ जाए तो क्या आप देखने जाएंगे? आप कहेंगे जनाब ये तो सवाल ही गलत है बिल्कुल गलत सवाल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये बात एकदम सच है, और अगर जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है, बल्ले बल्ले। तो जोया अख्तर जिन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया था, उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल लेकर आ रही हैं, यानी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस पर दोबारा काम कर रही हैं। क्या बात है, तो हम बेताब हैं, आप भी बेताब हैं। अब 15 साल इस फिल्म को हो चुके हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब 15 साल बाद फिर जिंदगी जीने का अगर मौका मिल रहा है जनाब तो क्यों नहीं जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे और इस फिल्म को देखेंगे। वैसे ये रूमर्स तब से पहले ही शुरू हुई जब 2025 में एक एडवर्टीजमेंट में ऋतिक, अभय और फरहान नजर आए और वहीं से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी ज़रूर इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है, और अब तो जोया अख्तर ने भी कंफर्म कर दिया है। तो हम करते हैं इंतज़ार, और इंतज़ार ही इंतज़ार में हम पूछ लेते हैं सेनोरिटा से कि वो ये बात सुनने के बाद क्या फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ, ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
5: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
6: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
7: एपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
8: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहनियाल। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना बॉलीवुड ट्रेल, जहां वो समय आ गया है जब आपसे हम पूछते हैं वो सवाल जिसके जरिए आप बन जाते हैं बॉलीवुड सरताज। तो सवाल आज का हर बार की तरह बहुत ज्यादा आसान, आपको हमें बताना है कि आवारापन टू की बात नहीं कर रही हूँ, आवारापन कौन से साल में रिलीज हुई थी। है ना, कितना आसान सवाल। देखा, मुझे ना हमेशा अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि मैं आसान आसान बातें करती हूँ, और जीवन में ना आसान करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब तुरंत हमें लिख भेजिए 9868107070। इस जादुई नंबर पर आपके पैगाम तुरंत पहुँचते हैं, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए कि आवारापन इस फिल्म को कब रिलीज़ किया गया था, या ये कह लीजिए कि आवारापन कब रिलीज़ हुई थी, आपने कौन से साल में देखी थी, फर्स्ट देखा था कि नहीं देखा था, बता दीजिए हमें, क्योंकि हमें आपके सच्चे वाले दोस्तों के साथ सच्ची सच्ची बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब सच्चे दोस्तों से मिला जाता है तो यही कहा जाता है कि हाँ तू है, बस तू ही है।

और समय मध्यम मध्यम धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रहा है। समय हो गया 11:30। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहानियाल, और बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सुन रहे हैं चटपटी मसालेदार खबरें जिन्हें आप सुनना चाहते हैं और जिन्हें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप फिल्मों से, सिनेमा से करते हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और एक फिल्म जिसका इंतज़ार सबको है वो इसलिए है क्योंकि जब कोई निर्देशक एक फिल्म लेकर आता है तो एक छाप छोड़ जाता है। अब वो छाप आपके दिलों में किस तरह से पड़े वो तो निर्भर करता है कि आपका दिल कैसा है। सारा कसूर तो दिल का ही होता है। अब राय बदल सकती है लेकिन एक छाप ज़रूर मन में रह जाती है कि इनके निर्देशन में तो ऐसी ही फिल्में बनती हैं। अब जिस निर्देशक का नाम मैं ले रही हूँ उनका नाम सुनने के बाद उनकी फिल्म आपके जबान पर खुद ब खुद आ जाएगी। मैं बात कर रही हूँ संदीप वेंगारेड्डी की। जी, हाल ही में यानी कि कुछ समय पहले इनकी फिल्म आई थी एनिमल। बहुत से लोगों ने बहुत सी प्रतिक्रियाएं दी लेकिन सिनेमा घरों में जिस तरह से आप उमड़े हैं घूमड़े हैं घूमड़े इसलिए कह दिया कि घूम घूम कर आप पहुंचे हैं, उससे ये सब साबित होता है कि भाई कुछ दिल में रहा होगा कि कैसी है ये फिल्म एनिमल। आपने सराहा भी, बहुत से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। खैर, ये तो व्यक्तिगत राय होती है जो फिल्म को देखने के बाद आप दर्शक अपने दिलों में रखते हैं, उसे अपने साथ लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पर ही आगे निर्धारित करते हैं कि इस निर्देशक की फिल्म या इस एक्टर की फिल्म आगे देखनी है कि नहीं देखनी है। अब हमारे जो साहब हैं यानी कि संदीप वेंगारेड्डी बहुत समय से काम कर रहे हैं एक फिल्म में, फिल्म के लिए, और वो फिल्म है स्पिरिट। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है इस फिल्म का। तृप्ति डिमरी और प्रभास इस फिल्म में नज़र आएंगे लेकिन हुआ ये है कि ये फिल्म जो मार्च 2027 में रिलीज़ होनी थी अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ये जून 2027 में रिलीज़ होगी। तो आप अब अपनी दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, बहुत सारा समय है आपके पास और अगर मन करे ना तो पुरानी फिल्म एक बार दोबारा देख लीजिए यानी कि एनिमल। हालांकि एनिमल और स्पिरिट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का प्लॉट, दोनों की स्टोरी लाइन, दोनों के एक्टर्स अलग अलग हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी निर्देशक हो, उनका अपना एक स्टाइल होता है और उस स्टाइल की वजह से वो जाना जाता है और उस स्टाइल की वजह से ही हम उसे फॉलो करते हैं, वो हमारा प्रिय हो जाता है या फिर हम ये कहते हैं कि नहीं अब और नहीं फिलहाल। ये नगमा आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में एनिमल फिल्म का ये पहुंच रहा है। गाना प्यारा है। जब भी अरिजीत के गानों की बात की जाती तो हर गाना अपने आप में ना मुकम्मल सा लगता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना दिल निकाल कर इस गाने के जरिए हमारे दिलों तक भेजा है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले मोहनलाल, इनकी फिल्में बाकमाल होती हैं, इनकी एक्टिंग काबिल तारीफ होती है और जब भी ये अभिनय करते हैं तो किसी भी किरदार को जीवंत कर देते हैं। जी, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है और 350 फिल्मों से अधिक में इन्होंने काम किया है। हम तो बोलेंगे इन्होंने 350 फिल्मों में खुद को जिया है। जैसा कि हमने कहा कि अपने किरदारों को हमेशा जीवंत करते हैं और जीवंत वही करता है जो उस किरदार की तह तक पहुंच जाता है। अब खुशखबरी ये है मोहनलाल जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए कि अपने मोहनलाल साहब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात फिल्मों में ये नजर आने वाले हैं। यानी कि इन्होंने अपनी 7 अपकमिंग फिल्म्स का एक साथ ऐलान कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए। अब देखिए, 7 फिल्मों में ये नज़र आने वाले हैं कुछ समय बाद। हालांकि प्रोडक्शन में बहुत समय लगता है, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि अच्छे कलाकार हैं और साथ ही साथ कितनी मेहनत करने वाले हैं कि आप इन्हें एक साथ इतनी सारी फिल्मों में देखेंगे। तो खुशखबरी ही खुशखबरी है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अपने दिन को जो है ना बहुत, बहुत

बहुत खूबसूरती के साथ जीते हैं, और जिस इंसान को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है उसका हर एक दिन ना केवल उसके लिए लेकिन उन सभी के लिए जो उसे मोहब्बत करते हैं बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि हर दिन हम अपने लिए जी रहे हैं और हर दिन हम कुछ ऐसा दे रहे हैं कि लोग हमें याद कर रहे हैं।

भाई दिन तो हमारा हर यानी कि हर दिन हमारा बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरती के साथ हम इसे जीते हैं। और जो लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अपने काम को पूछते हैं उनके लिए तो हर दिन बेहतरीन है, और वो लोग जो दूसरों को सराहते हैं पल पल में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी की तारीफ़ करना दुनिया का ना मुश्किल काम है, लेकिन अगर दिल से कोई बात की जाए तो दिल तक ज़रूर पहुँचती है। अब आवारा पन टू इस फिल्म की अगर बात की जाए

बहुत प्यार आप इस फिल्म को दे रहे हैं और इसी वजह से इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, तो 144 करोड़ रुपए ये फिल्म कमा चुकी है वर्ल्ड वाइड, और भारत में 100 करोड़ का क्लब यानी कि इसमें एंटर कर चुकी है फिल्म। अब क्या खास बात है इस फिल्म में भाई? भाई आवारापन की तरह आवारापन 2 भी सुपर डुपर हिट इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें इमरान हाशमी है। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ, मेरे हंसी पर मत जाइए आप, क्योंकि आप ही इस बात के सबूत हैं। अब जिस तरह के किरदार इमरान हाशमी प्ले करते हैं वो अपने आप में बहुत अलग होते हैं और इनकी अलग तरह की एक्टिंग ही इनको एकदम मुख्तलिफ बनाती है। इस फिल्म में इमरान हाशमी का किरदार और साथ ही साथ इस फिल्म के गाने बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जैसे कि आवारापन, जब आपने इस फिल्म को देखा और इसके नगमों को आप आज भी याद करते हैं, तो इस फिल्म की भी यही खास बात है कि इसके गाने बहुत प्यारे हैं। हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द है किसी को पाने का, दर्द है किसी को खोने का। ज़्यादा इस फिल्म के प्लॉट के बारे में जिक्र नहीं करूँगी, चाहती हूँ कि आप देखें अगर आप ऐसी फिल्में देखने के शौकीन हैं और इमरान हाशमी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो देखिए। तो दर्द ही दर्द है और कभी कभी दर्द भी ना मज़ा देता है। अब मज़ा बस उतना ही रखेगा कि वो आप को ज़्यादा परेशान ना करे, आपको टेंशन ना दे, पर जीवन के अलग अलग पहलुओं को जीना ज़रूरी है, इसलिए फिल्में भी हमें ऐसा ही आईना खाती हैं जहां वो हमें खुद से मिलवाती हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो ऐसी फिल्म देखकर चेहरे पर खुशी आ जाती है, जब दर्द भरी फिल्में देखते हैं तब भी दिल ये सोचने पर मजबूर होता है, जो हुआ सो हुआ, अब जिंदगी आगे जी ले हम। तो इमरान हाशमी की ये फिल्म आगे कितना धमाल मचाती है इस बात को सबूत अब आप देंगे जब आप पहुंचेंगे सिनेमाघर। फिलहाल आपसे यही दरख्वास्त है कि ना आप जिंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं ना उनसे खुद को रूबरू करवाते रहिए। हाँ, ज़्यादा परेशान होना जिंदगी का फलसफा नहीं है, जिंदगी ये कहती है कि मुझे बड़े प्यार से जियो, बस अपना हाले दिल ना एक दूसरे को सुनाते रहो, बताते रहो। फिलहाल आपके लिए बहुत ही प्यारा ट्रैक प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, मदर 2 से हर्षित सक्सेना की आवाज़ में गाना है, इमरान हाशमी की ही फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मुझे पसंद, वो आपके लिए नजराना।

0: और समय हो गया 11:52 में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में वो घड़ी आ गई जब हमें मिल जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज और हम करते हैं उनसे बात। तो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त है भुवनेश्वर नेतम छत्तीसगढ़ से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप भुवनेश्वर जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताइए कि आप हमारा शो सुन रहे हैं उसके साथ साथ कुछ काम भी कर रहे हैं?
1: जी जी, खेती बाड़ी अभी को गाय के लिए घास भी काट रहा था मैडम।
0: वाह क्या बात है, मतलब दिनचर्या चल रही है, काम चल रहे हैं रोजमर्रा के और साथ साथ एफएम रेनबो सुना जा रहा है।
1: जी जी
0: जी, बहुत बढ़िया। तो हमने आज सवाल पूछा कि आवारापन टू अबार रिलीज हुई है कुछ दिनों पहले, आवारापन ये जो फिल्म है ओरिजिनल, ये कब रिलीज हुई थी, कौन से साल में हुई थी?
1: ये 29 जून 2007 में रिलीज हुई थी।
0: वाह क्या बात है, तो आपने देखी है फिल्म ये?
1: जी याद नहीं है,
0: याद नहीं है पर देखी जरूर होगी बिल्कुल। और इसके गाने फिल्म के बहुत खूबसूरत हैं और ये जो दूसरी फिल्म आई है इसके गाने भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पिया घर आए। इस फिल्म की धुन, इस गाने की धुन जो है केवल 20 मिनट में बना दी गई और बाकी के जो पुराने गाने हैं उन गानों को भी एक नए अंदाज के साथ पेश किया गया है लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। तो USP है इस फिल्म के गाने आवारापन टू के। जी बहुत बहुत बधाई आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए और हम चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें, यूं ही बरसाते रहें और यूं ही आप हर बार हमारे शो में शिरकत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, इस वक्त मेरे साथ है रघुनाथ नेताम मैम, उत्तम नेताम।
0: हाँ हाँ, और आपके परिवार जन आपके साथ हैं?
1: जी जी जी,
0: सब
1: मेरे भाई प्रेमचंद नेताम साथ में रेडियो सुन रहा है।
0: वाह क्या बात है, सबको ढेरों शुभकामनाएं, बस आप यूं ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, रेनबो सुनते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे आज के बॉलीवुड सरताज छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वर नेतम और मोहब्बत बहुत सारे दोस्तों ने भेजी है सही जवाब भेजकर। सलीम मलिक मेरठ यूपी से गुड मॉर्निंग भेजा है किसी ने, नाम नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है अनवरुल खान रोतमा छत्तीसगढ़ से, हमारे पास ये संदेश है। डॉली का हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके प्यार के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से संदेश है। सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल 2007, इन्होंने सही जवाब लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे पास संदेश अगला आया 2007 सही

संदेश कान्हा मेरठ से संदेश है हमारे पास, भरत शर्मा का यमुनानगर से संदेश है, बहुत बहुत शुक्रिया दो संदेश भेजने के लिए। अच्छा जी, जयनंद त्यागी मोदीनगर 2007 सही जवाब है आपने भेजा। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मनोज कुमार का भवाना हरियाणा से, सही संदेश आपका आया है। एक मित्र ने और संदेश भेजा है, विवेक का है मुझे लगता है मेरठ से। संदेश हमें भेजने वालों में

हैं हमें जो प्यार भेज रहे हैं, हरीशगढ़ का, मेरठ से अरुण सेन का जिला मध्य प्रदेश से, विनीत कुमार का बदायूं उत्तर प्रदेश से, आप सभी को दिल से प्यार और मोहब्बत। धर्म भाटिया जी का संदेश आया है, सही जवाब आपने भेजा है। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से, कृष्ण कुमार मिश्र ने हमें संदेश भेजा है दिल्ली से, राजीव कुमार मेरठ से, निकिता पारेकर पुणे से, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, आप सभी दोस्त बहुत प्यार भेजते हैं। और दानिश का खतौली से, राजकुमार के संतानी का हमारे पास महाराष्ट्र संदेश आया है, प्रवीण चौहान का संदेश आया है, आप सभी दोस्तों ने सही सही जवाब भेजे हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचाया, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो बस दिल से हर दिन को मनाते रहिए। और हाँ, ये जो फिल्में हैं, जो गीत हैं, ये जो कलाकार हैं, ये कहीं ना कहीं हमें जीने का एक रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन में रंग भरते हैं। हमारा मूड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन बेहतरीन नगमे सुनने के बाद दिल ऐसा महसूस करता है कि आज बात बन गई। तो फिलहाल आपकी दोस्त गीतिका आपसे यहाँ पर इजाजत लेती है, होगी मुलाकात आपसे 1 बजे के बाद। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फोटोग्राफी में करियर बना सकते हैं। उमेश मेहता जी हमारे साथ होंगे। फोटोग्राफी का शौक तो हम सभी को बहुत ज़्यादा है ना, और अब जब से हमारे पास मोबाइल फोन्स आए हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे, क्या करें, चर्चा करेंगे रेनबो हेल्पलाइन में।

0: Well, that was Irish boy band Westlife with Seasons in the Sun. Seasons in the Sun, a much-loved track created in 1961. And it was actually inspired from a Belgian song called Le Moribond, which means the dying man. So the original lyrics written at that point of time were about a man who's about to pass away and he's bidding farewell to his loved ones. Now, the original lyrics were quite grim and sad and they weren't particularly appealing. But then what happened was this song saw renditions over many years, was covered by many singers and songwriters alike. Sometime in 1970s, Canadian singer Terry Jacks also came out with a cover of this song, but he altered the lyrics. He rewrote them completely, and the inspiration for the rewritten lyrics came from his close friend Roger, who's also suffering from a terminal illness at that point of time. And yet he decided not to make the lyrics sad. Instead, he made them happy, and he made them about reflecting on the rights and wrongs of the actions that we do in life. And in the rewritten lyrics, in the rewritten version, the man that is in question, he first addresses a close friend that he has known since childhood. He's reminiscing happy times, happy memories of playing together, studying together. And that is how Terry Jacks' version came about in 1973. But this track became even more popular in 1999 when Irish boy band Westlife covered it. And that happens to be one of the most popular versions till date, playing on radio stations alike. Ours happens to be one of them as well. So yes, that was that. And up next, we've got a short commercial break. And today's conversation happens to be around our humanitarian efforts to elevate humanity, to elevate the people around us, to elevate the environment around us, spreading good vibes in our own little ways, big or little ways, you know. So joys don't have to be big or small. They are just simply joys. So write away to us on 9868107070 and tell us what is it that you like doing to ensure that the people around you, the souls around you are happy. How is it that you like to help them and overcome any kind of suffering, personal or otherwise, in any way? Right away to us. And I'll see you on the other side of this commercial break. Stay tuned. You're with me, Niharika, on Play It Cool.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: मंगल भवन मंगल हारी रवहुं सुदर्शन।
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
8: हिमालय की गोद से लेकर
9: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
8: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
9: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
8: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
9: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
8: तो सुनना ना भूलें
9: रेनबो डेस्टिनेशंस
8: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: That was Ronan Keating with Time After Time from his fifth studio album, Songs for My Mother. And true to its name, the name is quite self-explanatory. So this album was comprised of all the music of all the songs that were favorites of his mother's. And then later, you know, those were renditions in his own voice. So popular tracks from across time and old tracks, lovely tracks. For example, this album even has Make You Feel My Love by Bob Dylan, performed by, of course, rendered by, of course, Ronan Keating for his album Songs for My Mother. And up next, a short break coming your way. Keep the messages coming in. Keep the conversation around being a good Samaritan going. You can write to us on 9868107070. And with that, the break followed by more music. Stay with us.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। यह स्कीम पहले सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 में कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। भारत हर वर्ष करीब 130 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं।

श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया। पंजाब में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने जालंधर में यशोदा AI पहल शुरू की है। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं को सूची जारी की। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया। कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ हर तरह के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित किया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। और खेलों में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रोस्टा तथा मकाऊ में लियोन इयोक चोंग और एनजी वेंग ची के बीच दूसरा दौर का मैच जारी। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेनबो हेल्प लाइन में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका कौनियाल, और आज के इस शुभ दिन पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज हम मना रहे हैं, और फोटोग्राफी आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि आज फोटो क्लिक करना क्षण भर है। कहीं भी आप क्यों ना हो, किसी भी जगह पर किसी भी विशेष व्यक्ति के साथ फोटो क्लिक कर आप अपने लिए यादें संजोते हैं, और उन यादों को फिर फोटोज के माध्यम से देखते हैं, निरखते हैं और याद करते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हमारे लिए अहम है, और आज के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो फोटोग्राफी हमारे जीवन का अहम अंग बन चुका है। बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री उमेश मेहता जी, जो एक फोटो आर्टिस्ट हैं, और आपको वो अवगत कराएंगे कि कैसे आप फोटोग्राफी में करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान श्री उमेश मेहता जी का। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में।
2: गीतिका जी, आपको बहुत धन्यवाद, और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, और इस तस्वीरों के दिन की बधाई। ये तस्वीरों का दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ हमसे आशा भी करता है। आपके सभी लिसनर को एक बार पुनः शुभकामनाएं और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत बधाई।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कहा, आज हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। अगर हम अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो एक जमाना हुआ करता था, इस जमाने में भी हम याद करते हैं कि काश उस वक्त हमारे पास ऐसे उपकरण होते, ऐसे कैमराज होते, तो हम फोटो ले लिया करते, क्योंकि एक कैमरा होता था एकमात्र, और जिसमें हम रोल डाला करते थे, और उसके माध्यम से हम फिर फोटोज को धुलवा कर, जो कहा जाता नेगेटिव्स को धुलवा कर, फिर फोटोओं के माध्यम से यादों को इकट्ठा किया करते थे। आज के जमाने में हम सोचते हैं काश हमारे पास उस वक्त ऐसे उपकरण हुआ करते, या ऐसे मोबाइल फोन हुआ करते, या ऐसे डिजिटाइज युग उस वक्त भी हुआ करता, तो ना जाने हम अतीत की कितनी सारी बातें अपने साथ अपने घरों में गुल्लकों में जमा करके रखते। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों की बात की जाए तो फोटोग्राफी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा कर पाए तो।
2: गीतिका जी, फोटोग्राफी का जो इतिहास है

0: पहले तो यह इन्वेंशन है और लगभग 187 वर्ष आज इसको हो गए हैं। इसकी घोषणा हुई थी पेरिस में 19 अगस्त 1839 को कि दिस विधा एज कम इन टू एग्जिस्टेंस, कि हम एक फोटोग्राफी में क्या करते हैं कि केमिकल के थ्रू एक इमेज बनाते हैं सेलुलाइट पर। अब तो चेंज हो गया, ये पुराना मैं बहुत सरल बता रहा हूँ। तो उस समय जो अनाउंसमेंट हुआ कि अब इस तरह से हम एक तस्वीर बना सकते हैं विदाउट स्केचिंग, विदाउट पेंटिंग, विदाउट ब्रशिंग, और एक तस्वीर बन सकती है। इट वॉज द बिगिनिंग एट दैट टाइम। सो टुडे इज द 187th इसको हो गए हैं, और तब से लेकर अब तक बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। और इसके पीछे बहुत लोग थे, लेकिन जो मेन नाम गए वो 3 लोगों के थे, निप्से, टॉलबर्ट और डेगोर। और फिर धीरे धीरे चलते चलते ये शने शने बड़ी हुई, और चलते चलते आज डिजिटल युग में ऐसी आई कि हर आदमी के पास स्मार्टफोन, हर आदमी फोटोग्राफर।
1: जी जी जी। आप अगर हम फोटोग्राफी के इतिहास के साथ साथ उसके विकास की बात, उसके उत्थान की बात करें, तो किस तरह से दशक भर दशक बदलता गया, स्वरूप बदलता गया फोटोग्राफी का?
0: देखिए, शुरू में बड़े भारी कैमरे होते थे, बहुत लंबा एक्सपोजर देना पड़ता था, बहुत केमिकल यूज़ करने पड़ते थे, लॉट ऑफ टेक्निक वाज देयर। समटाइम्स यू गेट सक्सेस, समटाइम यू डोंट गेट सक्सेस, डोंट गेट गुड प्रिंट्स, गुड नेगेटिव्स। तो इस सब चलते चलते धीरे धीरे होते होते वक्त बदला, आगे चीज़ें बढ़ी चली, और फिर लगभग 1990 के आसपास डिजिटाइजेशन तो वैसे 80-70 में हो गया था, लेकिन 90 के बाद में धीरे धीरे फोटोग्राफी में डिजिटाइजेशन होना शुरू हुआ, और फिर बढ़ते बढ़ते आज ये हालत ये है कि हर व्यक्ति फोटोग्राफर बन गया।
1: जी, हर व्यक्ति फोटोग्राफर बन गया, और ऐसा फोटोग्राफर बना है कि आज हम स्पेस की बात करते हैं कि हमारे मोबाइल फोन्स में स्पेस नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी फोटोज क्लिक कर दी हैं कि अब हमें स्पेस खरीदनी पड़ रही है।
0: मेमोरी कहती है जी, स्पेस इज ओवर।
1: जी बिल्कुल, मेमोरी इज ओवर। लेकिन अगर हम बात करें फोटोग्राफी की, तो कहीं ना कहीं रोजगार का साधन भी दिया है फोटोग्राफी ने, नए आयाम शुरू करे हैं फोटोग्राफी ने। कहते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में जो भी कुछ करता है उससे अपने लिए एक सुखद जीवन की अनुभूति करना चाहता है, अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढना चाहता है, और जैसे जैसे युग बदले हैं वैसे वैसे फोटोग्राफी ने भी व्यक्ति को रोजगार का साधन दिया है।
0: देखिए, रोजगार का साधन है ये, नो डाउट। और इस तरह का रोजगार का साधन है कि जिसमें आप अपने एंजॉय भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। फोटोग्राफी जब शुरू हुई और डिजिटाइजेशन से पहले तो स्थिति यह थी कि फोटोग्राफर मिलते नहीं थे।
1: जी,
0: शादी के लिए 2-2, 3-3 महीने पहले बुक कराना पड़ता कि साहब आपने आना है। फोटोग्राफर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आफ्टर द दूल्हा इन द फोटो। वो नहीं आया तो मुश्किल हो।
1: बिल्कुल।
0: तो उस तरह से करते करते ये बड़ा, और आज स्थिति ये है कि बहुत सारी विधा है इसमें, कैरियर में। मैं एक एक को धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि थोड़ा सा मैं चेंज आया फोटोग्राफी में कि इसका केमिस्ट्री पार्ट खत्म हो गया, और केमिस्ट्री पार्ट खत्म होने से थोड़ी सरलता में आ गए, और सरलता में आने पर ये हुआ कि हर एक व्यक्ति फोटोग्राफ ले सकता।
1: जी,
0: तो फोटोग्राफर की उतनी आवश्यकता अब कम हो गई है, लेकिन जो अच्छा काम चाहते हैं वो अभी भी चाहते हैं कि अच्छा फोटोग्राफर आए, हमारी अच्छी तस्वीरें बनाए, और जब हमारी अच्छी तस्वीरें बनेंगी तो हम दूसरों को दिखा भी सकेंगे।
1: जी जी, निश्चित रूप से आप अगर अच्छे फोटोग्राफर बनते हैं तो आपको तारीफ भी मिलती हैं, आप धन भी अर्जित करते हैं और नाम भी कमाते हैं। साथ
0: देखिए, अखबारों में नाम आता है, वो भी सब अखबारों में भरा पड़ा था किसी ना किसी, क्योंकि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। हम लोग जो फोटोग्राफर हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, सिंस मॉर्निंग शाम तक कोई ना कोई फंक्शन चलेगा, और इट गोज ऑन अबाउट 2-3 डेज। कहीं कॉम्पिटिशन है, कहीं कुछ और है, कहीं एग्जीबिशन है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स।
1: जी, तो होंगी बहुत सारी बातें उमेश जी के साथ, और अगर आपके मन में है कोई सवाल तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 इस जादुई नंबर पर, आपके प्रश्न भी पहुंचेंगे और आपके सवालों का हम जवाब भी देंगे आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए 2342 1080, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342 1085 पर। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को STD कोड लगाना होगा 011। तो हम कर रहे हैं आपके प्रश्नों का इंतजार, और आप हमें झटपट संदेश भेजकर या कॉल कर अपनी जिज्ञासा को कीजिए शांत। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोटो

0: वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फोटो आर्टिस्ट श्री उमेश मेहता जी, जो आज हमें बता रहे हैं कि कैसे फोटोग्राफी में आप करियर बनाकर अपने लिए एक सुखद जीवन अनुभव कर सकते हैं। जी, फोटोज कहीं ना कहीं हमारी यादों का खजाना है। फोटोज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम धन भी कमा सकते हैं और अपने लिए एक सफल करियर भी। उमेश जी, हम जब फोटोग्राफर्स की बात करते हैं, हम देखने वाले आम लोग ये सोचते हैं बस फोटो क्लिक की और फोटो हमारे सामने आ गई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टेक्निकलिटीज के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया है, एक प्रश्न आया है पैंथर तोमर का, किशनगंज दिल्ली से, और ये कहते हैं कि फोटोग्राफी में करियर शुरू करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या कोर्स क्या है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, और एक साधारण तस्वीर और एक कमर्शियल प्रोफेशनल तस्वीर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मैं करियर बनाना चाहती हूँ अपना फोटोग्राफी में, तो उसके लिए मुझे कोई कोर्स करना लाजमी सी बात है। जैसा कि हमने कहा कि टेक्निकलिटीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कैमरा उठा लिया उससे काम नहीं बनने वाला, आपको बहुत कुछ सीखना होगा। तो मैं कैसे सीखूं, कहां सीखूं, ये बताएं आप हमें।
1: गीतिका जी, जीवन की भी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ती है
0: जी,
1: सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तो फोटोग्राफी में भी ऐसे ही है। कुछ बेसिक नॉर्म्स अगर आपको आती हैं तो आप अपने तस्वीर को एक नए रूप में रंगते हैं, सतरंगी बना देते हैं। जैसे इन्होंने, तोमर जी ने पूछा कि एक प्रोफेशनल फोटो में और एक आम फोटो में क्या फर्क है। अगर आपको टेक्निकलिटीज आती हैं तो आप उस तस्वीर को सतरंगी बना देते हैं, और उस तस्वीर ऐसा संदेश देती है कि लोग उसे याद करते हैं
0: जी।
1: शैक्षणिक योग्यता इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम इतना हो कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि फोटोग्राफी कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स,

0: केमिस्ट्री तो अब खत्म हो गई
1: जी,
0: आर्ट अर्थमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें सबका ये अमालगामेशन है, मिला जुला समन्वय है। तो इसके लिए हमें ये चीजें कम से कम कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, तो मैं ये कहता हूँ कम से कम कक्षा 10 तक तो आपको या 12 तक आपको एजुकेशन होनी चाहिए टू मेक यू थिंग्स बेटर, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए बेटर वे। तो ये बहुत चाहिए। और इनका प्रश्न था कि फर्क क्या है कमर्शियल और उस फोटोग्राफ में। देखिए, तस्वीर तस्वीर है, कैसी भी बना लीजिए, अगर वो आपसे बात करती है तो वो तस्वीर आपकी है, बात करनी चाहिए। और इसी में अब जो आगे जो चीजें सीखने वाली हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट हट गया है फोटोग्राफी से, तो फिजिक्स पार्ट रह गया लाइटिंग एंड कंपोजिशन, तो बीच में हम उसको थोड़ा सा लाइटिंग और कंपोजिशन की बात करेंगे, जिससे कि हमारी तस्वीर सचमुच कहे कि आओ मुझसे बात करो।
1: वाह, क्या बात है। अब अगर हम बात करें कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो मैं कैसे, कहाँ अपने आप को एनरोल करूँ, जिससे कि मैं किसी कोर्स को कर उसके बाद कहूँ कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, अब मैं अपने हाथ आजमाती हूँ कैमरे पर।
0: देखिए, अब तो नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, अब तो हर चीज इंटरनेट पे है और हर भाषा में है, तो आप नेट पे जाके कर सकते हैं
1: जी,
0: उसमें आप देख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा कर सकते हैं, जैमिन से पूछ सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं कि मुझे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या 45 डिग्री की लाइटिंग पोर्ट्रेट में अच्छी लगेगी, क्या बैकलाइट अच्छी लगेगी, तो दे विल आंसर यू, और वेरी करेक्टली दे विल आंसर यू, आपसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन फिर भी अगर कोर्स करना है तो कुछ जगह कोर्स है, मास कम्युनिकेशन के जो सेंटर्स हैं सरकार के, उसमें कोर्स है, अप्लाइड आर्ट में जहाँ कोर्स है उसमें एक कोर्स फोटोग्राफी का है, जर्नलिज्म में जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ कोर्स है, तो हम आ जाके संपर्क कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे सीख सकते हैं। पूना में है पूरा बड़ा कोर्स है, लेकिन उतना भी नहीं जाना चाहते तो कम से कम बेसिक चीज़ें सीख लीजिएगा, और फिर देखिए आपकी तस्वीर है ना, लगेगी कि गुनगुनाती मुस्कुराती तस्वीर आपकी
1: जी। वैसे उमेश जी, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, वो लोग जो कहीं ना कहीं नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं कि शौक के लिए चलिए फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया जाए, तो शायद सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, स्वयं मुक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं फोटोग्राफी पर,
0: आप क्लिक कीजिए बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं, और चॉइस है कि देखिए, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सिखाते हैं, कुछ कलर सिखाते हैं, कुछ पोर्ट्रेट सिखाते हैं, कुछ जर्नलिज्म सिखाते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सिखाते हैं, तो देयर आर सो मेनी डिसिप्लिन इन द फोटोग्राफी, बट तस्वीर तो तस्वीर है, आपसे बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तभी हम कहते हैं फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अच्छा, एक अच्छे फोटोग्राफर में क्या गुण होने चाहिए, उस व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं वो एक कलाकार है जो अपने नजरिए से दुनिया को वो दिखा रहा है जिसे उसने महसूस किया है, तो क्या वो क्वालिटीज हैं जो शायद किसी स्कूल में ना सिखाई जाए, जो किसी कॉलेज में ना सिखाई जाए, लेकिन अगर उसमें है तो वो बेहतरीन फोटोग्राफर बनेगा।
0: देखिए, जीवन में सबसे बढ़िया बेहतरीन इंसान बनने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है, और फोटोग्राफी में भी ईमानदारी बहुत जरूरी है आपकी। अब सकारात्मक रहिए, नकारात्मक सोच हटा दीजिए, तो देखिए फोटोग्राफी का कैनवस बहुत बड़ा है, पेंटिंग का कैनवस हमारा लिमिटेड होता है, 2 फीट बाई 3 फीट का कैनवास है उसको बनाना है, फोटोग्राफी का कैनवस बहुत बड़ा है, वेरी वास्ट, वी हैव टू लुक एट द थिंग, वी हैव टू कैच द थिंग, कि मुझे इतने बड़े आसमान में से 2 तारे लेने हैं, तो ये आपका स्किल,
1: दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू जिसे हम कहते हैं, मैं क्या सोचता हूँ,
0: भीड़ में से मुझे उसी व्यक्ति की फोटो लेनी है, तो हाउ यू लुक एट द थिंग्स, कि मुझे वो ही लेना है, यहीं पर कला आती है। हम कहते हैं कि कैमरा तो बनाता तस्वीर है, लेकिन जो क्लिक करता है ना, आर्ट उसका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो देखता है कि मुझे व्यू फाइंडर में से क्या नजर आ रहा है और मुझे क्या क्लिक करना है,
1: जी जी,
0: अब वहीं पे उसकी कला है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बी ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव, और ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, कि माई पिक्चर शुड स्पीक समथिंग, व्हाट आई वांट टू से, द मैसेज मस्ट बी कन्वेड।
1: जी जी बिल्कुल, आपने एकदम वाजिब बात यहाँ पर की है कि एक फोटोग्राफर का व्यक्तित्व इस बात को निर्धारित करेगा कि कल वो फोटोग्राफ आम जनमानस की बात बन जाए, देखने पर आम आदमी ये कहे कि तो मेरी व्यथा है, तो मेरी

0: कहानी है, ये तो मेरी बात है।
1: फोटोग्राफ पूरा स्टोरी बता देता है आपको, इट्स मोर देन 1000 वर्ड्स
0: जी
1: स्टोरी का, जो फोटोग्राफ तुरंत बता देता है कि व्हाट यू वांट टू से।
0: बिल्कुल, एक संदेश हम तक और पहुंचा है और ये कहते हैं नमस्कार जी, आशु बोल रहे हैं, अश्वनी चुग गोविंद चुग पंचकुला से। कहते हैं कि जब हम छोटे थे हम आगरा में ताजमहल देखने जाते थे और वहाँ एक जगह है हाथ को ताजमहल के ऊपर रखो तो ऐसी फोटो आती थी जैसे हमने ताजमहल की चोटी को पकड़ा हुआ है। ये बात है कोई 1990 की, तब कोई AI नहीं था। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि वहाँ AI नहीं था लेकिन व्यक्ति की तीक्ष्ण बुद्धि जरूर थी।
1: यही तो चीज है ना कि आप किस तरह से चीज को बनाते हैं। तस्वीरें तब भी बनती थी, तब कोई फोटोशॉप नहीं था और ऐसी तस्वीरें बनी है कि यादगार बनी है
0: जी,
1: और वो बहुमूल्य है, अनमोल है। तो चुग साहब ये तो आप अच्छा करके ताजमहल गए और आपने तस्वीरें बनाई।
0: बिल्कुल। एक सवाल और आया है, पैंथर तोमर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोटोग्राफी के करियर पर क्या असर पड़ने वाला है?
1: देखिए नई विधा है, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रकृति में बदलाव होता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। हम नकारात्मक पहलू को थोड़ी देर भूल जाएं, सकारात्मक तो रखते हैं, तो धीरे धीरे है ना ये बहुत करेगा। जैसे अभी एक फोटो ही हम अपने मोबाइल में क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें शार्पनेस या कुछ कमी है, AI मोड है वहाँ पे, हम कहते हैं AI यू डू इट, वो सारा कुछ करेक्ट कर देता है विद इन 10-15 सेकेंड्स के अंदर और यू गेट ए गुड फोटोग्राफ। तो देखिए AI ने काम तो किया
0: जी, और कहीं ना कहीं AI हमारा समय बचाता है।
1: बचाता है, 10 सेकंड में काम हो गया, उसके लिए आप कितनी भी ज्यादा फोटोशॉप में जाती है, कितना और कुछ करते हैं, कितना एडिटिंग करते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट देयर इन 10 सेकंड्स में यू गेट द फोटोग्राफ
0: जी जी,
1: एंड आपको द मार्क।
0: और मुझे उमेश जी एक फायदा और भी लगता है, हम अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं, फोटोज क्लिक कर लाते हैं, पर बाद में हमें अनुभूति हो गई कुछ रह गया है हमारे पास, अब उस लोकेशन पर दोबारा जाना नामुमकिन सा है, तो शायद AI की मदद से हम फोटो करेक्शन जरूर कर सकते हैं।
1: AI तो हर चीज में, इवन मेडिकल साइंस में AI इज देयर
0: जी,
1: तो ये तो नई विधा है, लेकिन जब इसका नकारात्मक प्रयोग होता है ना तब दिल दुखता है
0: जी। और एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पर, शायद इस बात से आप भी वाकिफ हो, AI हमें सहूलियत दे रहा है निसंदेह, लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल।
1: देखिए ओरिजिनल तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है
0: जी। एक संदेश हमारे पास और भी आया है और ये कह रहे हैं कि 1999 में मैं कोटे कंपनी में काम करता था और इन्होंने एक कैमरा खरीदा और उस कैमरे से इन्होंने बहुत सारी फोटो खींचे जो इनके पास आज तक हैं, उसी कैमरे से इन्होंने अपने बच्चों की फोटो भी खींची हैं और वो कैमरा भी इनके पास है। ये पूछना चाहते हैं उस कैमरे से अब मैं क्या करूँ, उसको कैसे प्रयोग में लाऊँ, और सवाल ये भी है कि मेरा बेटा 14 साल का है और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, कि क्या मैं उसे किसी फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफी सिखाने के लिए भेज सकता हूं, क्योंकि उसको फोटोग्राफी का शौक है, इसके लिए मैं क्या करूं, मार्गदर्शन चाहते हैं। शिव का हमारे पास मैसेज है ये मेरठ से।
1: शिव जी आपको नमस्कार, और आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि आप कोडक में थे और आपने वो तस्वीरें बनाई। देखिए यादें हैं, तस्वीर यादें तो हैं, हम वक्त को पकड़ लेते हैं फोटोग्राफ के, वक्त तो रुकता नहीं है, वक्त तो दौड़ता भागता रहता है, ना इस कम वक्त को कोई बुखार होता ना कोविड होता, लेकिन उसे पकड़ लेते हैं तस्वीर से। अब आपने 90 में तस्वीर खरीदी तो आपने उसे पकड़ लिया, अब 90 से आप बात करते हैं, व्हेन यू सी ए फोटोग्राफ तो यू स्टार्ट टॉकिंग टू 90s
0: जी।
1: तो अब वो विधा तो खत्म हो गई, अब वो फिल्म भी नहीं मिलती, बड़ी महंगी मिलती हैं, तो उसको तो छोड़ देते हैं, उस कैमरे को तो आप इमोशनल अटैचमेंट के साथ रखिए। और बाकी ये है कि आपके जो बच्चे की बात है, अभी कम से कम उसे है ना 10वीं कक्षा करने दीजिए, और थोड़ा थोड़ा उसको मोबाइल से वो जो तस्वीर जब शौक है तो बनाइए, और उसमें एक चीज़ कोशिश कीजिए, उसको ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड लाइटिंग एंड कंपोजिशन। बच्चा ये छोटा होता है तो लगातार 4-5 भाषा सीख सकता है
0: जी,
1: थोड़ा बड़ा होता है तो और कुछ चीज़ें सीख सकता है, तो लाइटिंग एंड कंपोजिशन उसको थोड़ा थोड़ा सिखाइए कि कैसे लाइट आनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में क्या है, तस्वीर रोशनी से तो बनती है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब नई विधा में बहुत कम रोशनी से बन जाती है, पुरानी विधा में रोशनी ज्यादा चाहिए
0: जी।
1: तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइट एंड कंपोजिशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आपको थोड़ा है

0: तो आप उन्हें सिम खाइए, नहीं तो नेट से समझ लीजिए और कीजिए
1: जी,
0: बस उसके बाद उसे फोटोग्राफी में, और अभी स्टूडियो वगैरह में इतने छोटे बच्चे को आई डोंट थिंक इट्स
1: जी। और फोटोग्राफी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का,
0: साइंस का मैं तो पहले कह रहा हूँ,
1: कॉम्बिनेशन
0: ऑफ आर्ट एंड साइंस है। साइंस में भी अब फिजिक्स रह गई या केमिस्ट्री हट
1: गई जी जी। और बच्चा जितना दुनिया को देखेगा उसके बाद लेंस से फोटो उतारना उसके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा,
0: ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आजकल इंटेलिजेंट है। मैं बहुत सी चीज़ें मोबाइल पे नहीं कर पाता, लेकिन बच्चे बता देते हैं तुरंत
1: जी। बहुत सी बातें हैं उमेश जी से पूछने के लिए, और आपके मन में भी अगर जिज्ञासा है, आप फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9868107070 इस जादुई नंबर पर। आपके पैगाम तुरंत हम तक पहुँचते हैं और पहुँच भी रहे हैं। आप हमें कॉल कर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे नंबर है 2342108 या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 2342108 5। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 011।

0: समय हो गया 1:33। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीति कौनियाल और आज हम विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप फोटोग्राफी में करियर ढूंढ सकते हैं, करियर बना सकते हैं। और करियर बनाने के लिए मेहनत बहुत करनी होती है। सबसे पहले तो जीवन में निर्णय लेने होते हैं, हमें क्यों चाहिए, हम क्यों फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, हम किस एंगल से दुनिया को देखते हैं सबसे पहले। और अगर हम एक अलग नज़रिए के साथ दुनिया को देखते हैं तो निश्चित रूप से शायद हम एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। क्यों उमेश जी, मैंने सही कहा?
1: देखिए, नज़रिया ही तो देखने का है, चाहे जिंदगी हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूब। और जब आपका नज़रिया कुछ अलग है, भिन्न है, तो निश्चित रूप से आपकी फोटोग्राफ में वो झलकेगा।
1: नज़रिया है, अब सुबह की रोशनी को देख के कोई खुश हो जाता है, कोई खुश नहीं होता
0: जी।
1: गुलाब के फूल को देख के कोई उसको छूना चाहता है, कोई पैरों से रौंद के भी चला जाता है, तो ये ठीक है। लेकिन जो फोटोग्राफर कोमल हृदय होता है, वो चाहता है कि मैं इसकी तस्वीर बना के अपने पास रख लूँ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अगर अब बात की जाए करियर की, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जो भी ज्ञान अर्जित करूं उससे मुझे रोजगार के साधन प्राप्त हों, और कहीं ना कहीं फोटोग्राफी बदलते युग में एक अच्छा साधन बना है रोजगार का, धन अर्जित करने के लिए।
1: देखिए, करियर का बहुत ही लुक्रेटिव है इसके अंदर फोटोग्राफी में, क्योंकि फोटोग्राफी में डिसिप्लिन बहुत है। आप वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अब तो बहुत जगह मोबाइल से ही है, आपका स्मार्टफोन है, बच्चों के बर्थडे की फोटोग्राफ कर सकते हैं, आप चाहे तो फोटो जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप मोबाइल ले जाइए, सड़क पे कूड़ा पड़ा है, आप उसकी बना के अखबार में भेज दीजिए, अखबार वाले आपको उसका 500 रुपए भी देंगे और आपका काम भी। देखिए, छोटी सी चीज है, जैसे सॉफ्टवेयर फोटो जर्नलिज्म, कहीं भीड़ लगी है, बहुत सारी तस्वीर बना के भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, तो यू गेट सम मनी आल्सो। लेकिन जब इसमें थोड़ा एडवांस जाते हैं तो देर आर सो मैनी डिसिप्लिन, मेडिकल साइंस में फोटोग्राफी, इंजीनियरिंग में फोटोग्राफी, अर्थ स्पेस में फोटोग्राफी है, एवरीवेयर। विदाउट फोटोग्राफी तो जीवन नहीं है, एवरी मोमेंट पे देर आर फोटोग्राफ्स
0: जी,
1: जीवन नहीं है। और उसमें से आप यदि कोशिश करते हैं तो धन अच्छा खासा अर्जित कर सकते हैं और एंजॉय भी करें, अपना पैशन भी रखें, अपना जुनून भी रखें और अपने आय का साधन भी बनाए
0: जी।
1: तो बहुत सारे इसमें आर्किटेक्चर फोटोग्राफी है, अब जैसे ट्रेवल है, अब ट्रेवल में जाइए, करते जाइए, वाइल्ड लाइफ है, जंगल में जाइए, आप फोटो लिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप किसी पर्टिकुलर विधा में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे जंगल में जाते हैं, रोशनी कम होती है
0: जी,
1: तो आपको चाहिए कोई लेंस ऐसे कि जो रोशनी को कंट्रोल कर सके, जबकि आप बहुत अच्छे कैमरे आ गए हैं। ट्रेवल में जाते हैं तो आपको चाहिए कि दूर की तस्वीर बनानी है तो आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए, फोटो जर्नलिज्म में चाहिए तो आपको एक है ना ब्लॉक लेंस, मतलब बड़ा चीज

0: जिससे कि स्पेस मतलब ज़्यादा हमारा कवर कर जाए, वाइड एंगल लेंस चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सी बेसिक आप है ना, अब ये बेसिक आप नेट से सीख सकते हैं, किसी फ्रेंड से सीख सकते हैं, और यदि आपने कोई कोर्स किया है तो उससे सीख सकते हैं
1: जी।
0: बट यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड।
1: जी बहुत ही खूब बात आपने यहाँ पे की। और जब आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात की तो वो तमाम चैनल्स जिन्हें हम देखते हैं टेलीविज़न पर या फिर हम अखबारों में मैगजीन्स में देखते हैं, तो एक बात बहुत याद आती है कि एक फोटोग्राफर, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बिल्कुल एक सैनिक की तरह होता है। जिस तरह एक सैनिक की गन जो है एक ही जगह पर मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है, वैसे ही फोटोग्राफर और उसकी प्रेजेंस अपने ऑब्जेक्ट पर तैनात रहती है।
0: वाइल्ड लाइफ में कई बार हम लोग भी जब करते थे तो तालाब में दो दो घंटे बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, दो फुट पानी के अंदर है कि अब क्रोकोडाइल आएगा या शेर मतलब लॉयन आएगा, तो उसमें करने के लिए तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल आपने सत्य बात की यहाँ पर कि वहाँ पे आपकी डेडिकेशन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। और सबसे अच्छी बात उमेश जी ये लगती है कि आज अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात की जाए या वो फोटोग्राफी जहाँ पर बहुत सारा बल चाहिए और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत सारा चाहिए, वहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों हैं।
0: अरे महिलाएं तो बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं फोटोग्राफी में। अब देखिए जितने भी वेडिंग शूट होते हैं उसमें अगर तीन पुरुष हैं तो कम से कम तीन महिलाएं जरूर हैं।
1: जी
0: और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं तो इसमें।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये तो वुमेन एम्पावरमेंट है ना।
1: बिल्कुल, जैसे कि हमने बात की और हम हमेशा कहते हैं कि डिजिटाइजेशन ने बहुत कुछ बदला है, क्या फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी डिजिटाइजेशन एक नए आयाम लेकर आया है?
0: दुनिया बदल दी, 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री बदल दी। जो बहुत बड़ा तामझाम होता था डार्क रूम का खत्म कर दिया।
1: जी
0: स्टॉकिंग की प्रॉब्लम बहुत होती थी, हम लोगों को 6 डिग्री के ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती थी। अभी भी कुछ जगह जो पुरानी है 6 डिग्री के ऊपर सारे पुराने फोटो प्रिजर्व करने पड़ते थे, अब वो सब खत्म हो गया। अब एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाइए और आप ना 10,000-20,000 अपनी तस्वीरें रख लीजिए।
1: जी
0: तो ये सुविधा बहुत हो गई है, और इस सुविधा के कारण ये हुआ है कि लोगों को थोड़ा सा है ना सरल भी लगने लगा है फोटोग्राफी।
1: जी
0: पहले कठिन था, प्रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल थी, सबको रखिए फंगस नहीं आ जाए, मॉइस्चर नहीं आ जाए। जैसे बरसात के दिन है तो हम ना बल्ब जला के रखते थे कि मॉइस्चर बिल्कुल कैमरे में मॉइस्चर नहीं आ जाए।
1: जी
0: अब वो चीज़ें
1: कहीं ना कहीं
0: बहुत बदल गई हैं और बेटर हो गई हैं काफ़ी।
1: जी
0: तो उतनी अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अब बिल्कुल हार्ड डिस्क करप्ट नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और अब तो आपके पास ये भी सुविधा है कि आप स्पेस को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी स्पेस है, आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, अपना फोन यूज कर रहे हैं,
0: स्पेस को बाय कर
1: लीजिए। गूगल ड्राइव में जाकर आप अपने लिए स्पेस खरीद सकते हैं।
0: कॉस्टली भी नहीं है, मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है, इजीली आपको वही हो जाता है और आप उसको कीजिए।
1: जी
0: और भी की चीज है।
1: जी वो लोग जो फोटोग्राफी को अपना करियर बना रहे हैं और इमेजेस को स्टॉक करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं उमेश जी, सो दे आर मेकिंग गुड अमाउंट।
0: एक समय तो ये स्टॉक मेन काम भी था, स्टॉक जो एजेंसीज थी क्योंकि तस्वीरें उन्हीं से मिलती थी। स्टॉक भाई तस्वीर अचानक चाहिए जरूरत, तो स्टॉक एजेंसी को फोन किया, वहां से मिल गई। तो ये बहुत अच्छा वो था उनका फील्ड जो स्टॉक एजेंसी थी। अभी भी लोग करते हैं, अब नेट पे डालते हैं तो वो कहते हैं दिस इज लो रेजोल्यूशन, अगर आपको प्रिंट के लिए चाहिए अपने काम के लिए चाहिए तो गुड रेजोल्यूशन यू पे 200 रुपीस
1: जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं साइज के,
0: तो आप ये दे दीजिए और हम आपको इमेज भेज देते हैं। हाँ। आप हमारी बाइलाइन देना चाहें तो उसमें सम कॉपीराइट और सब अदर थिंग्स आते हैं,
1: पूरा प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस हैं इसके,
0: तो उसमें आप दे दीजिए बाइलाइन दे दीजिए, कहाँ से लिया क्या दिया, क्रेडिट दे दीजिए और यूज इट।
1: मैं जो भी हूँ, मुझे जिस भी काम के लिए फोटोग्राफ चाहिए तो मैं स्टॉक इमेजेस से इमेजेस को खरीद सकती हूँ, उससे मेरा समय बचता है, मैन पावर कम इस्तेमाल होती है।
0: इसके बहुत से बनानी है, कुछ हमें बनाना है, स्पेस के फोटोज चाहिए तो आप ले सकते हैं।
1: हमने देखा है कई बार बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें स्टिल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है
0: और वो कटसी भी देते हैं।
1: जी
0: कुछ तो उसमें रॉयल्टी नहीं होती है, यू कैन यूज दैट विदाउट परमिशन, बट मोस्ट ऑफ देम आर विद परमिशन, तो थोड़ा सा वॉरल्टी मांगते हैं तो यू पे एंड बाय इट एंड यूज इट।
1: जी जहां आप पे कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी की इमेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट जरूर करें, ये शायद एक एथिक्स हम कहेंगे कि है अगर हम माने तो।
0: देखिए जिंदगी में एथिक्स नहीं तो कुछ नहीं है, तो तस्वीर बनाने

0: में भी एथिक्स बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और जब तो वैसी विधा है कि इसमें जरा भी एथिक्स बिगड़ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए
1: जी। एक बात और कहना चाहूंगी मैं उमेश जी, यहाँ पर जिंदगी ना आसान सी लगने लगी है जब तक हमारे पास, जब से हमारे पास ना ई कॉमर्स ई बिजनेस की साइट है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और सिर्फ फोटोग्राफ्स देखने भर से मैं अपने लिए सामान खरीद लेती हूँ और बुला लेती हूँ।
0: देखिए कितना आसान हो गया, आपको कुछ भी खरीदना है आप देखिए उसमें जाइए, तस्वीर देखिए, नीचे स्पेसिफिकेशन है, क्लिक कीजिए यस आई वांट टू बाय और ऑर्डर कर दीजिए, मेक द पेमेंट एंड इट रीचेस यू।
1: तो फोटोग्राफर्स का रोल वहां कितना जरूरी हो जाता है जब हम ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म्स की बात करें।
0: मतलब पूरा डिपार्टमेंट है, 10-10 लोग लगे हुए हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स आर देयर और उनको डेली अपलोड करना है तो वो अपलोड करते रहते हैं और अपलोड करने के साथ साथ फिर उनको उसको बाहर मिलते हैं
1: जी। एक संदेश हमारे पास आया है, पैंथर तोमर ने ही दोबारा से हमें संदेश भेजा है और उन्होंने लिखा है कि एक आम इंसान को इस तरह का फोटोग्राफर बनने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि करोड़ों में बिकने वाली तस्वीरों में ऐसा क्या खास होता है। अब कुछ खास है इसका मतलब कि वो फोटोग्राफर बहुत खास है, तो इस तरह का फोटोग्राफर बनने में कितना समय लगता है ये जानना चाहते हैं।
0: तोमर जी पूरा जिंदगी लग जाती है कई बार एक अच्छी तस्वीर के लिए, अच्छी पेंटिंग के लिए पूरा वक्त लग जाता है
1: और मास्टरपीस तो शायद मुझे लगता है वो बहुत समय मांगता है।
0: मोनालिसा जिसने बनाई एक ही बनाई, कोई दूसरा बनाया
1: जी जी,
0: तो समय लगता है लेकिन आप बढ़ते रहिए, धीरे धीरे कीजिए, तस्वीर खुद बताएगी कि आपने अच्छा काम किया है
1: जी। एक संदेश हमारे पास और आया है लूणा राम नागौर राजस्थान से, कहते हैं कि मैम फोटोग्राफर को बेहतरीन बनाने के लिए, फोटोग्राफी को बेहतरीन बनाने के लिए पोज एंगल डिसिप्लिन डिस्टेंस ये सब तो ज़रूरी है, पर ऐसा क्या किया जाए कि इसमें यूनिकनेस हो, नयापन हो जो सबको आकर्षित करे।
0: जब आप क्लिक करें ना तस्वीर तो सोचिए कि एक बहुत ईमानदारी से मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी खूबसूरत तस्वीर को, नेगेटिविटी मत लाइए और देखिए कि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, जो आपकी कला क्षमता है ना, वो गलत चीज को क्लिक करेगी नहीं है। और वो कला क्षमता जो आपका कला पक्ष है वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लेगा और अंडरस्टैंड लाइटिंग एंड कंपोजिशन, ये एनहांसेस योर फोटोग्राफ
1: जी। तो अगर आप एक बेहतरीन इंसान हैं, कला प्रेमी हैं, तो आपकी फोटोग्राफी में अपने आप नजर आएगी। और कहते हैं ना उस यूनिकनेस को ढूंढने के लिए आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर काम करते हैं, आप रोज मेहनत करते हैं, रोज काम करते हैं, हजारों पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फिर खुद का आंकलन करते हैं।
0: देखिए अब तो मोबाइल में आई थिंक के कम से कम 50-60 एवरेज एक पर्सन कर लेता है 30-40 तस्वीर है
1: जी।
0: और उसमें कम से एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि तस्वीर क्लिक करने के बाद कम से कम एक बार बात उससे जरूर कीजिए। कई बार हम उससे क्या क्लिक करके भूल जाते हैं
1: जी,
0: आपको पता लगेगा कि आपकी कमी क्या है और संभव हो तो उस कुछ अच्छी तस्वीरों के प्रिंट बना के अपने घर में लगाइए, आते जाते से उनसे थोड़ा सा शरारत कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए कि भाई आज तुम तस्वीर मुस्कुरा के हो रही हो
1: बिल्कुल, और दुनिया को अपना काम दिखाइए क्योंकि आजकल डिजिटल युग है और चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कीजिए, कितनी एग्जीबिशन आयोजित की जाती है।
0: हर अब नेट पे जाइए, इतना वो एग्जीबिशंस का उसमें ऑफर होते हैं कि आप अपनी तस्वीरें भेजिए, आप अपने इमेजेस भेजिए और कुछ तो ऐसे हैं कि वो पैसा भी देते हैं
1: जी, मान सम्मान पैसा सब कुछ प्राप्त करते हैं
0: और फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप यू गेट ए सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दिस
1: जी। एक संदेश हमारे पास और आया है मारिया जोसेफ का, मडगांव गोवा से हमें संदेश भेज रही हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छा कैमरा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा कैमरा चाहिए, चाहे वो अपने निजी अपने पर्सनल यूज के लिए हो या प्रोफेशनल यूज के लिए हो। प्रोफेशनल की तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सीखते हैं तो कैमरा का नॉलेज हमें होने लगता है, लेकिन जब अपने लिए खुद के लिए अपने परिवार के लिए या अपने शौक के लिए करते हैं तो उस कैमरे का चयन किस प्रकार किया जाए।
0: देखिए अब तो मोबाइल से बहुत काम हो जाता है लेकिन फिर भी यदि आप कैमरा लेना चाहते हैं तो एक कैमरा ले लीजिए अच्छा, उसका 20 मेगापिक्सल से थोड़ा ऊपर हो जिससे कि उसमें रेजोल्यूशन अच्छा रहे
1: जी।
0: और कैमरा सभी एक से हैं, अगर आप तस्वीर बना के पूछते हैं कि जैसे किस कैमरे से खींची गई, किस कैमरे से क्लिक की गई, तो कोई बता नहीं सकता क्योंकि सब एक सी चीज़ें हैं। लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें लेंस देख लीजिए कि कि आपको किस लेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या है, लेकिन मेगापिक्सल उसका कम से कम 20 देखिए, जिससे कि आप अब बहुत बड़ी तस्वीरें तो नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी उस एवरेज में आप कम से कम 20-30 की तस्वीर अच्छी अब आराम से बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी तस्वीर है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: जी बहुत खूब। और हम जानते हैं कि आपके मन में जिज्ञासाएं अभी भी बहुत सारी हैं, तो अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ शांत कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपनी जिज्ञासाओं से अपने लिए एक नए आयाम जरूर ढूंढेंगे। और अगर फोटोग्राफी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं स्वयं के लिए या फिर प्रोफेशनली, आप अपने आप को एक फोटोग्राफर कहना चाहते हैं, तो आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से ना बहुत सारी समस्याओं के हल मिल जाते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: घर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
5: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
4: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
7: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
8: दादी दादी, मैं की जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
9: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जहां आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोटो आर्टिस्ट उमेश मेहता जी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं और बहुत से पहलुओं पर हमने बात की, कैमरे पर बात की और कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से आप फोटोग्राफी को आप अपने लिए करियर के रूप में और साथ ही साथ अपनी ख्याति के लिए भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बात यह है उमेश जी कि कैमरे के अलावा और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं?
10: देखिए, अब बहुत से काम तो कर देता है फोटोशॉप AI, लेकिन फिर भी दो चीज मैं जरूर कहूंगा कि वी मस्ट टॉक अबाउट द कंपोजिशन एंड लाइटिंग। लाइटिंग, आप जब भी तस्वीर बनाएं तो आप ये ध्यान रखिए, चाहे मोबाइल से बना रहे, स्मार्टफोन से और कैमरे से, कि वो आपके लेंस पे नहीं आए डायरेक्ट। लाइट शुड बी ऑन द सब्जेक्ट ओनली। अब तो बहुत अच्छे आ गए हैं, बहुत लो लाइट में भी तस्वीर बन जाती है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि अगर लाइट सीधी आपके कैमरे पे आएगी, कैमरे के लेंस पे आएगी, तो तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी, ब्लर हो जाएगी। तो लाइट शुड बी ऑन द सब्जेक्ट। एंड कंपोजिशन मीन्स के कंपोजिशन में के आपको जो फ्रेम है, उस फ्रेम में आपका सब्जेक्ट मैटर कितना है। कम से कम आपका सब्जेक्ट मैटर 50-60% होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए कि एक आपका फोटोग्राफ 4x6 का है या 5x7 का है, तो उसमें एक आप तस्वीर बनाते हैं तो बहुत छोटी सी, अगर 3 इंच की आती है तो वो कोई आपको संदेश नहीं दे पाएगी। तो इट शुड बी अबाउट आई थिंक 4x, 5x, 7x में हो तो अच्छी लगेगी, वो भर के आएगी। तो कंपोजिशन एंड लाइटिंग का जो छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि लाइट लेंस पे नहीं आए और आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो तस्वीर में इतना हो कि वो आपको कह सके कि हाँ मैं हूँ। तो ये बात होनी चाहिए।
9: हाँ, और तभी आपकी फोटोग्राफ बोलती हुई फोटोग्राफ दिखाई देगी,
10: नहीं तो बिल्कुल डल हो जाएगी
9: जी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हालांकि हमारे पास समय कम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को, इस प्रश्न को पूछना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में हम सब फोटोग्राफर्स हैं, हम सभी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, चाहे हम प्रोफेशनल हैं चाहे हम प्रोफेशनल नहीं, आप अपने घर परिवार के लिए, अपनी यादों के लिए करते हैं। फोटोग्राफी की अगर एथिक्स की बात की जाए, कोई भी फोटोग्राफर चाहे वो प्रोफेशनल है या नहीं है, उसको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
10: देखिए, तस्वीर बनाइए, जब भी आप कोई पब्लिक में तस्वीर या वैसे बनाते हैं तो विद परमिशन बनाइए, थोड़ा एथिक्स रखिए और कोशिश कीजिए कि तस्वीर का कहीं भी कोई मिसयूज ना हो, क्योंकि अब तस्वीरें बहुत ज़्यादा बननी है, सबके पास कैमरा है, रास्ते चलते ये बना लेते हैं, पता ही नहीं लगती है
9: जी।
10: पहले तो कैमरा गले में होता था बड़ा, हाँ, तो पता लग जाता था। और थोड़ी सी प्राइवेसी का ध्यान रखिए, दूसरे की, अपने के साथ साथ दूसरे की, तो उससे ये रहेगा कि आप भी मुस्कुराएंगे और अगले को भी मुस्कुराहट मिले
9: जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी फोटो क्लिक हो गई है। कितनी बार हम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चों के हाथ में कैमराज होते हैं, जो सजग लोग हैं वो कैमरे के प्लेसमेंट से, यानी कि फोन के प्लेसमेंट से समझ जाते हैं कि शायद उन्हें क्लिक किया जा रहा है। और अगर आप किसी को फोटो क्लिक करते हुए देखें और आप नहीं चाहते हैं, तो शायद ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोकें।
10: हाँ, तो वीडियो बन जाती है बहुत आसानी से, तो थोड़ा सा अगर रखें तो अच्छा रहेगा। और जी,

0: एथिक्स रहेगी
1: जी। अब उन लोगों के लिए जिनके पास मुझे याद है वो पुरानी एल्बम्स, काले रंग का पेज, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, आज के युग में भी बहुत लोगों के पास वो फोटोज होंगे, उनका संरक्षण कैसे करें, क्योंकि वो यादें हमारी धरोहर है, हमारे अपनों की, जो शायद इस वक्त हमारे साथ, हमारी जिंदगी में मौजूद भी नहीं है, लेकिन फोटोज के माध्यम से है हमारे साथ।
0: उनको रखिए, संभाल के रखिए, कोशिश कीजिए कि उनको डिजिटाइज कर लीजिए
1: और मॉइस्चर से

0: स्टूडियो में आने के लिए और हमारे आज के इस दिन को यानी कि विश्व फोटोग्राफी डे को सार्थक बनाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे वो करियर बनाए ना बनाए फोटोग्राफी में, लेकिन फोटोग्राफी कर वो ये साबित कर देंगे कि वो अपनी यादों को संजो कर रखना चाहते हैं।
1: तस्वीर यादें हैं और उन्हें आप सभी को इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुभकामनाएं, बधाई।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं तक इतनी सारी मीठी बातें बताने के लिए और हमें याद देने के लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में शामिल होने के लिए सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 में कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। भारत हर वर्ष करीब 130 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण

0: रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। पंजाब में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने जालंधर में यशोदा AI पहल शुरू की है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने नव नियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा को आज दिल्ली के एम्स से छुट्टी दे दी गई है। श्री नड्डा की सोमवार को एंजियोप्लास्टी की गई थी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मैदानी इलाकों में पानी भर रहा है। और खेलों में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हम कदम प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं स्वाति आप सभी के साथ। कुछ खूबसूरत से नगमे, कुछ प्यारी सी बातें और यही होता है हमारे इस प्रोग्राम में जिसे आप सुनते हैं बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज के प्रोग्राम की शुरुआत शान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में मैं हूँ स्वाति, आप सभी के साथ। और कुछ कम रोशन है ज़िंदगी, कुछ कम गीली है बारिशें। ऐसा लगने लगता है ना कभी कभी कि चीज़ों में जो मज़ा था या जो एक बात थी वो कुछ कम सी होती जा रही है। और यही हाल हमारे रिलेशनशिप्स का भी होता है। और आप जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करते हैं आपके अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र की। वैसे शादी के शुरुआती दिनों में वो जो हवा में रोमांस तैरता रहता है ना, जहाँ बिना कुछ कहे भी सब समझ में आ जाता है, वक्त के साथ नेचुरली उसमें काफ़ी जो है बदलाव आने ही लगता है। और हम चाहे ना चाहे हर रिश्ता जो है ना एक बदलाव के दौर से गुजरता ही है। अचानक एक दिन जब आप दोनों साथ में बैठे होते हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगता है, जी बिल्कुल इसी तरह से, इस गाने की तरह से, कि कुछ कम गीली हैं बारिशें, कुछ कम रोशन है ज़िंदगी। और ऐसा लगता है कि अरे हम दोनों साथ में तो हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि एक साथ नहीं हैं। जी, दूरी या डिस्टेंस महसूस होना इतनी सीरियस बात नहीं है वैसे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले कि आपके दिमाग में बहुत सारी खतरे की घंटियां जो है ना वो बजने लग जाएं, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा कभी कभी आपको महसूस होता है ना तो ज़रा थम जाइए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये जिस फासले की, जिस डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये कोई दीवार नहीं है जो एक परमानेंटली आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिससे लगभग हर कपल जो है ना वो कभी ना कभी गुजरता ही है। और इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो जाती है महसूस होने से, बहुत पहले पहले, क्योंकि रूटीन की जो ज़िंदगी है ना वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपके स्पेशल मोमेंट्स को ना ओवर पार करने लग जाती है। धीरे धीरे आपकी रूटीन के जो मोमेंट्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और ख़ास पल जो होते हैं ना वो कम होने लग जाते हैं। अब भाई ऑफिस का काम भी है, बच्चों की स्कूल बस भी टाइम पे पकड़नी है, बिजली के बिल भी भरने हैं, और हाँ अब इस स्क्रीन को भी तो जो है ना दिन के कम वक्त कई घंटे चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है, ये सब चीज़ें इतना वक्त ले लेती हैं कि अक्सर जो है ना हम ये भूल जाते हैं कि जिस रिश्ते को हमारा सबसे करीबी, जो इंसान हमारे सबसे करीब होता है, उसको हम वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं जो कि उसकी ज़रूरत होती है और जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता डिमांड करता है थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा एफर्ट और थोड़ा सा टाइम तो ऑब्वियसली लगता ही है। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में, नाम इसका हम कदम सुन रहे हैं। इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान, टू ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट सिंगर्स, इनकी आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी फना। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

0: मत।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक
2: आकाशवाणी रेनबो।
3: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। बात हो रही थी डिस्टेंसिंग की, जी वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जिसको हमने कभी ऑब्जर्व किया था। वैसे तो अभी भी बहुत सारे मसलों में ना उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, जो आपके करीबी रिश्तों में जो डिस्टेंस आ जाता है ना, खासतौर पर आपके अपने हम सफर के साथ, आपको अगर डिस्टेंस महसूस होने लग जाए तो भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इससे तकरीबन हर कपल जो है ना कभी गुजरता ही है। लेकिन इस डिस्टेंस या इस दूरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जी रिश्ते में खटास आ गई है या प्यार खत्म हो गया। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं ना आजकल, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। सीधी बात यह है कि जी आपको ना एक छोटे से रिचार्ज की ज़रूरत है। जैसे फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है ना और उसके बाद में वो ड्रैग करने लगता है, उसी तरह से आपके रिश्तों को भी ना बीच बीच में बैटरी बूस्टअप जो है ना वो चाहिए होता है, को भी थोड़ी सी स्पार्क की जरूरत होती है। और इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कवायद करने की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत सारा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे कदम भी ना कई बार बड़ा कमाल करते हैं। क्यों नहीं आज शाम को घंटे भर के लिए आप दोनों अपना फोन जो है डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दें, ताकि एक दूसरे को पूरा वक्त दे सकें। बात क्या करनी है ना ये पहले से सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आजकल आप लोग ना बात करने वाली एक्सरसाइज थोड़ी कम कम कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा अपने तमाम वो बातें जो आपको लगता है कि अरे पिछले दिनों में मुझे कर लेनी चाहिए थी या वक्त नहीं मिला, उन सब चीज़ों को करने के लिए ना एक वक्त निकालिए, एक दूसरे से अपॉइंटमेंट ले लीजिए और इस अपॉइंटमेंट का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको ज़रा साइड में रखना पड़ेगा जी। बस थोड़ी सी देर की बात है और उस थोड़ी देर में जो है आप केवल ना केवल काम की बात है बल्कि जो पुरानी यादें हैं ना उनको भी जब बैठेंगे ना तो वो खुद ब खुद ताज़ा हो जाएंगी। और सिर्फ ताज़ा नहीं हो जाएंगी बल्कि एक बार फिर से वही पुरानी जो एक रिश्ते की महक होती है ना वो एक बार फिर से आपको अपने रिश्ते में महसूस होने लगेगी। आपको अपनी बातचीत में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन आप कर रहे हैं उसमें जो है वो आपको महसूस होने लगेगी जी।

जब आप बिना किसी एजेंडा के एक दूसरे के साथ बैठते हैं, हालांकि मैंने अभी आपसे कहा कि एजेंडा आप थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने एजेंडा पे ही टिके रहें, उसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं ना, तो बहुत जल्दी जो है ना, घंटे जो है ना वो मिनटों में बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि वक्त कहाँ पर चला गया। याद रखिए, शादी एक खूबसूरत सफ़र है जी, मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस तो है नहीं। इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और इसमें पेस भी जो है ना वो कम ज़्यादा होती रहती है। कभी कभी दूरी महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस दूरी को आप पहचानें और उस फासले को समय समय पर कम करने की कोशिश करते रहें। यही तो होता है ना ज़िंदगी की मेंटेनेंस जो है ना, वो लगातार चलती रहनी चाहिए, और ख़ासतौर पर आपके सबसे करीबी रिश्तों की और उस करीबी इंसान के साथ आपकी इंटरेक्शन की भी। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे फ़िलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक। समय इजाजत नहीं देता कि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जिंदगी के सबसे करीबी रिश्ते की बात हम कदम के साथ सिर्फ और सिर्फ हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल मैं आपको छोड़ जा रही हूँ इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
0: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जी
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
0: जी।
1: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी।
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी।
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का

0: माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई।

0: अचानक उसने महसूस किया कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
1: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
2: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
3: पुत्री ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
2: सखी अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
2: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
3: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
3: डरो मत।
1: हाँ?
3: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
2: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूं वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं। शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूं।
2: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: मां धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहां तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
3: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
2: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी।
2: नहीं।
3: हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।

0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
2: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
1: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ।
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
3: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: शाबाश हेलेन। मिस सलीमन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं मिसेस,
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस सलीमन,
2: मिसेस केलर,
1: हेलेन बोल सकती है।

0: उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, जो बढ़ती उम्र के साथ एक आम समस्या है। यदि आप भी हैं इस समस्या से परेशान, तो क्या है समाधान, जानकारी देंगे हमारे आज के दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप दोनों को।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि अगर आप हमारे दोनों विशेषज्ञों से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए स्टूडियो के नंबर है 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों के स्वागत के साथ ही अब आज का प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो ये समस्या है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, तो ये किस उम्र में होने वाले फ्रैक्चर को कहते हैं?
2: जी, तो अनुराधा जी, मेरे श्रोताओं को मेरा बड़ा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहली तो ये है कि जेरियाट्रिक का मतलब है वृद्धावस्था। तो जब भी हमारे बॉडी में चेंजेस ओल्ड एज के होते हैं, जैसे लेडीज़ में तो मेनोपॉज होता है तो पता रहता है, जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं,

0: आदमियों में ऐसी कोई ड्रामेटिक चीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके भी बॉडी में मेल हार्मोन कम हो जाते हैं। तो आप मोटे तौर पे अगर कहें तो मुझे सिंपल कहना हो तो जो पोस्ट रिटायरमेंट है कोई, तो उसको हम जेरियाट्रिक कह सकते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन भी बदल रही है। लेकिन जब आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं, जब आपको चलने फिरने में मुश्किल है, जब आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ ट्रेमर्स, जब आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं और आपको गिरने का खतरा रहता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, सुनने में कमजोर हो जाता है, तो जो गिरने से जो फ्रैक्चर होते हैं उनको मोटे तौर पर हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोल सकते हैं। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोटिक्स में होते हैं, लेडीज ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। तो ये जो वृद्धावस्था में होने वाले, गिरने से होने वाले कूल्हे के फ्रैक्चर को हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोलते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये अभी डॉक्टर राजेश सर ने हमें बताया है। प्रसून सर से सवाल करेंगे, आगे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जीरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर के बारे में। यदि आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स एक बार और आपको बता देते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342108 0 0112342108 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि बढ़ती उम्र की हम बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एज में क्यों बढ़ जाता है हिप फ्रैक्चर का खतरा?
1: जी अनुराधा जी, पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। क्योंकि देखो, ओल्ड एज कुछ एक हद तक पुराने गाड़ी जैसे है, सो हड्डी भी वीक होती है, मसल भी वीक होती है। मसल के बारे में हम बोलते हैं इवन मसल वीकनेस स्टार्ट्स आफ्टर 30 इटसेल्फ, बट जैसे कि सर ने कहा कि 65 के बाद हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन काउंट करते हैं, बट इट इज़ मोर ऑफ फंक्शनल एज, नॉट कैलेंडर एज, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात करते हैं। तो देखा गया कि 60 के बाद हर डिकेड हम ऑलमोस्ट 10% के करीब मसल लॉस करते हैं। तो जो जितना भी हड्डी हमारे शरीर में है, वो हड्डी को पकड़ के रखे मसल। सो उम्र के साथ साथ जो मसल वीकनेस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि थोड़ा सा सॉफ्ट फॉल से भी उनका फ्रैक्चर होने का चांस होता है, चाहे वो हिप हो, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे कोलिस फ्रैक्चर जो हाथ में होता है वो होता है। उसके साथ साथ इनका जो मोबिलिटी है, उम्र के साथ साथ मोबिलिटी भी कम हो जाए। तो मसल को, मसल का एक है, मसल का खाना है प्रोटीन, मसल का मोबिलिटी है एक्सरसाइज, जितना हम करें। तो उम्र के साथ साथ हमारा मोबिलिटी भी कम होता है, प्लस इसके साथ आप देखेंगे तो फॉल के कारण में हेड टू फुट हर जगह पे, चाहे वो नर्वस सिस्टम में थोड़ा वीकनेस हो जाए, बीट, पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, विजन के बाद सर ने कहा, हियरिंग, देखा गया स्टडी में कि हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए, क्योंकि हियरिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारा जो कॉकलियर सिस्टम है वो बैलेंस को भी बना के रखते हैं। तो उम्र के साथ साथ देखा गया कि मसल वीकनेस के साथ साथ बैलेंस भी उनका बिगड़ जाती है। इसके साथ साथ आपका कार्डियक रिदम डिसऑर्डर भी होने का चांस, हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट पंप करने का क्षमता कम हो जाती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली इवन स्टडी में देखा गया कि आपका फूट प्रॉब्लम भी कैन बी कॉज ऑफ फॉल, कि आप कौन सा जूता पहन रहे हो वो भी एक कारण हो सकते हैं। ये सब इंटरनल हुआ, बट इसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज आई विल से एक्सटर्नल कॉज, चाहे आपका बाथरूम स्लीपरी हो, या घर में इधर उधर लूज फिटेड वेयर हो, या कारपेट एंड टू एंड नहीं रखा हो, आपका विजन कम हो, लाइट नहीं जल रहा है, बाथरूम में गए आप गिर गए, तो रात को अंधेरे में बाथरूम जाना और उसके ऊपर दवाई का असर काफ़ी ज़्यादा होता है। मेनी ऑफ द पीपल दे टेक स्लीपिंग पिल, कोई दवाई, कोई प्रेशर का दवाई जिसे हम डायरेटिक्स बोलते हैं, उसके कारण आप कोई उठे बैठे हैं, सडनली उठा तो चक्कर आएगा। सो बिस्तर से लेटे चक्कर आया, गिर गया, बाथरूम में गए, कमोड में बैठे, उठने गया, चक्कर आया, गिर गया। ये सारे फैक्टर सीनियर सिटीजन में होती है, जिसके कारण दे आर मोर प्रोन फॉर, सो नॉट ओनली वीकनेस ऑफ देयर ओन बॉडी सिस्टम, ताकि एनवायरनमेंट भी काफ़ी हद तक उनको, एंड इसीलिए WHO एक नया कंसेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट, चाहे वो शहर हो, कुछ कुछ शहर भी दुनिया में बन गया जो कि एज फ्रेंडली है, चाहे आपका घर हो, चाहे हर जगह में एज के मतलब दिमाग में रखते हुए एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करना चाहिए।
0: जी, वो कैसे होगा आपसे आगे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं।
2: हेलो
0: जी सर, अपना शुभ नाम बताएं।
2: आपको मेरी आवाज, विजय कुमार बोल रहा हूँ रोनी से।
0: जी विजय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं, बताएं।
2: मेरी एज 84 है
0: जी।
2: अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई खास, एक लेफ्ट लेफ्ट टांग के ऊपर एक सॉफ्ट गांठ सी हो गई है, और मुझे पूछा लीवर की साइड में होता है बॉडी के।
0: जी तो क्या सवाल क्या है आपका, जो आपकी दिक्कत किस तरीके की आप चाह रहे हैं समाधान डॉक्टर साहब से?
2: लेफ्ट साइड में,
3: देखिए अगर, हाँ
2: गांठ हो गई है।
3: हाँ विजय कुमार जी, जो गांठ है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों को उसकी एग्जामिन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उससे काफ़ी उसके बारे में पता लगता है, और फिर एक सुई से कैफेनेसी नाम की एक जांच करके पानी निकाल के उसमें से या सेल निकाल के उसके नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। ये कुछ बिल्कुल हार्मलेस चीज़, फैट जैसी चीज़ भी हो सकती है, या उससे कुछ ज़्यादा सिंपल ना हो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो हमारा परामर्श ये है कि आप एक डॉक्टर को मिल के दिखा लें, और अगर कुछ परेशानी होगी तो डॉक्टर उसको निकाल देंगे।
0: जी तो इनकी समस्या का समाधान हो गया। राजेश सर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कितना सीरियस होता है ये हिप फ्रैक्चर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं?
3: अनुराधा जी, इतना सीरियस होता है कि हमारे एक ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक सर्जन होते थे सर एस्ले कूपर, उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया में आते हैं श्रोणी या पेल्विस से और जाते हैं कूल्हे से। मतलब ये एक डेथ सेंटेंस है, और उस उम्र में मृत्यु का, बुजुर्गों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बहुत बार रिश्तेदारों को समझ में नहीं आती है, बोलते बाथरूम में जरा सा स्लिप हुए थे, जरा सा गिर गए, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस हड्डी का टूटना जरा से गिरने से, अब जवानी में गिरते हैं लोग, फिसलते गिरते कूल्हा तो नहीं टूटता है, लेकिन जो उस उम्र में थोड़ा सा हल्का सा फिसल के हल्की सी चोट लगने से कूल्हा गिरना टूटना जो है, एक प्रकार से आपका शरीर अब आपका साथ छोड़ रहा है, उसकी भी निशानी हो सकती है। कई बार उसमें हमारे पास पेशेंट आता है तो उनका ब्लड शुगर 600 होता है, ब्लड प्रेशर 200/100 होता है, और कई बार किडनी काम नहीं कर रही होती है। तो कई बार ये पूरी बॉडी का फिजियोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं जो उसकी फंक्शनिंग है, उसका फेलियर भी हो सकता है। और ज़्यादातर जगह ये दिखाया जा गया है कि एक साल तक इसमें मृत्यु दर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी 20-25% पेशेंट एक साल तक नहीं जी पाते, जबकि उनके रोगी ज़्यादा स्वस्थ होते हैं हमारे लोगों से, उनके वृद्ध ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, और वहाँ मेडिकल केयर भी तुरंत मिल जाती है और अच्छे से हो जाता है, तब भी उनमें से 4 में से 1 व्यक्ति अपनी जान एक साल में खो बैठता है। और अगर फ्रैक्चर ठीक ठाक भी फिक्स हो गया और जल्दी से खड़े कर दिया, जल्दी से चला दिया, तो भी मृत्यु पे का खतरा जो है कम से कम 1 साल तक लगातार बना रहता है, इसलिए इसको इतनी सीरियसली लिया जाता है।
0: जी, तो कह सकते हैं कि ये संकेत होता है कि आप पूरी तरह से आगाह हो जाएं अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि कहीं इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो जैसा कि अभी प्रसून सर ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंडली थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट करें और उस तरह की जीवनचर्या रखें कि हमें पता हो कि हमें रात में उठना है, हमारे बुजुर्ग रात में उठते हैं, तो किस तरीके की उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगला सवाल मैं चाहूँगी प्रसून सर आपसे कि चलिए यहाँ पर जो हम जान रहे हैं किस तरीके से समस्या होती है, लेकिन इसमें ऑर्थोपेडिक का रोल होता है, लेकिन आपका क्या रोल होता है सर, वो भी जानना चाहूंगा।
1: ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराधा, शायद काफी लोगों को भी पता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं आपको बताऊं। एक तो हुआ कि फ्रैक्चर का मतलब गिरने का कंसिक्वेंस है फ्रैक्चर। आप नोटिस करेंगे, हम नोटिस देखते हैं कि 3 चीजें होती है, कोई सीनियर सिटीजन अगर गिरते हैं उनको 3 चीजें हो सकती है, या तो कूल्हे का हड्डी टूटा, या तो हेड इंजरी हुआ, फिर अनकॉन्शियस जैसे हो जाता, या तो तीसरा चीज कुछ नहीं हुआ। सो ये तीनों चीज तीनों ही खतरनाक है। मैं तीसरा चीज को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये पहले दोनों में तो आप मेडिकल अटेंशन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन कुछ ना कुछ करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है करेंगे। तीसरा जो चीज है उसके बाद क्या होता है, उनमें एक डर पैदा हो जाता है, मैं गिर गया, इसे हम फियर ऑफ फॉल बोलते हैं। सो फॉल को हम जेरियाट्रिक मेडिसिन में जेरियाट्रिक सिंड्रोम कहते हैं। हर 6 में से 1 लोग रोज गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, और एक बार गिरना मतलब आप अपने मन में जो डर आ गया, फिर उनका चलने का गति कम हो जाता है,
0: स्टडी में
1: आत्मविश्वास कम होता है। तो स्टडी में देखा गया गेट स्पीड इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक योर हार्ट हेल्थ, कितना तेजी से हम चल रहे हैं। तो उम्र के साथ साथ चलने का स्पीड भी कम हो जाती है, बैलेंस कम हो जाती है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक बार आपका मोबिलिटी कम हो जाती है, देन देयर इज ए विशियस साइकिल। मोबिलिटी कम होगा तो खाना कम लगेगा, खाना कम लगेगी तो खाना हजम कम होगी, मसल को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये धीरे धीरे करके एक सिचुएशन होता है जिसे हम फ्रेलिटी बोलते हैं एल्डरली में, तो नाजुक हो जाते। तो ये रहा, तो इसलिए हम जेरियाट्रिक ओपीडी में हम बोलते हैं कंप्रिहेंसिव जेरियाट्रिक हस्बैंड। कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, जैसे सर भी हमारे पास भेजते हैं कि उनका मेमोरी, मूड, मसल, फॉल रिस्क, हम फॉल रिस्क लोगों का एसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चेयर में 3 मीटर की दूरी में हम चेयर रखते हैं, उठ के गया और वापस आया, इसमें अगर 14 सेकंड से ऊपर होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो आपको गिरने का चांस ज्यादा है। तो इसलिए आप मसल के ध्यान दो, अपने खान पान पर ध्यान दो, मेडिसिन पे ध्यान दो. मेडिसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. लोग 10-10, 15-15 गोली खाते हैं, तो हमारा एक काम होता है गोली कम करके मिनिमम और एसेंशियल गोली देना. दूसरा चीज होता है जब ऑपरेशन होता है तो यूजुअली सीनियर सिटीजन, जैसे मैं बोला ये तो पुरानी गाड़ी है, इसमें सिर्फ चैसिस खराब हुआ है, टायर खराब हुआ है, ऐसा नहीं है. काफी चीजें एक साथ होती है, प्रेशर, शुगर, डिलीरियम, उनका तो प्रेजेंटेशन ही डिलीरियम होता है. फिर ऑपरेशन के बाद सोडियम घट जाता है तो भी डिलीरियम होता है. तो सर के गाइडेंस में हम लोग एम्स में, सर जब जेएन सेंटर का, ट्रॉमा सेंटर का चीफ थे, तो हम लोग वहां पे कुछ डेडिकेटेड बेड एम्स में क्रिएट किए थे जिसे ऑर्थो जेरियाट्रिक्स कहते थे. तो सर लोग ओटी करते थे, हम लोग आगे पीछे मेडिकल मैनेज करते थे. तो इससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और जल्दी रिकवरी होता है.
0: बहुत ही अच्छी सूचना आपने यहाँ पर लोगों को दी है कि किस तरह से हम पहले ही अवेयर हो जाएं तो समस्या ना आए. फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बात है.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा और मेरे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, और साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप सबके सवाल

0: का जो समाधान है, जो समस्या है, उसका निदान कर रहे हैं हमारे दोनों विशेषज्ञ। हमारे पास अनूप कुमार जी रांची से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 54 ईयर्स है और ये बीपी शुगर के पेशेंट हैं लगभग 37 सालों से। ये बता रहे हैं कि इनकी स्टिफनेस है बोन्स में और इनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे इनको जो आराम है वो मिल सके और क्या इनको प्रिकॉशंस बरतने चाहिए?
1: तो अनूप जी, आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को रूल आउट करना चाहिए। उसमें अक्सर युवाओं में होता है, पुरुषों में होता है, सो के उठ के अकड़न होती है, बहुत सारे शरीर के जोड़ इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि अगर किसी युवा व्यक्ति को, पुरुष को 6 सप्ताह से ज़्यादा पीठ में दर्द और अकड़न रहती है तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। तो मेरा आपसे परामर्श ये है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुरंत मिलें और उनको दिखा के जो भी एक्सरे और खून की जांच, हम लोग HLA-B27 टेस्ट करते हैं, एक जेनेटिक टेस्ट है, और उससे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आपको ये गठिया है कि नहीं, और उसके हिसाब से उसका आपका इलाज किया जा सकता है।
0: जी राजेश सर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कैसे पता चले, क्योंकि ये होता है कि कभी स्लिप कर गया, कोई भी हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है वो स्लिप कर गया, तो कैसे पता चले कि जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर ही है?
1: तो गिरते ही सबसे पहली बात यह है कि उठ नहीं पाते, तेज दर्द होता है कूल्हे में, टांग छोटी हो जाती है, बाहर की तरफ लटक जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे किसी का फोन आए कि पिताजी गिर गए, माताजी गिर गए और उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर सबसे पहले यही सस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जाहिर है, अगर आपका कूल्हा टूट गया तो आप वजन तो लेगा नहीं और आप नीचे से उठ भी नहीं पाते हैं। तो कई बार हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई माता पिता घर पे थे, अकेले थे कोई उनमें से, और गिर गए और कहीं 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो ज़मीन पे ही पड़े रहे क्योंकि कोई था नहीं जो उनको उठा पाए। तो इस हिसाब से हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमने एक्चुअली IIT के कुछ साइंटिस्ट के साथ में कुछ हिप प्रोटेक्टर भी बनाए हैं, और आजकल ये चीज़ कई फ़ोन में ऐप भी आ गए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी है। तो हम लोग वृद्धों को समझाते हैं कि अगर आप गिर जाएं और घर पे अकेले हों तो उसी टाइम इमरजेंसी हेल्प के लिए या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर तुरंत बटन दबाएं, क्योंकि अपने आप से उनके लिए उठना भी संभव नहीं होता और तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराना पड़ता है।
0: जी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने बताया कि
1: जी
0: इसको इग्नोर ना किया जाए, अगर कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग स्लिप कर गया है तो इमीडिएट उसका इलाज कराया जाए। अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है ज्योति जी का, इन्होंने कहाँ से भेजा है ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 40 साल की है और आगे लिखते हैं कि 2 साल से अर्थराइटिस है इनको और नी में इनकी इंजरी भी है और 2 साल से दवाई ले रही हैं ये और इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये फिजियोथेरेपी भी करवा रही हैं, तो किस तरह से इनको आराम मिली ये जानना चाहती हैं, क्या ये असर करेगा फिजियोथेरेपी कराना?
1: जी, फिजियोथेरेपी तो बड़ा फाउंडेशन है किसी भी ऑर्थोपेडिक इंजरी का। लेकिन आपको चोट लगी, उसके बाद में कैसा रहा, आपका एग्जामिनेशन करना, आपके MRI की फिल्म देखना, आपके एक्सरे देखना, सब कुछ ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आपको ठीक से इसके बारे में सलाह दी जा सकती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और अगर आप कहीं, एक रूल है, हम लोग कई बार पेशेंट को खुद ही एनकरेज करते कि अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अगर आपको पूरा रिलीफ नहीं आ रहा है या आप वो चाहते हैं, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सेकेंड ओपिनियन वैसी होगी जैसी आपके पहले डॉक्टर ने कहा, तो आप उसको फॉलो करने में आपको फिर कोई संकोच नहीं होगा। तो अगर ऐसी परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाएं, और अगर दिखा रहे हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो एक सेकेंड ओपिनियन लें।
0: जी, ये जानना चाहती कि 100% क्या असर करता है फिजियोथेरेपी?
1: फिजियोथेरेपी 100% अपने आप में नहीं करता है। कुछ बीमारियों में 100% ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होता है, कुछ में परसेंटेज होता है। अगर जैसे कि आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ऑपरेशन चाहिए, तो फिजियोथेरेपी से ऑपरेशन का काम नहीं हो सकता।
0: करेक्ट।
1: लेकिन ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में भी फिजियोथेरेपी का रोल है। तो फिजियोथेरेपी का रोल हमेशा है, लेकिन फिजियोथेरेपी अपने आप में पूर्ण उपचार बहुत ही रेयर केसेस में होता है।
0: जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी, अपना शुभ नाम बताएं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे
2: बीपी
0: हैं, कौन
2: गौतम
0: बोल रहे
2: मेरठ
0: हैं?
2: से बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं गौतम जी, क्या सवाल है?
2: बढ़ती उम्र में

0: रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के क्या कारण है, और 3-4 ऐसे उपाय बताएं जो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए।
1: जी
0: धन्यवाद।
2: सो जैसा कि गौतम जी हम लोग चर्चा कर ही रहे कि उम्र के साथ साथ हड्डी का वीक होना, उसमें हार्मोनल से लेके मोबिलिटी, आप कितना चलते हो, आपका पोस्चर क्या है, आपका खान पान क्या है, आपके आपने पहले आपका और कोई कौन कौन बीमारी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को एक एंडोक्रीन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में माना जाता है, तो जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, इन लोगों को भी इनसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो एक तो प्लस हमने जैसे कहा कि पेन का हर टाइम कारण हड्डी नहीं होता है, उसके साथ साथ जो मसल है उसका भी कभी कभी कारण हो सकता है, जिसके साथ आपका पोस्चर का काफ़ी हद तक रिलेशन है। तो रोकने का तरीका यही है, आप खान पान सही करिए, जैसे कि हम अभी रेकमेंड करते हैं कि एज पर योर वेट, अगर आपका उम्र वेट अगर 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। मसल का खाना है प्रोटीन, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, आइडियली दैट शुड बी नेचुरल प्रोटीन, अलग से प्रोटीन पाउडर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा खान पान में हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हर मसल को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जितना आपका बॉडी परमिट करे। शुरू में अगर आपको एक्यूट पेन है तो उस टाइम में आप खुद से एक्सरसाइज ना करके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे नियरेस्ट डॉक्टर, उसके बाद आप करिए। तीसरा चीज़ है, हमारा पोस्चर को काफ़ी ठीक रखना जरूरत है। आज के जमाने में 40-50 साल से ही हम लोग भी मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो हमारा जो बैक का मसल है वो कोई ना कोई अलग ऐसे ऐसे पोस्चर में रहते हैं जिसमें हमारा पेन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। सो इवन जो बीमारी पहले 60 साल में होता है, मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हड्डी घिस जाना जिसको कहते हैं, चाहे वो घुटनों में हो, चाहे वो स्पाइन में हो, हाथ में हो, वो आजकल काफ़ी अर्ली एज में हो रही है। प्राइमरली दिस इज ड्यू टू पोस्चर एंड एक्सरसाइज कम करना। तो एक्सरसाइज करिए, खान पान सही रखिए, पोस्चर को मेंटेन करिए, दिस 3 विल बी माई एडवाइस।
1: राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम घर में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों या गाड़ी चला रहे हों, हमारी आदत हो जाती है कि हम जो अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं, तो उसको हैबिट में लाना एक बहुत बड़ा जो आपने समाधान बता दिया है वो है, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखें तो बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी। डॉक्टर साहब, अगर फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर होता है, तो किस तरीके का प्राथमिक उपचार लेना ज़रूरी है?
2: उपचार तो जैसे सर ने कहा कि अगर हिप फ्रैक्चर हुआ है आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में, क्योंकि एविडेंस दुनिया भर में एविडेंस कहते हैं कि अर्लीएस्ट यू डू सर्जरी, जितना जल्दी आप सर्जरी करेंगे उतना उनका रिकवरी होने का चांस रहेगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, लेट्स से 90+ केसेस विद फ्रेल्टी, जो कि अगेन नीड्स असेसमेंट बाय द डॉक्टर, बट आप उनको घर में ऐसे तो रख नहीं सकते हो लंबा समय तक। जो बात सर भी कह रहे थे कि एक सपोज किसी ने बाथरूम में गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, जो उठ नहीं पा रहा है, उनका बाकी कॉम्प्लिकेशन भी फटाफट होता है, जैसे कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि यू नो सलाइवा अंदर एस्पिरेट कर जाती है, उनका वो बेहोश हो सकता है, फ्रैक्चर होने के बाद अगर हेड इंजरी हल्का भी हुआ है उससे उनको ब्रेन स्ट्रोक का होने का भी चांस रहता है, फिर शुगर का भी जो पेशेंट है उनका सडनली शुगर घट जाने से वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे कार्डियक इवेंट भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर को आपको मतलब सोचना है। तो गिरने के बाद आदमी को घर में रखना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एंड देन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विल डिसाइड कि क्यों गिरे थे और इमीडिएट उपचार क्या है।
1: जी, और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है या किस तरह के टेस्ट होते हैं उसके लिए कुछ बताएं सर।
3: जी, तो सबसे पहले जब ऐसा पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर प्रसून ने कहा कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि चोट लगने के 48 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन करके उनको खड़ा करके चला दिया जाए तो उनकी जान बचाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। जितना ऑपरेशन में डिले होता है, विलंब होता है, उतना कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, बेड सोर हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, टांग में क्लॉट बन सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है जिसके लिए हमें डॉक्टर प्रसून को पकड़ना पड़ता है कि पेशेंट को ऑपरेशन की कंडीशन में जल्दी से जल्दी लाया जाए। शुगर हाई है तो शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, जो चीज़ क्रॉनिक है कि किडनी खराब है, लंग्स खराब है, अब वो है तो है लेकिन इस समय तो ये जान बचाने का ऑपरेशन हो जाता है, तो इसमें कई बार थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन का उद्देश्य ये होता है कि बेड पे पड़े रहने से होने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है, उनको उनसे बचा जा सके और जल्दी से जल्दी पेशेंट को खड़े करके चलाया जाए, और इसके लिए ही ऑपरेशन होता है और इसी के लिए फिटनेस देखी जाती है। पर ये आसान निर्णय नहीं होता है क्योंकि ये सब हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। तो हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कई बार उनको ये पता ही नहीं होता कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। उन्हें लगा कि थोड़ा सा हल्का सा गिर गए थे, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन को ये नहीं मालूम रहता कि अच्छा से अच्छा इलाज होने के बाद भी एक साल तक उनकी मृत्यु होने के चांसेस रिस्क बहुत हाई है। सब कुछ ठीक हो गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन कम से कम 40% पेशेंट ही ऐसे 40% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो उतना अच्छे से चल पाते हैं जितना कि ऑपरेशन, जितना चोट से पहले चलते थे। 60% जो है वो स्टिक या वॉकर पे आ जाते हैं। 40% पेशेंट से ज़्यादा अपने काम पे दोबारा नहीं जा पाते हैं। तो एक तरह से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बदल जाता है इस एक फ्रैक्चर से।
1: जी, तो मतलब ये साधारण सी बात ना समझी जाए, जो कि हम समझ लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। किस तरह से आगे की सावधानियां हो, बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो
1: जी सर, नाम बताएं मैम।
4: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला से।
1: जी मैम, बताएं क्या सवाल है आपका।
4: जी नमस्कार डॉक्टर साहब, सबको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, नमस्कार।
4: हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं 76 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ
1: जी,
4: और मेरा नवंबर 24 में मैं योगा की टीचर हूँ
1: जी, जी।
4: तो मैं गई क्लास लेने, तो वहाँ स्लिप करके दीवार के साथ लगी, तो मेरा फेमर का वो जो नेक बॉल होता है वो टूट गया।
1: ओ।
3: उसी प्रोग्राम, उसी फ्रैक्चर की आज बात कर रहे हैं हम।
4: हाँ जी, वही बता रही हूँ मैं। थोड़ा मेरा केस डिफरेंट इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिविटी ने मुझे जिंदा रखा है।
1: कुछ
4: एक तो मैं योग में हूँ, 27 ईयर्स हो चले हैं
1: जी।
4: दूसरा, मेरा नेक्स्ट डे ही सर्जरी हो गई। मैं 91 से डायबिटिक भी हूँ, बीपी मेरा ठीक ही रहता है, 60 रहता है ऑलमोस्ट
1: जी।
4: तो मैं ये मैसेज सा देना चाहती हूँ आपके थ्रू कि मेरी सर्जरी हुई तो मेरे डॉक्टर इस बात से खुश थे कि मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग थी। सारा दिन मुझे विजिटर्स आने, मिलने जुलने, तो वो कहते आप ठीक ही इसलिए हुए हो, चाहे डायबिटिक हो, आपके स्टिचेस इतने अच्छे कट गए हैं
1: जी।
4: तो
1: जी,
4: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर चोट लगती है तो ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई।
1: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने।
3: और एक और बहुत जरूरी बात है, जैसे मिसेस बेदी ने कहा कि इनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं दिखलाता, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे कि ये फ्रैक्चर हुआ, मुझे लगता है जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर वो फ्रैक्चर का इलाज करता है और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज नहीं करता है, उसने अपना काम अधूरा किया है। क्योंकि एक हिप टूटा है तो दूसरा हिप बचाना ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से जो आगे झुक जाती है, वो जो पीछे डिफॉर्मिटी हो जाती है, कुबड़ निकल आता है, वो सब ऑस्टियोपोरोसिस से है। और अगर हमें एक बार झटका लगा और उससे डॉक्टर और मरीज दोनों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ऐसी चीज़ दोबारा हो सकती है और उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तब तक इलाज प्रॉपर नहीं हुआ। और पेशेंट का भी ये कर्तव्य है कि जो ट्रीटमेंट को फॉलो करें कि हड्डी टूट गई, जुड़ गई, तो इलाज ख़त्म नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के एंड पे वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, और करते हैं तो पेशेंट ठीक होने के बाद वो दवाइयां लेते नहीं हैं जो उनको और फ्रैक्चर से बचा सकती हैं। तो कुल मिला के इसके लिए हम सभी जिम्मेवार बन जाते हैं फिर।
2: मैं मिसेस बेदी मैडम के बारे में और एक चीज बताऊंगा। एक और एक इम्पोर्टेंट मतलब आपका प्रेडिक्टिंग फैक्टर है, प्रोबेबली सी वाज वेरी मोबाइल। फ्रैक्चर से पहले जो लोग ज्यादा मोबाइल होते हैं, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ भी एक फैक्टर है, मे बी सी हैज ए पर्पस, यू कैन से दैट। सो हैप्पीनेस, पर्पस, ये सब कुछ मैटर करता है। जैसे कि सर ने कहा ट्रीटमेंट तो करना है, सो जो भी मोबिलिटी सीनियर सिटीजन में काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा मोबाइल रहोगे, फ्रैक्चर के बाद आपका रिकवरी का चांस ज्यादा है। जितना ज्यादा मोबाइल रहोगे, इवन स्ट्रोक के बाद भी इंप्रूवमेंट उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है जो पहले काफी मोबाइल रह चुके। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर हर ऑल्सो कि सी रिकवर्ड वेल।
1: तो यहाँ पर ये संदेश आपने दे दिया है डॉक्टर प्रसून सर कि अपनी जो दिनचर्या है उसको ऐसा रखें कि लगातार आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें, चाहे आप पार्क घूमने जाएं, आप घर में ही थोड़ा चल फिर लें, जो भी पॉसिबल हो वो करें। आपसे बहुत सारे भी सवाल करने हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: अनुराधा जी, बहुत ही बेहतरीन गाना डॉक्टर प्रसून ने चलवाया, और मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो आपका परिवार, आपके मित्र और आपके डॉक्टर आपके लिए हमेशा साथ हैं। और अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको ये बताए कि मुश्किल से बचा कैसे जाए, और इसीलिए शायद अनुराधा जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है।
1: रेडियो डॉक्टर लगातार आपके साथ है हर मुश्किल में कि आप स्वस्थ रहें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका निदान कैसे हो। और स्वस्थ रहने का एक विकल्प और है कि अच्छा संगीत सुना जाए, थोड़ा बहुत गाया गुनगुनाया भी जाए। और आपको श्रोताओं बता दूं कि हमारे आज के जो दोनों विशेषज्ञ हैं, गाने भी महारत उनको हासिल है, तो एक एक लाइन हमारे श्रोताओं के लिए सर हो जाए।
2: नहीं, अभी जो गाना हमने गाया ये बहुत फेवरेट सुने हमने, ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,

0: क्या बात है जी सर।
1: अनुराधा जी, मुझे लगता है भगवान का साक्षात रूप माँ है, तो गाने तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक लाइन में गाना चाहूँगा। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और श्रोताओं, माँ का आशीर्वाद हो और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका साथ हो, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और दोनों आशीर्वाद आज आपके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर गीत आपको सुनाया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉलर फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।

0: शुभ नाम बताएं अपना।
1: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी।
1: मैं ब्रह्मदत्त मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ। पहला ते आई एम सब के जावा योर मेलोडी सॉन्ग दे उत्ते जेडे तुसी गाए ने हुणे। ब्लोसरा साहब मेरी चाई जी ने 80 ईयर ओल्ड।
2: अच्छा जी।
1: ओ टैप है सी थल्ले प्रेशर हो गया सीगा लै ते हुण वाकर नाल तुरदे ने ते मैं जानना चाहंदा सीगा वाकर किस तरह उहनां दी छुट्टेगी।
2: इतना कार दी कहानी है, इसीलिए हमने ये टॉपिक इस बार चुना है क्योंकि हर घर में, हर पड़ोस में, रिश्तेदारी में देखिए ऐसा है कि हम सबकी उम्र बढ़ रही है और पहले तो लोग चेचक मलेरिया से ही चले जाते थे, अब हम जीते हैं देर तक तो कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारियां बढ़ गई हैं। तो इस टाइम पे ना देखो मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा, एक तो वॉकर छुड़वाने से ज़्यादा उनको गिरना नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर प्रसून ने भी कहा कि उम्र के साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा मसल मास ख़त्म हो जाता है, मांसपेशियाँ ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। और फिर एक ये भी बात हुई कि बड़ी सारी दवाइयाँ, ये भी हम जानते हैं कि जो पेशेंट 5 से ज़्यादा दवाइयाँ एक दिन में खाते हैं और जिनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है किसी तरह का भी है, और जो गिर चुके हैं इन सबको गिरने का खतरा बहुत होता है। तो पहली बात तो ये है कि इनको गिरने से बचाना है, इनके दिमाग से गिरने का खतरा हटाना है। दूसरे इनकी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना है, इनकी मांसपेशियों को मजबूत करना है। वॉकर एकदम नहीं छूटेगा, हम कोशिश करें कि वॉकर से स्टिक पे आएं, और इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिनका मतलब है कि आपका बैलेंस कैसे अच्छा किया जाए और कैसे आपको गिरने से बचाया जाए, तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो और जितना ज़्यादा जैसे कहा कि फिज़िकली फिट रहेंगे और उतना ही ज़्यादा उनको गिरने का खतरा कम रहेगा। तो एक इनको अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सरसाइजेस करवा के सुपरविजन में इनको वॉकर से पहले स्टिक पे लाया जाए, और स्टिक छोड़ने की मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि अगर ऐसा रिस्क मैं नहीं लेना चाहूँगा कि वो बिना स्टिक के चलें और गिर जाएं, पर कम से कम वॉकर से उनको स्टिक पे जरूर शिफ्ट किया जाए
0: जी।
3: और वेट अगर ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रयास करें क्योंकि काफ़ी टाइम
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, बड़ी नियमित हमारी श्रोता हैं और मैसेजेस आते हैं हर बार इनके। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर हैज़ मेडिकल साइंस डेवलप्ड एनी इंस्ट्रूमेंट विच कुड गेट अटेस्ट टू देयर यूरिनरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर ओल्ड मैन एंड वुमेन सो दे कुड पी वेल दे आर ऑन देयर बेड्स एंड डोंट हैव टू गेट अप देयर फॉल कुड कम्प्लीटली बी स्टॉप्ड इन दिस वे।
3: जोया जी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक वो पेशेंट स्पेसिफिकली कैसा है ये जानना चाहूँगा मैं, बट अगर वो उठ के बाथरूम तक जा सकते हैं तो ये तरीका तो एकदम ही सही नहीं है। कोई भी हम फॉरेन बॉडी हमारे यूरिनरी ट्रैक में डाले तो वो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाती है। तो इवन हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितना कम से कम लोगों को कैथेटर में रखा जाए या डायपर पहनाया जाए। तो बाकी चीज़ में ध्यान दीजिए, अगर आप स्लीप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, अगर ये कोई मेल सीनियर सिटीजन है जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उनको रात को बार बार बाथरूम जाने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उनको कोई प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जिसके कारण उनको बाथरूम हो रहा है, तो ये सब हमें दवाई पर देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लीपिंग पिल इज़ वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। अगर कोई स्लीपिंग पिल पे है, कप सिरप पे है, रात को उठते हैं, उनको गिरने का संभावना ज्यादा होते हैं। सो बाथरूम जाना हमें बंद करना इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल एट दिस एज, लेकिन हमें साथ में यह भी जानना है कि रात को हमें बाथरूम आना ज्यादा होती है उम्र के साथ साथ ड्यू टू सिरकेडियन रिदम चेंजेस। तो इसलिए मैं मेरे पेशेंट को ये प्रमोट करता हूँ कि आप अगर घर में हो 6 बजे तक अपना आखिरी डिनर कर लो, विच इज़ वेरी साइंटिफिक। 6 बजे तक हम अपना खाना ख़त्म करते हैं और 7 बजे तक पानी पी लेते हैं, तो और सपोज़ हम 10 बजे 11 बजे सोने जाते हैं, तो इवन इफ़ यू हैव प्रोस्टेट प्रॉब्लम 3-4 बार आप बाथरूम चले जाते हो तो रात को उठने का चांस कम हो जाती है। एट ए स्टेज 3 से 4 घंटे हमें सोना हो जाए देन वी गो टू बाथरूम चांसेस ऑफ फॉल विल आल्सो बी लेस क्योंकि वी कंप्लीट अ पूरा स्लीप साइकिल।
2: और जैसा कि डॉक्टर प्रसून ने कहा, देखिए कोई कैथेटर डालना, कोई डायपर, ये सब इन्फेक्शन को दावत देते हैं। इनके बारे में छोड़े, इसके उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि गिरने का खतरा कम किया जाए। वृद्ध व्यक्तियों के पास में एक बेड स्विच रखते हैं जिससे वो पहले लाइट चला पाएं, बाथरूम कमरे के अंदर अटैच्ड हो, वहाँ आराम से जा पाएं तो अच्छा है। अगर उनको चलने में मुश्किल है तो स्टिक या वॉकर पास में रखें, और अगर इससे भी मुश्किल लगती है तो एक बेडसाइड कमोड चेयर रख लें, उसमें से खड़े हों, चेयर में बैठे पास कर लें, उसको ढक दें, लेकिन पूरी तरह से आश्रित हो जाना डायपर पे या कैथेटर पे और आगे जाके इन्फेक्शन और किडनी फेलियर को दावत देता।
3: और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जिनको फॉल रिस्क ज्यादा है, जो कि हम लोग एसेस करते हैं, सो आजकल काफी सारे डिवाइस भी आ गए, जैसे अभी जैसे सर ने भी कह रहे थे एम्स के साथ मिलके ग्रुप में बनाया है, तो आप एक बेल्ट जैसे पहनोगे, जब आप लेटे हो तो वो डिफ्लेटेड है, जब भी आप उठते हो इन्फ्लेट हो जाए। सो इसका प्लस माइनस सब कुछ है, बट स्टिल यू कैन प्रोटेक्ट लिटिल बिट ऑफ योर हिप। सो हिप प्रोटेक्टर के दौर पे ही आते हैं। सो आपको प्रिवेंट करना है फ्रैक्चर, ना कि बाथरूम जाना आप प्रिवेंट कर दोगे पूरा पूरा। ऑफ कोर्स द पेशेंट इज टोटली बेड बाउंड तो स्टोरी अलग होता है, तो डॉक्टर खुद ही डिसाइड करेंगे क्या करना।
0: आगे का क्या, जब होता है ऑपरेशन, सर्जरी होती है, तो क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास सतीश कुमार जी का रोहिणी दिल्ली से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 65 साल की है और वेट इनका 90 kg है। इन्होंने लिखा है कि इनकी कमर में दर्द रहता है और जब ये उठते बैठते हैं तो ज़्यादातर दर्द होता है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि 500 meters चलता हूँ लेकिन इनको फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
3: सो पहली तो बात मैं बोलूंगा आपको वेट घटाना होगा।
0: जी बिल्कुल, अभी आपने कहा
3: उम्र में जाके वेट घटाना काफी कठिन होता है क्योंकि आप उतना फ्लेक्सिबल, उतना एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते हो। बट डाइट के ऊपर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, डाइट को हम पहले ऑल्टर करें, सही टाइम पे खाना खाए। हमारा इंडियन डाइट में ओबेसिटी का चांस ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके ऊपर भी काफी स्टडी हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खान पान पे फोकस्ड है, रोटी चावल सब्जी सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो आप ओवरऑल खान पान में कैलोरी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, हर खान पान में 30% प्रोटीन को डालने की प्रयास करिए। दो बार से तो तीन बार से ज्यादा हमारा खाने की जरूरत नहीं है, एक ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट, हल्का सा लंच एंड देन डिनर अराउंड 6 PM, ये हम करें। और फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हमारा मोबिलिटी बनते रहे उसको करें, पोस्चर को ठीक रखें। इसके बावजूद भी आपको पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, बट वेट इज अ मेजर फैक्टर फॉर हिम,
0: उसको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं कि सर्जरी जिसकी हुई है तो किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है पेशेंट को?
2: जी, तो पेशेंट को हॉस्पिटल ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट का ऑपरेशन जो ही हो जाता है, मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होते ही हम उनको खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं और उनको बाथरूम भेजते हैं, एक दो सीढ़ी भी उनको चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब ऐसा रहे कि वो घर में कम्फर्टेबल रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, चल फिर लेंगे, बाथरूम चले जाएंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएंगे, फैमिली के साथ कहीं गाड़ी में बैठ के खाना वाना खाने चले जाएंगे, तो हम भेज देते हैं, उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। 48 घंटे में अक्सर ऐसा हो जाता है, जब तक कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो जिसकी वजह से उनको रखना पड़े शुगर कंट्रोल या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज उनको चला के हम ये चाहते हैं कि उनको कम से कम देर बेड पे रहना पड़े, तो चोट लगते ही ऑपरेशन करते ही खड़े करना, चलाना और नॉर्मल होने की कोशिश करना, कुछ दिन तो ऑफकोर्स उनको सपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। पर इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई शुरू करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस शुरू करना ताकि गिरे नहीं, और एक बार अपनी डाइट पे प्रोटीन इंक्लूड करना, मसल स्ट्रेंथनिंग इंक्लूड करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: जी, हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है। मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 साल की है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके लिए मैं फ्लोरिश गोली महीने में एक बार लेती हूं, इसे मैं कितने दिन ले सकती हूं?
2: इसको 3 से 5 साल ले सकते हैं, लेकिन ये जो महीने में एक बार लेने वाली गोली होती है ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, बड़ा वीक एजेंट है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ही हल्का सा ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने दिया, हल्के से मतलब है कि बहुत ऑस्टियोपोरोसिस के बजाय ऑस्टियोपीनिया ज़्यादा कहना चाहूँगा, और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आपकी 75 साल की उम्र है तो आपको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा

0: थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, फॉर्मर चीफ जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली, साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और अब श्रोताओं, अनुराधा को दीजिए रेडियो डॉक्टर से इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। जम्मू कश्मीर सरकार ने लैंड पूलिंग नीति 2026 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य भू स्वामियों और विकास एजेंसियों की स्वैच्छिक भागीदारी से भूमि को एकत्र कर सुनियोजित शहरी विकास के लिए ढांचा तैयार करना है। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज।

0: wherever you are. 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
10: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
11: आकाशवाणी रेनबो।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
12: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
13: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ SR यानी संतोष।

0: जी हाँ, वजह कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसकी वजह से आज के युवाओं में गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवा छोटी छोटी बातों पर झुंझला भी रहा है। जी हाँ, बेचैन युवा क्यों अपने गुस्से की आग में स्वयं को भस्म कर रहा है, आइए जानते हैं कुछ युवाओं से।
1: हाय, मेरा नाम है राधिका, मैं लखनऊ से हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि गुस्सा आने की सबसे बड़ी वजह है प्रेशर। चाहे पढ़ाई का प्रेशर हो, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, करियर को लेकर टेंशन, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने का प्रेशर।

0: मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। उस समय लगता है कि सामने वाला परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचती हूँ तो लगता है कि असली वजह वो छोटी सी बात थी ही नहीं। शायद पहले से ही पढ़ाई या किसी और चीज़ को लेकर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरे साथ भी कई ऐसी बातें हुई, उनमें से मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्टडी टारगेट कंप्लीट करने के लिए बैठी, लेकिन वो बार बार किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मुझे हर छोटी चीज़ इरिटेटिंग लगने लगी। बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे लगा कि मुझे उस इंसान या उस सिचुएशन से इतना गुस्सा नहीं था जितना खुद पर था कि मेरा काम समय पर पूरा क्यों नहीं हो रहा। और शायद यही बहुत से युवाओं के साथ होता है, हम अपनी परेशानियां हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते। इसीलिए जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी समय जवाब देने के बजाय थोड़ी देर शांत हो जाऊँ, क्योंकि कई बार हमें सिचुएशन बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस उस सिचुएशन को देखने के लिए अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। और शायद यूथ का यही सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास इमोशंस बहुत हैं लेकिन उन्हें हैंडल करने का पेशेंस थोड़ा कम है।
1: मैं बीड़ा उन्नाव से हूँ। मेरा ये कहना है कि युवाओं को गुस्सा होने का कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण हैं। जैसे फिर चाहे वो करियर को लेकर हो, अपने सपनों को पूरा करना हो, समय से पहले या समय पर सब कुछ पा लेना, वहीं कुछ और भी कारण हैं, सब कुछ करने की आज़ादी होना।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी कानपुर की राधिका और लखनऊ की वीणा की बातें, और इनकी बातों को सुनकर इस बात का एहसास तो जरूर हो जाता है कि आज का युवा इस बात को बखूबी जानता है कि उनके अंदर गुस्सा जो भर रहा है उसका कारण क्या है। दोस्तों, आज के युवाओं को बस जरूरत है सही दिशा के मार्गदर्शन की। इसीलिए कैसे युवाओं के गुस्से को कंट्रोल करके उनको सही दिशा दिखाई जा सकती है, आज हम जानेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा में।

0: जी हाँ, रंग बदलती दुनिया में प्यार से न सिर्फ युवाओं की सोच बदली जा सकती है, बल्कि उनकी जिंदगियों को एक नई दिशा देकर उनके लिए एक नई इबादत भी लिखी जा सकती है। कैसे, आइए बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: अच्छा विनीता जी, आज के युवाओं के अंदर जब आप गुस्से को भरा हुआ देखती हैं, तो आपका दिल आपसे क्या कहता है?
1: सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी के साथ अपनी सहानुभूति बांटना चाहती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि एक माँ होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी किस दुख की घड़ी से गुजर रही है। बहुत तकलीफ है और मुझे भी

0: तकलीफ है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। हर पीढ़ी में, युवा पीढ़ी के जब सपने चकनाचूर होते हैं, उनका दिल टूटता है, तो वो क्रोधित होते हैं, आक्रोश से भरते हैं। लेकिन आत्महत्या करना, नशे का या हिंसा का सहारा लेना, ये सही नहीं है
1: जी।
0: ये समाधान नहीं है। हमारे समय में भी बहुत सारी युवा पीढ़ी से संबंधित परेशानियां आई और बहुत लोगों ने अपने आप को खत्म कर दिया। खत्म करना या अपने आप को गुस्से से राख कर लेना, ये समाधान ना था, ना है, ना हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। गुस्से में अपने आप को या अपने जीवन को मुश्किल में डालना, ये ना तो समाधान है और ना ही समझदारी।
0: संतोष, हम गुस्से में जब होते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्सा करना वाजिब है
1: जी।
0: गुस्सा होने के तमाम कारण है आज की युवा पीढ़ी के पास, जिसके साथ मैं भी बहुत दुखी और गुस्से में हूँ। लेकिन इस गुस्से को हम कैसे माध्यम बना सकते हैं एक बदलाव लाने के लिए, वो सोच विचार करना, बातचीत करना बहुत आवश्यक होता है
1: जी।
0: कई बार जवान लोग इतना गुस्से में भर जाते हैं कि वो ठीक से सोच समझ नहीं पाते हैं। उनके सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो स्वयं को और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।
1: तो विनीता जी, युवाओं को क्या करना चाहिए?
0: शांति रखना, हिंसा से स्वयं को दूर रखना, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर में आशा रखना।
1: जी हाँ, जब हम ईश्वर पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारे बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं और हमारी मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है।

दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई युवा है और आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप 7678438471 पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7678438471। और याद रखिए, युवाओं पर क्रोध करने से बेहतर है कि हम उनकी काउंसलिंग करें और उनको दिखाएं सही दिशा।

0: और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एहसास यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फाजन। अल्फाजन बुधवार का बहुत ही खास एडिशन होता है और अल्फाजन का ये जो बुधवार का एडिशन होता है इसे हम कहते हैं कैंपस कॉलिंग। इस बहुत ही स्पेशल एडिशन में हर हफ्ते हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम आपको वहाँ के स्टूडेंट से मिलवाते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करवाते हैं, अलग अलग बातें जो है ना वो हम आप तक पहुँचाते हैं। वहाँ के फेस्टिवल्स हों चाहे वहाँ के क्लासरूम्स हों, वहाँ की जो भी वाइब है वो अगर आप पहुंचती है तो हमारे इसी कार्यक्रम के जरिए पहुंचती है जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे जी। और आज मेरी सहयोगी माला नेगी जो है वो पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है जब रेगुलर कॉलेज से ना ओपन लर्निंग की कंपैरिजन होती है तो मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी एक डिग्री जो है वो रेगुलर कॉलेज से की है और 2 डिग्रीज जो है मैंने अपनी डिस्टेंस लर्निंग से की हैं और मुझे दोनों के बीच में हमेशा ही डिस्टेंस लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेबल लगा है। हालाँकि अब उसकी बहुत सारी वजह जो हैं और भी ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं, एडवांटेजेस ऐड हो चुकी हैं, बहुत सारी वजह जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ज़माना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अब मेरे टाइम जब मैंने ये सारी डिग्रीज की थी और अब जो हमारी जेन ज़ी है वो ये सब पढ़ना चाह रही है तो क्या कुछ है उनके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो और आइए चलते हैं हमारी सहयोगी माला नेगी के साथ डायरेक्टली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग।
2: दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आप जान चुके हैं कि उन्हें एडमिशन फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में मिलने भी वाला है या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उनका मिथ यहाँ पर तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपके लिए बाहें खोले इंतज़ार कर रहा है और यहाँ से भी आपको जो डिग्री मिलेगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। और अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में यहाँ की डायरेक्टर के साथ जो कि आज बहुत सारे हमारे ऐसे सवालों के जवाब देना चाहेंगी और हम भी उनसे जवाब लेना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: हमारे साथ

0: प्रोफेसर पायल मागो मैम, डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, अब हमारे लिए सारे द्वार बंद है, तो आप इस बारे में क्या कहना?
1: बिल्कुल सोच ये सही नहीं है. और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिला, तो आपके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, जिसका नाम अभी अभी बदला है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. तो आपके रास्ते तो हमेशा से खुले हैं. इसमें पीजी प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, और अभी जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स ने अपना कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, वन ईयर का जो पीजी प्रोग्राम है, वो भी काफी सारे पीजी प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में हैं. और बात केवल यहीं पे नहीं खत्म होती है. हम केवल उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं, और उनको एस एल में एडमिशन मिल सकता है, ये ट्रू है. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटेंशनली अपनी चॉइस से रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेते, और वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें पढ़ने के लिए आते हैं. वो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है. अगर हम अपने मार्क्स की रेंज देखें, तो हमारे मार्क्स की रेंज 95-97% से लेके 33% वाला स्टूडेंट भी हमारा स्टूडेंट है.
0: ओके.
1: तो जो पूरी रेंज है मार्क्स की, वो हमारे पास है. और इसकी एक ही वजह है कि कुछ लोग जिनको एडमिशन नहीं मिलता, वो हमारे पास आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनको रेगुलर में एडमिशन ना लेके, ओपन में एडमिशन लेके अपना बाकी सारा समय कहीं और बिताना है, किसी और यूजफुल काम में करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, कोई और चीज़ सीखनी है, उसके लिए वो स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं.
0: जी.
1: कुछ क्लासेस उनको ऑनलाइन मिल जाती हैं और कुछ क्लासेस ऑफलाइन मिलती हैं, जिसमें उनको केवल एक या दो दिन हफ्ते में जाना पड़ता है. और लेकिन डिग्री तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है. जो आप करिकुलम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ में आप ट्रेन हो रहे हैं, वो वही करिकुलम है जो रेगुलर में करिकुलम होता है. जो क्वेश्चन पेपर आता है, वो सेम क्वेश्चन पेपर आता है जो रेगुलर में आता है. सेम डे पे आपका पेपर होता है. जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के साथ आपका भी पेपर होता है.
0: अच्छा.
1: और जो इवैल्यूएशन है, वो भी रेगुलर के टीचर्स ही करते हैं. तो आपकी डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इसलिए जब आपको डिग्री मिलती है, तो रेगुलर की डिग्री और आपकी डिग्री, एसएल के स्टूडेंट की डिग्री, एक ही होती है. उनकी मेरिट भी एक होती है. और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछले कई वर्षों से जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, वो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं. बिल्कुल पिछले ही साल करीब 5 टॉपर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं. एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस में तो कई वर्षों से जो टॉपर है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ही है. इस बार एमकॉम का टॉपर भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का रहा, एमबीए का टॉपर रहा, और लाइब्रेरी साइंस के जो BLISC और MLISC दोनों कोर्सेज हैं, वो भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर बने.
0: वेरी सरप्राइजिंग टू नो मैम. और इससे ये पता चलता है कि अगर मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, तो समाज में किस तरह के मिथ्स हैं अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन न लेकर SOL में लिया है. तो ये तो मैम आपने बताया कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें, कहते हैं बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनको आगे करियर में बहुत मिलने वाली है, SOL से क्या मिलेगा?
1: SOL के साथ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर व्यक्ति स्किल्ड हो. NEP का भी जो विजन है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो भी हर व्यक्ति स्किल्ड हो. तो SOL में हमने एक स्किल सेंटर बनाया जिसके अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स, और वो स्किल्स आपकी फॉरेन लैंग्वेज की स्किल्स हैं या फिर आपकी हैंड्स ऑन की स्किल्स हैं. उसमें बेकरी, कन्फेक्शनरी, इंग्लिश कन्वर्सेशन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा साइंसेस की जो स्किल्स हैं, लाइब्रेरी साइंसेस की स्किल्स हैं, इस तरह के स्किल कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज वहाँ पर हैं. और जो ये अपना समय आपको मिलता है कि आप दो दिन अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की क्लासेस अटेंड करते हैं, 3 दिन अटेंड करते हैं, उसके बाद में जो समय मिलता है, आप ये इस तरह के हैंड्स ऑन स्किल कर सकते हैं. जब भी आप हैंड्स ऑन स्किल करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपको आगे आने वाला समय है, उसमें आपकी जो जॉब मार्केट है, वो आपके लिए खुली हुई होगी. वीडियो एडिट

0: पेंटिंग है, एनिमेशन है, स्टेनोग्राफी का कोर्स है, तो जितनी भी स्किल्स आप सोच सकते हैं कि मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए वो भी यहाँ पर है।
1: मैम, आकाशवाणी का FM रेनबो की जो रीच है वो पूरे विश्व में है, SOL की रीच कितनी है, और अगर कोई SOL के जरिए कोर्स करना चाहता है तो क्या सिर्फ वो इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है या विदेशों में भी लोग SOL के थ्रू कोर्सेज कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अभी जो SOL प्रेजेंट में था तो वो केवल दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर केवल दिल्ली में होता था, तो ज़्यादातर दिल्ली और NCR के बच्चे और कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पर पेपर देते थे। लेकिन अभी इसी साल से हमने कुछ लैंग्वेज कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं। ये लैंग्वेज कोर्सेज में फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, अरबिक, पर्शियन भी है, और साथ में हिंदी और संस्कृत भी है। तो जो लोग बाहर बैठे हैं, जो हिंदी और संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे जापानीज हिंदी संस्कृत सीखते हैं, जर्मन हिंदी संस्कृत सीखते हैं, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो ये सीखते हैं, तो वो एडमिशन इसमें ले सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत सारे इंडियंस भी हैं जिनको अरबिक और पर्शियन सीखना कंपलसरी सा हो जाता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, तो इसलिए वो भी इसमें एडमिशन लेके ऑनलाइन ये लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जो हमने इसी साल से शुरू किया है। और इसके साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पर भी वो होंगे वो सेंटर्स उसी कंट्री में उनके आसपास बनेंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए दिल्ली में आना पड़ेगा या इंडिया में आना पड़ेगा। तो हमारी जो फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री है उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है, फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास आके ऑनलाइन इस साल से लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं।
1: बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैम, और जिस तरह से SOL अब लगातार नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए कोर्सेज और नई इनोवेशंस के साथ एजुकेशन को इतना इजी बना रहा है, एक्सेसिबल बना रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
0: थैंक यू।
2: जी हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसी को कवर कर रहे हैं हम आज, हमारे आज के इस एडिशन में, अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। इसमें हम आज पहुंचे कहाँ पे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हमारे सहयोगी माला नेगी जो हैं, उन्होंने अभी की वहाँ की डायरेक्टर से बातचीत, और जैसा कि आपने सुना भाई, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब वैल्यू भी बराबर है, डिग्री भी बराबर मिलती है, देन वाई नॉट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। किसी ने मेरे को कहा था कि भाई लगातार जो है दुनिया ऑनलाइन आती जा रही है, हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग है, हाइब्रिड मोड ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो ऑनलाइन मोड जब इतना ज़्यादा जो है लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं, बीट मीटिंग्स हो गई आपकी या आपकी कोर्ट हियरिंग्स हो गई, तो ऐसे में जो डिस्टेंस वाली चीज़ है ना, जब वो ख़त्म करती जा रही है हमारी इंटरनेट की दुनिया, तो फिर पढ़ाई में ही इस डिस्टेंस को बनाकर क्यों रखना आखिर। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां पर पढ़ाई की बात है ना, वहां पर डिस्टेंस बहुत पहले ही कम हो गया था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना हुई थी 1962 में, और इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं आज हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का एक खास एडिशन। और आज के इस एडिशन में फीचर कर रहे हैं हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को। जी हाँ, किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो अपनी स्टेबिलिटी की जो मंजिल है उसे पाने के लिए जो आपकी अप्रोच है ना, उसको फ्लेक्सीबल रखना बहुत जरूरी होता है। और इसी फ्लेक्सीबल अप्रोच का एक नाम है जहां पर पढ़ाई की बात आती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची वहां पर और उन्होंने कैप्चर किया वहां की वाइब को। आइए जानते हैं अगली बातचीत उन्होंने किससे।
5: हाय, तो अभी मैं हूँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लॉन में और यहाँ पर मेरे साथ है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि AI इनको डराता है या इन्हें दोस्त की तरह लगता है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
6: हेलो एवरीवन, मैं महति हूँ एंड आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम SOL। सो आई बिलीव कि AI तो हेल्प ही कर रहा है। सो मैं एक स्किल कोर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में एंड आई बिलीव कि कोडिंग अगर आप करते हैं तो आपने सुना होगा कि लाइक बहुत एरर आते हैं एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उसकी वजह से कोडिंग करना। बट अभी AI के टाइम में ऐसा है कि आप कोड या तो आपके एरर आ रहे हैं आपके कोड में तो आपका जो AI असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, अदरवाइज आप पूरा कोड AI से भी लिखवा सकते हैं। एंड अगर आप लाइक वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आप बेसिक जो लेवल है वो आप AI से करवा सकते हैं एंड फर्दर चेंजेस जो आपको करने हैं वो आप AI से करवा सकते हैं।
5: आपसे जानना चाहेंगे कि AI आने वाले समय में आपकी जॉब ले सकता है या आप AI को उस लेवल पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप एक AI एक्सपर्ट बन सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कि मेजॉरिटी के लिए AI क्या एक वरदान है या फिर ये काफी नुकसानदेह है।
7: हेलो एवरीवन, दिस साइड येनी एंड आई हैव कंप्लीट आई एम एक्चुअली परसुइंग माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम SOL एंड आई थिंक कि AI जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो किसी की जॉब ले नहीं सकता, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे हमारे पास तब हम ये भी कहते थे कि कंप्यूटर्स आ गए हैं अब मशीन वर्क कम हो जाएगा, सारे वर्कर्स की जॉब चली जाएगी। बट विद कंप्यूटर्स हमने एक चेंज को अडाप्ट किया और उस चेंज को अडाप्ट करने के बाद हम आज बहुत अच्छे से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं विद इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अब AI आया है तो AI इज़ समथिंग टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे को चीज़ें अडाप्ट करके सीखने को मिलती हैं। हम एक ह्यूमन बिहेवियर इंटरेक्शन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अगर हम AI की बात करते हैं तो। सो यस, ये किसी की जॉब नहीं खाने वाला है ऑन अ मेजॉरिटी ग्राउंड टू।
5: ओके, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि AI की वजह से उनको जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि वो जिस लेवल का मीडियोकर काम करते हैं वो मशीन से अब हो जाता है, तो उनको सांत्वना देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
7: मैम उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ग्रोथ इज द की फॉर सक्सेसफुल इंसान, क्योंकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम नॉर्मल जिंदगी में जो रोज़ सुबह उठ के एक रूटीन वर्क में नहीं सीख पाते हैं। वी शुड लर्न अ बिट एवरी डे।
8: शोभित दिस साइड, परसिंग MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम AI वैसे तो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली रिसर्च वर्क भी कर रहा हूँ और बाकी सब काम भी कर रहा हूँ, बट AI कभी कभी मिसमैनेजमेंट भी कर देता है। जैसे कि अब मैंने रिसर्च पेपर लिखा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने खुद ने लिखी थी बट वो उसने बता दी कि AI से है तो इस वजह से मेरे को कई बार
5: तो आप खुद ही चोरी कर रहे थे ना? यानी
8: मैंने खुद लिखा है बट AI से जब उसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट वगैरह मंगाई तो फिर उसमें ये बताया है कि ये AI से कॉपीड है बट जबकि वो मैंने लिखा है।
5: ओ,
8: तो ये चक्कर हुआ। तो
5: आई होप आप सच कह रहे हो।
8: हाँ, मेरे पास रिपोर्ट है बकायदा।
5: हाँ,
8: तो उसकी वजह से फिर मेरे को लगा कि यार AI वैसे तो बेनिफिशियल है, रिसर्च में भी थोड़ा बहुत हेल्प करी और लिटरेचर रिव्यू में, बट जो की फाइंडिंग्स मैंने करी, वो उसने एआई का बताया, तो इस वजह से थोड़ा लगता है कि हाँ।
5: तो मैं चाहूंगी कि इस बारे में थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालिए, क्या जो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स लिखे थे और एआई से उन्होंने रिपोर्ट ली तो एआई ने कहा कि ये कॉपीड है, तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ फेस किया है कभी इस तरह की चीजें?
7: ऑब्वियसली यस मैम, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। अगर हम बेसिक से बात करते हैं तो एआई जो है वो अभी बेसिक मॉडल पे है, वो रन कर रहा है और वो बहुत ज्यादा लर्निंग फेज में है इस समय। तो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें, जो हम लिटरेचर वाइज अगर हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं और जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, हम उसी वे में लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने बहुत ज्यादा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल राइटिंग, तो हम यही ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज सिमिलैरिटी हो सकती है, बट एआई अगर हम जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो लिटरेचर रीडर्स होते हैं, रिसर्च पेपर सेलेक्टर्स होते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऐप यूज करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऐप राइट नाउ। वो एक ऐप यूज करते हैं जो इन सारे प्लैगरिज्म्स और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है अबव दैट एआई लेवल। तो हम अगर हम खुद अपनी रिसर्च को खुद ही चेक कर रहे हैं ना, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है कि हम सेम कर जाएं कि एआई और हम सेम बात कर रहे हैं कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं जो हायर अथॉरिटीज पर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीजें हो जाती है।
8: लेकिन कई बार वो ज्यादा मैच हो जाता है ना, तो फिर वो पब्लिश होने के बहुत दिक्कत देता है। अब जैसे स्कोपस वगैरह पे जो है वो 10% ही होता है एसेंशियली एआई, और उससे ऊपर आएगा तो फिर वो पब्लिश नहीं होते। तो इस वजह से मेरे को कई बार लगता है कि ये थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे वाले में 21% आया।
5: ओह गॉड, तो वो तो मतलब आप उस लेवल पर आ गए कि सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो।
8: हाँ, तो वही है कि मतलब की फाइंडिंग्स में इतना सारा ये आई था।
5: हाँ,
8: तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि उसे दोबारा रिटर्न करो और दोबारा पब्लिश करने के लिए।
5: जिसने एआई बनाया कहीं उसने आपका माइंड लेके एआई तो नहीं डिजाइन कर दिया?
8: दैट्स नॉट द रीजन। एक्चुअली क्या होता है, जो हम लिखते हैं और जो एआई डिटेक्ट करता है, वो लगभग नहीं, लगभग चार वर्ड अगर सेम होंगे तो फिर वो एआई दिखा देता है। अगर चार वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं ना, और वो मैंने लिखे हैं, या फिर उनका भी सेम है, तो फिर वो एआई दिखाएगा ही दिखाएगा।
5: सो बी केयरफुल, एआई आपके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। आप एआई को पढ़ा रहे हैं और इनकी बातों ने ये साबित कर दिया कि एआई आपसे ही सीख रहा है। थैंक यू सो मच। हाय, तो अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और ये है यहाँ का क्लासरूम। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच, आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज को मिस करते हैं, और वो कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये चूज किया कि वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ही अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे।
9: तो मेरा नाम राजगोपालन बालकृष्णन है और मैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस 2026 बैच का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसलिए चूज किया है क्योंकि पहली बात तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर से किया था, और एक मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा एकेडमिक्स में जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने रेगुलर से ऑलरेडी कर लिया था। मेरा ये सोचना था कि अब जब एक्सपीरियंस हमारा हो गया एक रेगुलर से, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैंने इवन डिस्टेंस

0: किया है तो मेरे पास एक टाइम भी होगा कि मैं बाकी चीज़ों में भी अपना ध्यान दूं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइड बाय साइड चले। और एक जो चीज़ जो मैंने डिफरेंस जो मैंने देखा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो SOL स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, वो ये है कि रेगुलर कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पे इंटरेक्टिव क्लब्स होते हैं और कुछ डेडिकेटेड क्लब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्किल कोर्सेस और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को भी हेल्प करते हैं, जो SOL में ये चीज़ नहीं है। SOL में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है।
1: हाय, मेरा नाम मोनालिसा है और मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्टूडेंट हूँ, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की 2026 बैच। और मैंने ग्रेजुएशन जो है रेगुलर कॉलेज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से करा था। और SOL में आने का मेरा एक पर्पस था, क्योंकि जब मैंने रेगुलर कॉलेज से करा तो मैंने देखा वहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी मैंडेटरी है। और SOL में एक सिमिलैरिटी है कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो हमारा प्रोग्राम का सिलेबस रहता है और जो भी फैसिलिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस को देती है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है SOL से हमें मिलती है। और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि हमें टाइम मिलता है हमारे करियर में फोकस करने के लिए, कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम बाकी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। जैसे अगर कोई CA करना चाहता है तो CA के साथ साथ वो अपने रेगुलर ग्रेजुएशन को भी मैनेज कर सकता है SOL से। और यहाँ के जो फैकल्टी है वो हमें काफ़ी गाइड करती है, रैदर कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं, बट स्टिल हमारे पास प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ये चीज़ अवेलेबल करवाते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। पूरी तरह से उनका गाइडेंस हमारे साथ रहता है। एक्चुअली रेगुलर कॉलेज को मैं मिस नहीं करती हूँ SOL में आने के बाद।
2: ओके,
1: ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेगुलर कॉलेज को मिस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि बाउंडेशंस हैं, कि मुझे डेली वहाँ पे अटेंडेंस प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि मैं फ्रीली अपने हिसाब से चल सकती हूँ, कि मैं अपने हिसाब से अपना मतलब फर्दर जो एजुकेशन है उसको भी मैं परस्यू कर सकती हूँ।
3: मेरा नाम स्वाति है, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2026 की बैच की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैंने जो ग्रेजुएशन करी है ना वो BCOM में करी है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, वो भी NCVAP था। लाइक उसमें क्या होता था ना, उसमें सैटरडे संडे कॉलेज जाना होता हमें। और फिर अब जब मैंने MBA स्टार्ट करी तो उसमें ये था ना कि उस टाइम मैं वर्किंग थी तो फिर मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने MBA चूज करी है। मैम रेगुलर कॉलेज को तो इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि उसमें वो जो होता था उसमें हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते थे, जैसे उसमें प्रोग्राम होते थे, स्किल्स कोर्स होते थे और भी क्लब वगैरह होते थे, उसमें हम अपने बिल्ड कर सकते थे करियर को। वो सब मिस करती हूँ, लाइक उसमें कॉलेज जाना 8 to 6 पूरा दिन, मतलब टाइम उस पर स्पेंड करना कॉलेज में, दोस्तों के साथ मिलना, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना, ये सब मिस करती हूँ मैं रेगुलर अगर मैं होती तो।
4: हाय, मेरा नाम विद्या अरोड़ा है एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से की थी, सेम फ्रॉम NCVAP। एंड अभी जो है मैंने MBA इन फाइनेंस में यहाँ से कर रही हूँ DOSOL से। सो बेसिकली मेरा SOL चूज करने का मोटिव एक ही था क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बिकॉज मेरे शूट्स वगैरह होते हैं तो मुझे वो भी सब मैनेज करना होता था, प्लस मैं एंटरप्रेन्योर हूँ जिसमें मेरी अपनी लाइब्रेरी है, मुझे वो भी मैनेज करनी होती थी। एंड जब मैं यहाँ पे हूँ और लाइक थर्ड सेमेस्टर में जब यहाँ पे इंटर्नशिप चाहिए थी तो हमने इंटर्नशिप करी एंड उसमें मेरी बहुत हेल्प हुई SOL में, कि अगर मैं वहाँ रेगुलर होती या रेगुलर कॉलेज से कर रही होती तो मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती। जैसे मैं पहले अगर हम कुछ भी रेगुलर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, अब वो अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको दूसरी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो मैं वो चीज़ें सैक्रीफाइस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने SOL चूज किया। एंड बट मैं SOL में आके बहुत खुश हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सन सर, अभिलाषा मैम, अशोक सर, तो वो बहुत लाइक जितना अच्छा वो पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर में भी शायद मैं उतना अच्छा पढ़ पाती। अगर मैंने संडे संडे क्लासेस ले रही हूँ तब भी मैं इतना अच्छा गेन कर पा रही हूँ कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो रही कि ये क्या है या वो क्या है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने होते हैं, वो चीजें भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर अप होती हैं। दूसरी चीज, अगर मैं रेगुलर में होती तो रेगुलर में बस मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे रेगुलर जाती और वहाँ पे कुछ क्लब्स होते हैं वो ज्वाइन करती, वहाँ की मेंबर बनती, वहाँ पे कुछ ड्रामा शोज होते हैं वहाँ पे भी मैं जा सकती थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं थोड़ा मिस करती हूँ। और वहाँ पे स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे मिलती, वो मुझे बाहर लेकर जाते, वहाँ पे इंटर्नशिप्स कराते, वहाँ की प्रैक्टिकलिटी मैं सीखती, तो वो चीज़ें मैं थोड़ी मिस करती हूँ। बट स्टिल मैं DOSL में भी बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है, वो सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाने के मोटिव से ही नहीं आते, वो एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं, तो जो आपका आगे आने वाली लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प मिलती है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। वहां के स्टूडेंट्स की इतनी सारी बातचीत अभी आपने सुनी,

कहीं आपको लगा कि इतने हफ्तों से जो हम यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं तो किसी भी तरह से स्टूडेंट्स जो है ना सब जगह एक ही तरीके के हैं, स्टूडेंट्स जो हैं सब जगह अपनी पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कर लेना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को पाने के उनके सबके अपने अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं और इन्हीं में से एक तरीका है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ी हुई है और वो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसे कवर कर रहे हैं हम आज के हमारे इस एडिशन में। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहां के स्टूडेंट से की बहुत सारी बातचीत, लेकिन अभी जरा ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि थोड़ी बातचीत अभी बाकी है। आइए जानते हैं कि अगली बातचीत उन्होंने किससे की।
4: हाय, तो अभी मैं हूँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है इनके साथ अब कुछ मजेदार इंटरेक्शन होने वाली है। छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम इनके साथ खेलेंगे, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं।
5: हाय, मेरा नाम हिमांशु, मैंने अभी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बीकॉम में एडमिशन लिया है।
6: हेलो, मेरा नाम दीक्षा है और मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ।
4: ओके।
7: हेलो, मेरा नाम लक्की शर्मा है, मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टूडेंट हूँ बीकॉम से।
4: तो अब आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। करेला या घिया?
5: घिया।
4: क्यों?
5: क्योंकि करेला कड़वा होता है।
4: अच्छा, और घिया मीठा होता है?
5: घिया थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, उस खाने में दिक्कत नहीं होती है।
6: करेला, बिकॉज वो मुझे टेस्टी लगता है अगर उसको बहुत अच्छे से बनाया जाए तो।
4: एक और एक दो या ग्यारह?
6: अगर आप बता रहे तो शायद ग्यारह, अगर मैं बोलूँ तो शायद दो, अगर प्लस करके बताऊँ तो।
4: अच्छा, मतलब आप गणित की अच्छी स्टूडेंट रही हो?
6: नहीं।
4: अच्छा,
6: मुझे लगा आपने एज अ उस भी यहाँ पे पूछा, एक एक दो ग्यारह या फिर वन वन प्लस टू वन इस टाइप का कुछ।
4: अच्छा, मतलब इन एनी केस इनको ये बताना है कि आई एम करेक्ट। ओके, आप बताएं।
5: एक एक दो भी होता है, एक एक ग्यारह भी होता है। वैसे अगर एक एक अलग से देखें तो 11 हो जाएगा और एक एक प्लस करें तो 2 हो जाएगा।
4: अच्छा, ओके। 10 लाख या सोशल मीडिया, क्या चुनोगे?
7: 10 लाख।
5: दोनों ही नहीं?
4: दोनों ही नहीं, तो नया क्वेश्चन कहाँ से लाऊं दोस्त? फिर भी मतलब कुछ भी नहीं चुन रहे हो आप? आपके पास 10 की जगह 20 लाख और सोशल मीडिया की जगह और भी कोई बड़ी चीज है?
5: नहीं, अलग ही हो जाएगा फिर। अगर पैसा चुनेंगे तो सब बोलेंगे कि पैसा चुन रहा है, ये लालच हो।
4: अच्छा,
5: अलग हो जाएगा।
4: अरे, हम जमाने की बात सुनते हैं।
6: सोशल मीडिया एंड लाइफ, अगर तीसरा अगर आप ऑप्शन देते तो ऑफकोर्स मैं लाइब्रेरी चूज करती, क्योंकि वहाँ पे हम बैठ कर काफी सारा अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा पीस मिलता है। ठीक है, एंड फिक्शनल चीजें भी हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। बट इफ केस है तो सोशल मीडिया को हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं पैसे के बिहाफ पे।
4: ओके, मतलब 10 लाख या सोशल मीडिया की जगह
6: सोशल मीडिया?
4: सोशल मीडिया। ओके, स्किल कोर्स या ऑनर्स कोर्स?
6: स्किल कोर्स।
4: ओके,
5: ऑनर्स कोर्स।
4: क्यों?
5: क्योंकि उसमें हम स्पेशल एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें नॉलेज की ज़्यादा पकड़ हो जाती है।
4: ओके,
7: स्किल कोर्स।
4: क्यों?
7: स्किल कोर्स इसलिए ताकि हम कोई बढ़िया स्किल सीख पाए।
4: ग्रेड्स या परसेंटेज?
7: ग्रेड्स।
5: परसेंटेज में पता चल जाता है कि हमारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब पता चल जाता है।
4: ओके,
6: ग्रेडिंग सिस्टम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज इसमें एज अ ओवरऑल अगर देखा जाए किसी बच्चे के 60% आ रहे हैं तो वो या 70 आ रहे हैं तो वो ए प्लस में या फिर ए ग्रेड में काउंट हो जाता है, तो इससे में ये भी काफ़ी बेटर है।
4: पापा की परी या मम्मी का कछुआ?
6: हाँ, पापा की परी बेटर है, वो ऑलवेज हमारी साइड लेते हैं, दैट्स व्हाई।
4: ओके,
5: मम्मी का कछुआ सही है, पापा की परियां तो अलग ही जाती हैं।
7: मम्मी का कछुआ।
4: मम्मी का कछुआ, पापा की परी क्यों नहीं?
7: पापा थोड़े डेंजर है मेरे।
4: पापा डेंजर है। जॉब या स्टार्टअप?
5: स्टार्टअप। अभी मैं वैसे तो मैं बीकॉम में एडमिशन नहीं हूँ, लेकिन वैसे मेरा मन था कि मैं LLB कर लूँ, और मेरे पापा ऑफकोर्स वैसे लॉयर हैं, तो मैं सोच रहा था उस फील्ड में जाने की, लेकिन आ गया इसमें।
6: जॉब।
4: क्यों?
6: जॉब में मुझे एज अ स्टेबिलिटी दिखी, स्टार्टअप में एज अ प्रोबेबिलिटी में चलता है। अगर हम किसी जॉब के लिए ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वहाँ अगर फिक्स स्टेबिलिटी हो जाती है तो आप फाइनेंशियली प्रॉपर टेंशन फ्री हो जाते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा स्टार्टिंग में रिस्क होता है, पर जॉब अगर आप किसी अच्छी जगह कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी।
4: ओके, भारत या विदेश?
6: भारत।
5: भारत।
8: वाह
7: भारत
8: भारत। तो चलो इसी बात पे एक नारा लगाते हैं, भारत माता की
9: जय,
8: भारत माता की
7: जय,
8: भारत माता की
9: जय।
8: क्या बात है। चलो इसके बाद अगला सवाल, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी? अगर भारत माता की जय बोल रहे हो तो क्या चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पक्का? क्या बात है। आपको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी?
5: रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए।
8: ओके
6: रिस्पॉन्सिबिलिटी।
8: ओके आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, पैसा, फ्रीडम, फेम या हैप्पीनेस?
6: हैप्पीनेस।
5: हैप्पीनेस।
8: पैसा नहीं?
5: पैसा रहेगा तो बिना हैप्पीनेस रहेगा।
8: अच्छा
7: फ्रीडम भी और हैप्पीनेस
8: भी। ओके गुड, थैंक यू सो मच।
3: ख्वाब अलग हैं, रास्ते अलग हैं, ज़िंदगी के मायने अलग हैं, फिलॉसफी भी जो है ना इन सब की फ़र्क फ़र्क है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद चाहे इनके सपने अलग हों चाहे ज़िंदगी के रास्ते अलग हों, कॉमन ग्राउंड है एक और वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जगह जहाँ पे इन सपनों को पंख मिलते हैं, इन हौसलों को उड़ान मिलती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग आज का एडिशन था बस यहीं तक। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और वहां से उन्होंने पहुंचाई ये सारी बातचीत आप तक और उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहा। फिलहाल यहाँ पे बातचीत को, इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना होगा, समय इजाजत नहीं देता है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अगले हफ्ते अल्फाजन कैंपस कॉलिंग एक और नए कोने को रोशन करेगा यूनिवर्सिटी का आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, प्रस्तुत है हिंदी में मुख्य समाचार आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4th संस्करण को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुधार ने 6 विकेट लिए और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आइए आइए, शाम हो गई है, दरवाजे पर नजर थम सी गई है। भाई आने वाले तो आ ही जाएंगे, हम तो आ गए हैं। हम आ गए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम लेकर सिटी लाइट्स। मैं हूँ मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूँ अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन।

अरे अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ चल दिए, बिल्कुल तैयार श्यार होकर। ओ तो आप जा रहे हैं अनकन्फाइंड एग्जीबिशन देखने, जो लगी है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेन आर्ट गैलरी में। क्या बात है दोस्तों, बता दूं ये एग्जीबिशन 16 तारीख को लगी थी और 29 अगस्त तक चलने वाली है। कलेक्टिव इंडिपेंडेंट 2026 बियॉन्ड द विजिबल, ये एक पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है जो कि विजुअल आर्ट्स गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर के कल से शुरू होगी 20 से 25 अगस्त तक। देखने का समय वही सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक। और आज स्टाइन ऑडिटोरियम में 7 बजे एक बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है, एक भरतनाट्यम की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है और इस कार्यक्रम का नाम है कबीरा, सरगुन से निर्गुन, कबीरा इन मोशन। नाम सुन के इतना अच्छा लगा ना, तो कार्यक्रम भी बहुत खूबसूरत होगा। और एक ग्रुप एग्जीबिशन ऑफ ड्राइंग्स, प्रिंट्स, पेंटिंग्स एंड न्यू मीडिया, ये लगी है आर्ट गैलरी में और देखने का समय है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। एग्जीबिशन आज से शुरू हुई है और चलने वाली है 29 अगस्त तक। अनबाउंड त्रिवेणी कला गैलरी में ये एग्जीबिशन लगी है, सोलो एग्जीबिशन ऑफ स्कल्पचर्स है, आज से शुरू हुई है, 25 अगस्त तक चलने वाली है और इसे देखने का समय है सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

ये वेले वेले बस अब सिर्फ गानों में ही इस्तेमाल होगा क्योंकि बच्चों के वेले वाले दिन अब गए. बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त ही है लास्ट डेट फॉर द एडमिशन फॉर द रेगुलर कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27. जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं रेगुलर प्रोग्राम्स की. तो दोस्तों ध्यान रखिए, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, 5 साल वाले इंटीग्रेटेड लॉ, बीटेक, एमटेक, जीएटी, बी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन और 1 साल वाला पीजी कोर्स इसमें शामिल है. वैसे भी आपको बार बार जो भी स्टूडेंट्स अभी इन सब सेक्शंस या इन कैटेगरीज में आते हैं, जो डीयू की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर रेगुलर अपनी नज़र बनाए रखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट डेट अपडेट मिस ना हो. और तो और दोस्तों, DSEU में भी यानी कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो सीट्स हैं उनको खाली जो खाली सीट्स हैं उनको भरने के लिए वॉक इन एडमिशन प्रोसेस शुरू किया गया है. जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो द्वारका सेक्टर 9 में जो DSEU का मेन सेंटर है वहाँ पहुँच कर अपना रजिस्ट्रेशन, सीट और अपनी फीस को जमा कर सकते हैं. और तो और, IPU के MBBS प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहला काउंसलिंग सेशन 21 अगस्त को होगा और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज आप जाएं www.ipu.ac.in, वहां जाकर आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी. तो बस अब समय है कॉलेज की लाइफ से रूबरू होने का, पढ़ाई से रूबरू होने का, जो सपने करियर के लिए देखे हैं उन्हें पूरा करने का. तो हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट.

आज का दिन वाकई कुछ खास लोगों पर रोशनी डालने वाला दिन है। आज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस। उन साहसी समर्पित लोगों को डेडिकेटेड है जो जोखिम में अपनी जान डालकर दूसरों की मदद करते हैं और मानवता की सेवा करते हैं, खास तौर पर युद्ध, आपदाओं और संकटों के बीच। जी दोस्तों, सहायता कर्मियों के योगदान को मान्यता देना दुनिया भर में मानवीय संकटों से जूझ रहे लाखों सफरर्स पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, एकजुटता प्रकट करना भी इस दिन का उद्देश्य है। फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति आवाज उठाना भी, शहीद मानवतावादियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना भी आज के दिन का उद्देश्य है। जो लोग अपनी जान गंवाते हैं दूसरों की सेवा, दूसरों का ध्यान, दूसरों की मदद करने में, वो एक बहुत बड़ी बात हमें एहसास करा जाते हैं कि हम मनुष्य हैं। जी हाँ, मनुष्य होने का एहसास कराने के साथ हमारी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए भी वो प्रेरित करते हैं। आज जरूरी है कि मानवता को केवल एक दिवस तक ही सीमित ना रखा जाए, क्योंकि विश्व मानवतावादी दिवस हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना है। ज्ञान, शक्ति और संपत्ति तभी सार्थक है जब उनका उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में किया जाए। जी दोस्तों, हम कितनी भी पढ़ाई पढ़ लें, कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, अगर हमें हमारे मनुष्य होने के इस पक्ष का ध्यान नहीं है तो फिर कुछ भी जीवन में सार्थक नहीं है, और अगर है तो फिर वो बधाई के पात्र हैं। तो हम आज उन सभी को याद करते हैं, उनके सामने नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान दिया, जिन्होंने बलिदान दिया, और उन सब की सराहना करते हैं जो इस तरह के कार्यों में जुटे हुए हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम रेनबो। आपके साथ हूं मैं मीना जैन और मैं हूं अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और इस सिलसिले में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में आप धीरे धीरे इस पूरे वार्तालाप में जानेंगे। हेलो हेलो हेलो अमित जी, हेलो। ओह, लगता है किसी कारणवश हमारा उनसे एक संपर्क टूट गया है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। जीवन में ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट तो आते रहते हैं और शायद जिंदगी का मज़ा इन्हीं से है

हेलो हेलो हेलो हेलो अमित जी, अमित जी इस वक्त मुंबई में सड़क पर कहीं शूट कर रहे हैं और वो शूट करते करते इतना खो जाते हैं कि वो फिर भूल गए कि वो इस वक्त आकाशवाणी पे जुड़े हैं। हेलो हेलो अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए हम एक बार और कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी। पर दोस्तों, आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। फोटोग्राफ्स, क्या बात याद आती है जब आप फोटोग्राफ्स के बारे में सोचते हैं। आजकल फॉर सम रीज़न, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हम और आप सभी बहुत कमाल के फोटोग्राफर्स बन गए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिससे हम जब चाहे जहाँ चाहें फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। हेलो हेलो, ओके, कैसा लगता है जब हम वापस मुड़कर इन फोटोग्राफ्स को देखते हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं जो हम जी चुके हैं, एक बार वापस उस दुनिया में खो जाते हैं और एक सुहानी सी मुस्कान चेहरे पर खिल जाती है। पर कभी आपने सोचा है कि एल्बम्स को और जो हमारे फोन पर एल्बम है उनमें क्या फर्क है, या आपकी अपनी पर्सनल क्या चॉइस है? मुझे आजकल फोन पे एल्बम ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि फिर मैं कभी भी कहीं भी बैठकर इन सुहाने पलों का मजा ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी भी फोटो एल्बम्स ही पसंद है। बट एनीवेज, ये एक ऐसा तोहफा हमें मिला है फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया को। जी दोस्तों, 1837 में उन्होंने, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने ये तोहफा पूरे विश्व को दिया था जब पहली बार दो फोटोग्राफर्स ने एक्चुअल पहली फोटोग्राफ को मेटल प्लेट पे उतार के और उसको परमानेंट एक कागज़ के रूप में प्रस्तुत किया था। तो वेल, दैट इज़ वंडरफुल।

एंड यस, अब हमें इसकी लत लग चुकी है और अब हम जहाँ चाहे जब चाहे फोटोग्राफ्स खींच के उन मोमेंट्स को, उन पलों को संजो कर रख सकते हैं।

एक और चीज की लत लगी है हमें, बता दो आपको दोस्तों, आज ही के दिन 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार हमारे और आपके फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ने जगह बनाई थी। 1920 अगस्त को ये खेला गया था, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मुकाबला हुआ।

हुआ था। दो दिन ये मैच चला था जैसे कि मैंने आपको बताया, और ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को 158 रन से बनाया था। और तो और दोनों कैप्टन्स ने अग्री किया इस बात को कि 11 के बजाय 12-12 खिलाड़ियों के साथ ये मैच खेला जाएगा। इस मैच में 250 बने थे, दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन के जो प्लेयर्स उन्होंने बनाए थे उसमें से एक थे उनके कैप्टन चार्ल्स बीचक्राफ्ट और दूसरे थे अल्फ्रेड बावरमैन। तो दोस्तों है ना इस चीज की भी तो लत क्रिकेट की, पता नहीं ऐसा लगता है कौन सा नाता है हमारा इस खेल के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मिल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम सिटी लाइट्स में हूँ मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूँ अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। दोस्तों, अरुणाचल में अदम्य साहस की मिसाल कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें, बने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिनका जन्म आज ही की तारीख, आज ही के दिन 1941 में आज के वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। चार गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए और 1962 के युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के नूरनांग मोर्चे पर वो तैनात थे। 17 नवंबर को एक हमले के समय उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया। युद्ध में वीर गति पाने वाले रावत को उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें जसवंत बाबा के नाम से भी याद किया जाता है। सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। शहीदों को नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

दोस्तों, वक्त बदलता है, हमारे शोज बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो है आपकी और हमारी दोस्ती। और शायद इसीलिए लाखों की भीड़ में पहचान अलग है मेरी, क्योंकि मेरी ताकत तो सिर्फ आप और आपकी दोस्ती। इसी के साथ मैं मीना जैन लेती हूँ आप सभी से इजाजत, आशा के साथ कि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई। और वैसे आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर आपकी फेवरेट भगवती आ गई है। जी हाँ, तैयार हो जाइए मैसेज मसाला मिक्स के लिए।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वे देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4th संस्करण को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने ये बात कही। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे इस घंटे के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूं भगवती।

कहते हैं तस्वीरें बोलती नहीं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं ना जिन्हें देखते ही यादों का पूरा पिटारा खुल जाता है। कोई पुरानी स्कूल फोटोग्राफ जिसमें दोस्त आज भी वैसे ही मुस्कुराते नजर आते हैं, कोई फैमिली पिक्चर जिसमें अब कुछ चेहरे हमारे बीच नहीं है, या फिर कोई ऐसी तस्वीर जिसे देखकर बस हंसी आ जाती है। तो आज जो है ना मैसेज मसाला मिक्स में बात करते हैं हम तस्वीरों की, उन तस्वीरों की जो सिर्फ कैमरा में नहीं हमारे दिल में भी कैद हैं। आपके फ़ोन गैलरी या एल्बम में किसी कोई ऐसी तस्वीर हो तो उसके बारे में बताइए हमें, और उसके साथ जुड़ी हुई कहानी बताइए। कोई ऐसी तस्वीर जिसे आप कभी डिलीट नहीं कर सकते और उस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 है नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए। 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 इज द नंबर एंड भगवती इज वेटिंग फॉर योर मैसेजेस।

नेक्स्ट मैसेज जो हमारे पास है वो कह रहे हैं, कौन है, सौरभ अनेजा गाजियाबाद से कहते हैं, एज यूजुअल उनका पहला मैसेज आता है, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक।

0: गुड इवनिंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में. और आज हम बात कर रहे हैं उन फोटोग्राफ्स की जो आपकी यादों में जो है आपकी यादों को एक प्रॉम्प्ट सा देती हैं जब आप उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं और कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है. तो ऐसी कोई फोटोग्राफ और उसके साथ जुड़ी हुई कोई कहानी शेयर कीजिए हमारे साथ.
1: मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो.
0: बिल्कुल ऐसी वाली फोटो की बात भी आप कर सकते हैं.

प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से कहते हैं कि कोई रेडियो ऐप की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके ज़रिए हम आपको सुन रहे हैं जी। बिल्कुल जी, कैसे भी सुनिए, चाहे किसी ऐप के ज़रिए सुनिए, जिस भी जुगाड़ से आप सुनिए हमें, लेकिन सुनिए और अपने मैसेज भेजते रहिए। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, शुभ संध्या। शुभ संध्या आपको भी। कहते हैं कि मेरी और मेरी मम्मी और पिताजी के साथ जो है एक फ़ोटो है, एक जब ये छोटे थे तब की फोटो है, कह रहे हैं। और कहते हैं कि उसमें मुझे लगा कि शायद मुझे डॉक्टर से इंजेक्शन लगेगा, तो मैं डर के एकदम से गाड़ी की बाजू को जो है वैसे ही चिपक कर बैठ गया था, और वो फोटो जो है अभी भी बहुत प्यारी लगती है। अनुप कुमार झारखंड से कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, शायद उनकी फोटोग्राफ की बात कर रहे हो, मान लेते हैं जी। बताइए आगे कि क्या कहना चाह रहे थे। अब एक मैसेज और कर डालिए और उसमें ये स्पष्ट कर डालिए। किशन मंजनी नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कहते हैं गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में जी। और कहते हैं कैसे हैं आप, बिल्कुल मस्त हूँ एज यूजुअल। तो आज से 40 साल पहले हमने एक शादी में तस्वीर अपने दोस्तों के साथ खिंचवाई थी, और आज उस तस्वीर को देखकर बहुत हंसी आती है, क्योंकि आज उसमें अपने आप को भी पहचानना मुश्किल हो गया था। मतलब कैसे लग रहे हैं आप, उसमें पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या अब ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जनरली होता है जब अपनी पुरानी फोटोग्राफ देखते हैं ना, तो फिर उसे देखकर, पुरानी तस्वीर को देखकर कई बार लगता है ना कि मतलब हो सकता है कुछ फोटोज़ को देखकर लगता हो कि भाई हम पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब कैसे हो गए, या फिर कई बार लगता है कि पहले हम कैसे लगते थे एकदम से दुबले पतले से और इस तरह से, और अब हम कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन है ना, तो वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। कहते हैं 19 अगस्त 2026 वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। बिल्कुल जी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज तस्वीरों की। कहते हैं मेरे पास मेरे बड़ी बहन की शादी की तस्वीर है, उस तस्वीर में मेरे परिवार के सभी लोग हैं। मेरी बहन की शादी 30 साल पहले 1996 में हुई थी, और वो तस्वीर मेरे पास आज भी है।

कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा कहते हैं कि इनके पास 1990 के कुछ फोटो एल्बम्स हैं और जब भी दिल होता है तो उन्हें ये देख लेते हैं। मतलब फोटो एल्बम्स का, फोटोज का यही तो मतलब तस्वीरों का फ़ायदा होता है ना, जब दिल चाहा उन्हें देख लिया और पुरानी यादें जो है फिर से रिफ्रेश हो गई। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती हैं, मैं फ्री टिकट से स्विट्ज़रलैंड गई थी, मैंने अपने कैमरा से बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए थे जो आज भी जो है मेरी खूबसूरत यादों को ताज़ा कर देती हैं, मेरे पास पूरी एल्बम है। स्विट्ज़रलैंड है ही इतनी खूबसूरत जगह ना कि वहाँ पर जो है मतलब जगह इतनी सुंदर है तो उसमें जो तस्वीरें खींची गई हो ना वो अपने आप सुंदर लगती हैं, सुंदर आती हैं और ऐसी सुंदर जगह की यादों के साथ जो है समय अच्छा गुजर सकता है। वंदना संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश से कहती हैं कि तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि दिल के किसी संदूक में बंद खजाना हो, जैसे पहले एल्बम हुआ करते थे आज फ़ोन की गैलरीज हैं। तो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे की बचपन की सारी तस्वीरें जो है मेरे लिए बहुत ही ख़ास हैं और ऐसा लगता ही नहीं जैसे ये समय बीत चुका है, ऐसा लगता है जैसे अभी उन लम्हों में थोड़ा सा और रुकना था, उन एहसासों को फिर से जीना था। बहुत खूब, मतलब बहुत प्यारी तरह से जो है इन्होंने अपनी बात को एक्सप्रेस किया है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। राकेश बोरा बुरारी दिल्ली से कहते हैं कि मेरे पापा जी की लास्ट टाइम की फ़ोटो है जिसे देखते ही पापा जी बहुत याद आ जाते हैं, बस उस फोटो को देखने की हिम्मत नहीं होती। होता है ऐसा, जो लोग हमारे साथ नहीं होते, हमारे बीच नहीं होते, उन्हें हम वैसे भी याद करते हैं, दिल में बसे रहते हैं और उनकी जो फ़ोटोज़ होती हैं जब उनको देखते हैं तो एक कसक सी होती है, आप मिस करते हैं उन्हें। मनीष इदरीसी बिलासपुर रामपुर से कहते हैं, बहुत सी याद ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं जी, लेकिन आप किस याद की बात कर रहे हैं वो भी बताइए।

डियर, पहले की फोटोज तो काफ़ी हैं, बट एक ग्रुप फोटो मेरी एनसीसी ग्रुप की है जिसमें मैं सार्जेंट थी, तो सुबह शाम लेफ्ट राइट कहकर परेड करवाती थी। वो एनसीसी वाली मैडम भी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो वो समय ही सुहाना था। ये फ़ोटो मैंने अपने रूम में सामने रखी हुई है, तो वो समय बहुत याद आता है। यही तो खासियत होती है ना फोटोज़ की, उन्हें देखकर जो समय जा चुका है, उस समय की कुछ बातें दोबारा जो है मतलब मस्तिष्क के सामने, मतलब कुछ चलचित्र की जो चित्र होते हैं, चलचित्र के जो चित्र होते हैं, उनकी तरह फिर से गुजरने लगती हैं। विजेंद्र घटोल अकोला से कहते हैं, अकोला महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी है और कह रहे हैं शादी में बहुत निकाले थे फ़ोटो, अभी जो है सेल्फीज निकलती हैं, और कहते हैं मेरी शादी की फ़ोटो आज मेरे पास है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी कहते हैं कि 1992 की बात है, हम कॉलेज से पिकनिक पर गए थे, तब एक फ़ोटो खींची थी ग्रुप में, उस समय इतने दुबले पतले थे कि उस फोटो को आज देखकर ऐसे लगता है जैसे हम कुपोषण का शिकार रहे होंगे। ये हैं संजय कुमार इंदौर एमपी से, और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, कह रहे हैं मुझे इससे बहुत प्यार था, इसने मुझे धोखा दे दिया। हमारी शादी भी होने वाली थी, 5 दिन पहले मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ रहती है, और बहुत बुरा लगता है फ़ोटो को देखकर, अब बस याद आती है कि उसने ऐसा किया। सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से कहते हैं कि दोस्त, आपने पिक्स की बात करके मेरी यादों का पिटारा ही खोल दिया। सबसे पहले तो मेरी फियांसी की याद आई जो फिलीपींस में रहती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद तो पिक्स की लिस्ट और उनसे जुड़ी यादें इतनी हैं कि मैं घंटों उन पर बात कर सकता हूँ।

दीपा बिजनौर से कह रही हैं कि शादी से पहले का एक फ़ोटो है इनका, जो कि इन्होंने कभी खिंचवाया था और छोटे फ़ोन में जो चाइना का फ़ोन आता था उस वक्त उसकी जो है मेमोरी कार्ड में से वो फ़ोटो निकलवाया हमने। और शादी के बाद कहते हैं कि इनके पति सोनू जो है आज भी हमेशा अपने पर्स में रखते हैं उसे। तो कहते हैं कि मैं पूछती हूँ, तुमने आज तक ये फ़ोटो बड़ा संभाल कर रखा है? तो उनका जवाब यही होता है कि यही प्यार की पहचान है। बिल्कुल जी। ये हैं कौन, गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली। कहते हैं कि हमने 1975 में एक मित्र के साथ फ़ोटो खिंचवाया था और उस फ़ोटो को देखकर जो है उस फ़ोटो में लोग मुझे पहचान नहीं पाते। अच्छा जी, इतना बदल गए आप। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, मैं जब बहुत छोटा था, शायद साल दो साल का होगा, तब की एक फ़ोटो है जिसमें कॉलोनी के दो भैया को जो है मेरे साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, तो वो मम्मी से जो है मेरी मम्मी से बहुत ज़िद करके मुझे स्टूडियो लेकर गए थे। उनमें उसमें जो है मैं उनकी गोदी में हूँ, एक की गोदी में हूँ, और उसमें मेरा बड़ा भाई भी है। उस फ़ोटो में मैं इतना गोरा दिखाई देता हूँ कि जब भी कोई देखता है तो यही बोलता है कि ज़रूर इसको ढेर सारा पाउडर लगाया होगा तभी इतना सुंदर गोरा दिखाई दे रहा है। महेंद्र सिंह जॉर्जिया मेरठ से कहते हैं, अपनी एल्बम से मैं अपने मित्र दिनेश और राजेश की फ़ोटो कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बैंक के एग्ज़ाम की जो है तैयारी करनी सिखाई। मेरा सिलेक्शन बैंक में हुआ, दुर्भाग्य से उन दोनों का नहीं हो सका। मैं उच्च पद से रिटायर हुआ और उनका साथ जो है मुझे बहुत कुछ दे गया, जीवन की दिशा ही बदल गई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मतलब यही जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनकी पहचान होती है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे हमें बहुत जगहों पर जो है सपोर्ट मिलता है। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं भगवती, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ उन तस्वीरों की जिन्हें देखकर आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो यादें जो एक खुशी दे जाती हैं कभी, और कुछ वो यादें जो एक कसक सी छोड़ जाती हैं।

0: दानिश कतौली से कह रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, गाने अच्छे लग रहे हैं, सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें और भी अच्छा लगेगा अगर जो हमने टॉपिक दिया है उसके ऊपर जो है आप बात करेंगे, बताएंगे हमें अपनी किसी तस्वीर के बारे में जिससे जुड़ी है आपकी कोई ख़ास याद, जिसे देखकर कुछ खास कोई ख़ास बात आपके दिमाग में आ जाती है। मनीष गौर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से कहते हैं कि जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और रेडियो पर जब हम रेडियो अनाउंसमेंट सुनते थे, किसी भी अनाउंसर के बोल या फ़ोन इन प्रोग्राम में जो है उनसे श्रोताओं की बातचीत सुनते थे, फरमाइश के शो में उनसे उनकी बातचीत सुनते थे, तो हम ये सोचते थे कि काश कि ये कैसे होंगे, फिर हम मन में उनका एक चित्र बना लेते थे कि नहीं ये ऐसे होंगे। तो आज ऐसा लगता है जब हम उन्हें देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो हमने सोचा था उनके बारे में वैसा कुछ होता नहीं है, और जैसा हम तस्वीर बनाकर रखते हैं किसी के भी वैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल हो कैसे सकता है, आप सिर्फ आवाज़ सुनते हैं और उसके ज़रिए आप डिसाइड कर लेते हैं कि जिनकी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो पर्सन कैसे दिखते होंगे, अब कैसे मतलब किसी की आवाज़ सुनकर उसकी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है, कैसे सही हो सकती है वो तस्वीर, बताइए आप हमें। पर उस समय का भी ना अपना एक मज़ा होता था कि आप केवल आवाज़ के माध्यम से किसी पर्सन की, जो भी अनाउंसर होते थे, जो भी रेडियो पर जिनकी आवाज़ आप सुनते थे, उनके बारे में जो है एक उनका एक अलग तरह का एक स्केच आपके दिमाग में बन जाता था, तो उसका भी जो है एक अपना अलग मज़ा था। नहीं लूणाराम नागौर राजस्थान से कहते हैं, मैं स्कूल की ग्रुप फ़ोटो तो सबके लिए ख़ास होती है जिसमें सभी दोस्तों की यादें जुड़ी रहती हैं, पर मैं अपने फेवरेट टीचर के साथ था की जो मेरी तस्वीर है उसे देखता हूँ तो उनकी सब बातें जो उन्होंने हमें सिखाई हैं एक वीडियो की तरह जो है आँखों के सामने चलने लगती हैं। ये हैं रजनी शर्मा बागपत से, कहती हैं कि 21 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तब मैं बहुत छोटी थी और उसी शादी की फ़ोटो जो है मेरी भांजी जब देखती है उस पर मुझे, तो आगे जो उन्होंने लिखा है कुछ स्पष्ट नहीं है, जो मुझे समझ में आ रहा है शायद कहना चाह रही हैं कि ये पहले के जैसे बिल्कुल नहीं दिखती हैं, तो वो कहती हैं कि अभी आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। होता है, समय बदलता है, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी भी बदलती है।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद। NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

नीता अमरावती से कहती हैं कि हम 5 साल पहले सिक्किम गए थे पूरी फैमिली के साथ घूमने, और वहाँ का नज़ारा देख के जो देखा जो हमने, उसे तो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। वहाँ से कंचनजंगा पर्वत दिखता है और सुबह और शाम की बहुत जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं, और दोबारा भी जाने का मन होता है। तो वहाँ की जो कुछ तस्वीरें होंगी आपके पास, जब आप उन्हें देखते होंगे, तो ज़रूर वहाँ की यादें जो है दोबारा मन में ताज़ा हो जाती होंगी।

चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से कहते हैं, 26 साल पहले शादी की फोटो देखकर और आज मेरी तोंद देख के हंसी आ जाती है। पहले मैं कितना हैंडसम था, आज तोंद और उजड़े बाल है, क्या कर सकते हैं, जो है परिवर्तनी नियम है संसार का। तो उसी हिसाब से जो है सब बदलते रहते हैं। भुवनेश हैं अशोक विहार दिल्ली से, कहते हैं कि मेरे पास एक जो है तस्वीर है इनके पास, इनके दिल में जो है, और उससे जो है उस दिन की यादें इनकी ताज़ा हो जाती हैं जब इनको मिस्टर टैलेंटेड का टाइटल मिला था सिंगिंग के लिए कॉलेज में गाने के लिए फ्रेशर्स पार्टी में। क्या बात है, टैलेंटेड हैं जनाब, आप सिंगर हैं तो। गुड्डू ढाकर उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गांव से कहते हैं, हम 10वीं में पिकनिक पर गए थे मेरे दोस्त के साथ और मेरी एक फ़ोटो है 1992 की, मैंने वो फ़ोटो अपने दोस्त के पोते को दिखाई तो वो बहुत हंसा। ऐसा क्या था जी उस पिक्चर में? मेरे पास 2015 की एक फ़ोटोग्राफ है और इस तस्वीर में मेरे एक साथी शिक्षक और मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इसे हमने सिंहेश्वर धाम माधेपुरा में लिया था जब हमारी टीम विद्यालय से भ्रमण के लिए निकली थी। ये तस्वीर उस दिन के पूरी यात्रा की याद दिलाती है। ये कह रहे हैं रंजीत कुमार मंडल, सिकटी अररिया बिहार से। हीरामणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कहते हैं कि मेरे घर में और मोबाइल गैलरी में भी बहुत ही यादगार तस्वीर कैद है जिसे जब भी देखो यादें ताज़ा हो जाती हैं और लबों पे मुस्कान आ जाती है। कहते हैं मेरे मोबाइल पर मेरे वो मेरी श्रीमती जी की खूबसूरत फ़ोटो है जिसे जगन्नाथपुरी की समुद्र तट पर लिया गया था और कोणार्क के मतलब सूर्य मंदिर में ली गई थी। जो तस्वीरें वो हैं, कहा ना हमने कि मतलब ऐसे ही तो जो तस्वीरें होती हैं उनको देखकर जो भी यादें होती हैं ना बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती हैं। ये हैं अक्षत जोगिंदर नगर मंडी हिमाचल प्रदेश से, कहते हैं आज मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ पर इच्छा हुई कि आपको ये फ़ोटो शेयर करूं क्योंकि ये फ़ोटो आज से 8 साल पहले हमने ली है। इसमें हम तीनों बाप बेटे हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं अभी घर से दूर चंडीगढ़ में हूँ और अभी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं है। मैं 24 साल का हो गया हूँ पर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। तो अच्छा जी, तो आप ऐसा सोचते हैं कि आप 24 साल के हो गए और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, ये तो बहुत छोटी उम्र है। कोशिश करते रहिए, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मुझे जो है ट्रस्ट मी मतलब पूरा पूरा यकीन है कि अगर आपके अंदर ये भावना है ना कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ करना है, तो जहाँ ये जज्बा है ना तो आप ज़रूर बहुत कुछ कर पाएंगे। शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। तो मायूस मत होइए, खुश रहिए और खुशी के साथ कोशिश करते रहिए।

ये है नया पारा भिरई ज़िला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर कहते हैं कि मैं जब 5 वर्ष का था और तब मैं जो है 3 दोस्तों के साथ हमने जो है एक फ़ोटो खिंचवाई थी, तो आज तक मैं बड़े प्यार से उसे संभाल कर रखा हूँ और जब जब उन दोस्तों को देखता हूँ तो उनको अपने घर बुलाकर जो है वो फ़ोटो हम लोग देखते हैं और तीनों मित्र उसे देखकर जो है हंस पड़ते हैं। ये है रश्मि पश्चिम विहार से कहती हैं कि मेरे हस्बैंड हमेशा अपनी मदर की फ़ोटो अपने पर्स में रखते हैं। मुझे मेरे अपने बड़े भाई बहन के साथ बचपन में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ जो खींची हैं वो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड बड़ी स्टाइलिश फ़ोटो खींचते हैं और उन्हें हर मोमेंट्स की फ़ोटो क्लिक करना पसंद है। मैं वॉक कर रही थी, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि वॉक छोड़कर जो है मैसेज कर रही हूँ। जानकर हमें अच्छा लगा कि जो टॉपिक था उस पर जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको मैसेज मसाला मिक्स की तरफ खींच लाया। और आप सच में बहुत लकी हैं कि आपके हस्बैंड्स को जो है फ़ोटो क्लिक करना पसंद है। जावेद आलम मोहम्मद जायान जयपुर से कहते हैं कि हर तस्वीर डिलीट हो सकती है लेकिन जो ज़िंदगी की तस्वीर है वो हमेशा याद रहती है। और होता है ऐसा कि जो तस्वीरें जो है चाहे डिलीट हो जाएं पर अगर उनसे कोई खूबसूरत याद जुड़ी है ना तो वो तस्वीर हमारी जो मेमोरी है वहाँ से कभी भी डिलीट नहीं होती। ये राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हैं, कहते हैं कि तस्वीर में नहीं बल्कि तकलीफ़ में साथ आए काम आए वही अच्छा है और पति पत्नी तो तस्वीर और तकलीफ़ में दोनों जगह पर जो है साथ होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। बिल्कुल सही बात है जी।

0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: नेहा नोएडा से कहती हैं, मेरे पास अपने स्कूल यूनिफॉर्म वाली एक बहुत पुरानी जो है पिक है और हम 4 बेस्ट फ्रेंड्स उसमें साथ हैं। आज सब अलग अलग सिटीज़ में हैं, लेकिन वो पिक्चर देखते ही लगता है जैसे हम फिर उसी क्लासरूम में बैठी हैं। नेहा, कुछ जो फोटोज़ होती हैं ना, वो सच में टाइम मशीन होती हैं। बस एक नज़र डाली और हम सालों पीछे पहुँच जाते हैं बिल्कुल उसी टाइम पर। अमित गाज़ियाबाद से कह रहे हैं, मेरे बेटे की पहली साइकिलिंग वाली फ़ोटो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उस दिन वो गिरा भी था और रोया भी था, लेकिन फ़ोटो में बड़ी शान से साइकिल पर बैठा है। यही तो जो तस्वीरें होती हैं उनकी खूबसूरती है कि हम पूरी कहानी भूल जाएं, लेकिन एक तस्वीर देखकर जो है पूरा का पूरा जो सीन है ना वो आंखों के सामने आ जाता है। सोनिया दिल्ली से कह रही है, मेरी फेवरेट फ़ोटो मेरी माँ के साथ है। कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, बस घर पर अचानक फ़ोटो खिंच गई थी, शायद इसीलिए और भी स्पेशल है। शायद यही जो कैंडिड मोमेंट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, जब कोई पोज नहीं होता, बस वहाँ पर जो रिश्ता है, जो उस मोमेंट से जुड़ी याद है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। और अब समय हो रहा है कि आपसे जो है अनुमति लें, पर लालच भी है कि कुछ और मैसेज पढ़ लें।

और इसी के साथ जो है आपकी दोस्त भगवती लेगी आपसे अनुमति। जाते जाते कहूँगी कि जब भी कोई फोटो देखते हैं, जब भी किसी एल्बम के पन्नु से गुजरते हैं ना तो जिन यादों को फिर से जीते हैं, जिन्हें अपने दिल में सजो के रखा है आपने, उनका जो है लुत्फ उठाइए। चलती हूँ, घंटे भर बाद फिर से मिलने आऊंगी आपसे म्यूजिक।

0: अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वे देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री सिजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्रीय स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: मिल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM।

0: Rainbow.
1: और FM Rainbow पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक वस्ती भगवती के साथ।
2: Natural night, do you feel alright? Wanna natural night?

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अब से कुछ देर बाद से यानी कि 9 बजे से मुक्ति सैनी रहेंगे आपके साथ, लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। 10 बजे से ज्योति अहलावत रहेंगी आपके साथ, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रेनबो क्लासिक्स होगा तब। और 11 बजे से रंगे महफिल आप सुनेंगे मुक्ति सैनी के साथ। और अब समय है आपकी दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि

संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीति विश्वास बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। ये दौरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक ISMR के तहत दोनों देशों के बीच जारी उच्च स्तरीय संवाद का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके अपनी आवाज, आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और आज के इस खूबसूरत शाम में एक बार फिर हम साथ हैं। कुछ गीतों के बहाने, कुछ एहसासों के बहाने और उन यादों के बहाने जो चाहकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं ना, कुछ लोग हमारी जिंदगी से दूर होकर भी हमारी धड़कनों के बेहद करीब होते हैं। उनकी आवाज, उनकी मुस्कान, उनके साथ बिताया हुआ कोई छोटा सा पल अचानक याद आ जाता है और दिल कह उठता है, आपकी याद आती रही।

वैसे मौसम की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा मौसम है आज की झमाझम बारिश, कहीं एकदम सूखा है, कहीं धूप है, तो कहीं झमाझम बारिश की फुहार कुछ लोगों को ठंडक का एहसास दिला रही है और कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीदें जगा रही है जो ना चाहते हुए भी हम पूरी करना चाहते हैं। यादें भी कितनी अजीब होती है ना, इन्हें ना किसी दरवाजे की जरूरत होती है ना किसी दस्तक की, बस कभी कोई गीत सुनाई दिया, कोई खुशबू महसूस हुई, कोई जगह दिखाई दी और अचानक कोई अपना बहुत करीब महसूस होने लगता है। कभी कभी हम सामने वाले से बात नहीं कर पाते लेकिन मन ही मन उसे घंटों बातें करते रहते हैं। शायद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, जब इंसान दूर हो मगर उसकी मौजूदगी दिल के बिल्कुल पास हो, बेहद करीब हो। ये एहसास है जो हमें जीने की एक उम्मीद देते हैं, जीने में कहीं ना कहीं एक मिठास घोल देते हैं। तो आप और हम क्यों दूर हैं, आइए जुड़ जाते हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, क्योंकि बहुत सी ऐसी यादें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में कैद सी रहती हैं। उन जंजीरों को आज खोलने का समय है, उन यादों को फिर से एक बार खुल कर जीने का समय है।

मोहब्बत हमेशा शब्दों से नहीं होती, कई बार एक नज़र बहुत कुछ कह जाती है। एक मुस्कान पूरी कहानी सुना देती है और कभी कभी खामोशी भी इतनी गहरी होती है कि उसमें प्यार की पूरी दास्तान सुनाई देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके सामने आते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जिसके जाने के बाद उसकी कमी महसूस होती है, तो यकीन मानिए आपके दिल में कोई खूबसूरत एहसास अपनी जगह बना चुका है।

आज की इस महफिल में हम कुछ ऐसे ही गीतों को आपके नाम करेंगे, उन लोगों के नाम जिन्हें आप याद तो करते हैं लेकिन शायद कह नहीं पाते कि हाँ आज भी आपकी याद आती है। हो सकता है इस वक्त आप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे हों, अपने बेड पर बैठे हों, सफ़र में हों, अकेले हों या किसी ख़ास शख्स के साथ हों, लेकिन मेरा यकीन है कि कोई ना कोई चेहरा आपके जहन में इस समय ज़रूर आ रहा होगा या आया होगा। तो चलिए उसी चेहरे को याद करते हैं और सुनते हैं और भी बेहतरीन गीत जो ख़ास आपके लिए आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी लेकर आई है प्रोग्राम आपकी याद आती रही, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हर प्रोग्रामों का लुत्फ ले सकते हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं, आपको वो सुकून, वो एहसास और

जज्बातों के साथ जोड़ देता है जो इस आपाधापी भरी जिंदगी में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद आप चाहते हैं लेकिन आप पूरी नहीं कर पाते, या फिर आप चाहकर भी उस ओर बढ़ नहीं पाते। तो ये एक कदम आज हमें साथ में बढ़ाना होगा।

0: अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके पास आपके ही कुछ नगमे लेके।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

कभी आपने महसूस किया है कि किसी खास इंसान के साथ बिताए हुए कुछ मिनट भी पूरी उम्र की याद बन जाते हैं? साथ बैठकर चाय पीना, बिना किसी वजह मुस्कुरा देना, छोटी सी बात पर रोटना और फिर उसी के मनाने का इंतजार करना, ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं रिश्तों को खूबसूरत बना देती हैं। प्यार शायद किसी बड़े वादे का नाम नहीं, प्यार तो उस छोटी सी खुशी का नाम है जब किसी के कैसे हो पूछने भर से ही हमारा दिन

ये हद अच्छा हो जाता है या कह सकते हैं कि पूरा हो जाता है। बस वही कहीं कसक होती है, कोई पूछे कैसे हो, खाना खा लिया, सब ठीक है, बस वहाँ ठीक नहीं भी कुछ होगा ना तो भी खुद ब खुद ठीक होने लगता है। तो याद आ रहा है ना वो शख्स जो अक्सर आपसे ऐसा पूछता है कि कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया। प्रोग्राम आपकी याद आती रही में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अर्ज दोस्त मुक्ति सैनी।

और अगर आज कोई आपसे दूर है तो शायद ये रात और ये गीत उसके नाम करने का सही वक्त है। दूरी रिश्ते को हमेशा कमजोर नहीं करती, कभी कभी दूरी हमें ये समझाती है कि किसी की मौजूदगी हमारे लिए कितने मायने रखती है। इंतजार भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा है, उस एक संदेश का इंतजार, उस एक फोन कॉल का इंतजार, या बस इस उम्मीद का इंतजार कि शायद आज वो कह दे कि हाँ मुझे भी तुम्हारी याद आती है, हाँ मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होती है।

दोस्तों, आप जहां कहीं भी हैं, आज अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछिएगा। वो कौन है जिसकी याद आपको सबसे ज्यादा आती है? कोई पुराना प्यार, कोई ऐसा दोस्त जो अब दूर है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे दिल की बात कहने की आज तक हिम्मत नहीं हुई? अगर कोई है तो उसे अपने दिल में ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजरती है। हर एहसास को शब्द मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर खूबसूरत एहसास को महसूस करना ज़रूरी है। जी हाँ, फिलहाल मुक्ति अभी चलती है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी प्रोग्राम रंगे महफिल में ठीक 11 बजे। तो गजलों और गीतों का सिलसिला जारी रहेगा 11 बजे, तो आप रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज मंत्रिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। ये दौरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के तहत दोनों देशों के बीच जारी उच्च स्तरीय संवाद का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर रामकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आदाब, नमस्कार और दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल। रात की इस खामोश फिजा में जब शहर की रौनक थोड़ी थम जाती है और दिल अपने ही ख्यालों से बातें करने लगता है, तब कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब आकर बैठ जाते हैं। आज की ये महफिल भी उन्हीं एहसासों, उन्हीं ख्वाबों और उन्हीं अनकही बातों के नाम है जिन्हें हम अक्सर जुबा तक नहीं ला पाते।

कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पा लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस एहसास का नाम है जिसमें किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी की याद बेवजह दिल को बेचैन कर दे और किसी के बिना भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहे। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस एक खूबसूरत एहसास बनकर दिल में रहते हैं, और शायद इसी एहसास को सबसे बेहतर कोई गज़ल बयां कर पाती है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम रंगे महफिल में।

गजल की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, इसमें लफ्ज कम होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। कभी एक शेर पूरी दास्तान कह जाता है तो कभी कोई धुन हमें बरसों पीछे ले जाती है। कोई पुरानी शाम याद आ जाती है, कोई अधूरी मुलाकात, कोई अपना चेहरा, या फिर वो शख्स जिसका नाम आज भी दिल की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़े पर लिखा है। संगीत शायद इसीलिए दिल को इतना अजीज है क्योंकि ये उन जज्बातों को आवाज़ देता है जिन्हें हम कभी कह नहीं पाते हैं।

कभी आपने गौर किया है, रात में सुनी हुई कोई गजल दिन की तुलना में ज्यादा असर क्यों करती है? शायद इसीलिए कि रात में दुनिया की आवाजें कम और दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई देती है। चांदनी, तन्हाई और धीमी आवाज में बजता कोई नगमा जिसे जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर जाती है, और फिर हम खुद से पूछते हैं, क्या कुछ यादें सचमुच कभी पुरानी होती हैं? शायद नहीं, कुछ यादें वक्त के साथ और भी हसीन हो जाती हैं।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: इन प्यारी प्यारी गजलों के बीच प्रोग्राम रंगे महफिल आप सुन रहे हैं अपनी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी के साथ में। यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेते हैं, यानी कि एक ब्रेक लेते हैं।

0: हैं और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ और भी गजल गीत लेकर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज शायद इंतजार है, किसी के आने का, उसकी आवाज सुनने का, उसके एक छोटे से पैगाम का। और जब वो इंतजार लंबा हो जाए तो दिल खुद ही एक महफिल सजा लेता है, जहां सामने कोई नहीं होता मगर यादें साथ बैठी होती हैं। एक ख्याल मुस्कुराता है, दूसरा आंखों को नम कर जाता है, और फिर कोई गजल धीरे से कहती है कि जो दिल में बस जाए उसे भुलाना इतना आसान कहाँ होता है। और गजलों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम भी आपको ये बताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात ही आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। कोई सामने हो ना हो, कोई मौजूद हो ना हो, लेकिन ये आपकी यादों में, आपके जहन में, आपके दिल में इस कदर उतर गया है कि आपको हर समय उनका साथ, उनका एहसास महसूस होता है।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल और ये महफिल सजी हुई है आपके साथ ठीक 12 बजे तक। मध्य रात्रि तक ये प्रोग्राम खास आपके लिए रहेगा। गजलों का ये सिलसिला, आप जगे हुए हैं, कहीं सोच में हैं, कहीं डूबे हुए हैं, तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो आपके दिल तक पहुँच रहा है। आज की इस महफिल में हम उन तमाम लोगों को भी याद कर रहे हैं जिनके लिए कोई ख़ास शख्स उनकी पूरी दुनिया है। हो सकता है कोई अपना आपसे दूर हो मगर उसकी याद आपके बिल्कुल पास हो। हो सकता है कोई बात अधूरी रह गई हो, कोई मुलाकात मुकम्मल ना हुई हो मगर एहसास आज भी वहीं ठहरा हुआ हो। तो आज की रात अपनी उन खामोश भावनाओं को थोड़ा वक्त दीजिए और इस संगीत को अपने दिल तक पहुँचने दीजिए। बस यही चाहते हैं आपसे कि आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम रंगे महफिल।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ नहीं छोड़ती। वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक चेहरा वैसा ही रहता है। शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है, वो सामने हो या दूर, उसका असर हमेशा हमारे साथ चलता है। और जब उसी एहसास कोई कई गजल छू ले तो लगता है जैसे किसी ने दिल की बात हमसे कह दी हो। तो हम भी आपसे दिल की बात करने के लिए आए हैं, बस आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी सुकून, कितनी आरामदायक हो जाती है।

रंगे महफिल सिर्फ गजलों का कार्यक्रम नहीं बल्कि उन एहसासों की महफिल है जो हमारे दिल में खामोशी से पलते रहते हैं। जी हाँ, और ये पल जितने भी पल रहे हैं, इन पलों को अपने जीवन में संजोते रहिए, अपनी यादों में कैद करते रहिए, क्योंकि यही है जीवन में हमें खुशियां देने के लिए, हमारा जरिया बनने के लिए और हमारे जज्बातों को थोड़ा सा विराम देने के लिए। इससे बढ़िया चीज़ें शायद ही कोई हो सकती है। और फिलहाल मैं आपसे लूँगी इजाज़त। आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी कहेगी आपसे इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक पहुँचते रहेंगे। और आपको ये सभी

प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपनी राय सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम बिंदास बोल में। आप दिल खोल कर रखिएगा प्रोग्रामों के बारे में, हमारे बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नए सुझाव हैं, तो उन सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपके लिए इस समय मेरी प्लेलिस्ट में इंतज़ार कर रहा है, जो मैं आप तक पहुंचा के जाऊंगी। फिलहाल आप सभी को शुभ रात्रि।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 12:10 और लीजिए अब आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजुइरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

तीन मिनट और दस सेकेंड्स हो रहे हैं। और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप? तो लीजिए, बातें ना ज़्यादा करते हुए आपको सुनवाती हूँ ये खूबसूरत से गीत, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक आपके लिए।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 1:03 और 7 सेकंड हुए हैं।

और लीजिए अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, और लेकर ये नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। माना सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:03 और 3 सेकंड्स। और लीजिए श्रोताओं, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात्रि के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में स्टिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्फ टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 3:03 और 17 सेकेंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज़।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, गा
1: एक चतुर ना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रातः के 4 बजे है। प्रस्तुत है FM रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री

मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की जांच अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में स्टिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रात के 4:03 और 5 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे कामा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर।

0: जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हुस्न कसाया, पढ़ने न पाए हुस्न कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू।

प्रातः के 5 बजे है। प्रस्तुत है FM रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की जांच अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में स्टिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरी कुइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्माइल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 5:03 और 17 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।